0: फॉरन एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जा रहा
1: तो तुम लोग कह गया
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो
1: गया। अच्छा खाओ खाओ।
0: ना कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे।
2: और फिर यशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा। हाँ?

0: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
1: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा शाम बता हम कहां जाएं।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
5: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
4: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यहीं चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
5: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: बोलो जोर से बोलो, मैंने सुनिया
1: जय माता दी,
0: दिल से बोलो
1: जय माता दी,
0: आवाज नहीं आई
1: जय माता दी,
0: मिलके बोलो
1: जय माता दी।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताज़ा खबर नैन्सी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकोंगपियो जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
3: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
2: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
3: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है और अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व

0: आप गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
3: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
5: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5,00,000 रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने

0: तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा कर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का यह बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी

0: छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहे ना किसी के,
1: अरे

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज। मैं कर रहा हूं आपसे बात और जैसा कि आपको पता है कि जब मैं आता हूं तो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बात को लेकर आता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में। जब आपको सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्या सच में वो सस्ता ऑफर है या फिर आपके लिए एक महंगी गलती? तो दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से। आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले है राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
6: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
5: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, ना तो डिलीवरी आई है, ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलामें देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहिणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों
7: नमस्कार, दोस्तों आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो सोच है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी को, लाइफ को मस्त और झकास बनाने के लिए, है ना रीना? अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ हम अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा भी कर पाएंगे, है ना?
8: बिल्कुल।
7: तो देखिये ये जो प्रोग्राम है ना ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, और चाहे आप विमेन्स हैं या फिर आप मेन्स हैं आप बच्चे हैं या आप युवा हैं, ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय अपने विचार रख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो रीना तुम कैसी हो पहले ये बताओ।
8: आनंद मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई होप कि तुम बहुत अच्छे
7: होगे। अच्छा ही हूँ यार मैं। और देखो दोस्तों, मैं और रीना आए हैं चटपटी बातें लेकर। तो रीना, हमारे शो का नाम है सोच बदलो, ये डेली हम प्रसारित करते हैं।
8: बिल्कुल,
7: क्या मानना है, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा या नहीं?
8: अरे बिल्कुल, अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा और हमें जो आसपास सुन रहे हैं उनकी भी सोच बदलेगी, फिर वो एक दूसरे तक बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए।
7: बिल्कुल। तो आज सोच बदलू का जो टॉपिक है वो है भैया ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। तो जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त हमारे प्रिय मित्र रेडियो से जुड़े हैं बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में रीना वापस आएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तमाम जानकारियां आज आपके लिए इस प्रोग्राम में, तो आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
8: गुनगुनाते रहिए।
7: श्रोताओं,
9: आई लव यू।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो श्रोताओं, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं आपके लिए कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रीना, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, हर इंसान जो है डिजिटली आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को जो है अब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया, और इसी बीच तमाम सारे जो

0: हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में बढ़ती जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों
1: बढ़ रही है
0: जी, जो फ्रॉड के मामले रही ना वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई सीन या कोई कहानी या किस्सा है तुम्हारे साथ या कभी हुआ हो? हाँ तो रीना वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: देखो मैं किसी और से किसी और की कहानी बताने से पहले मैं अपनी बता देती हूँ।
0: बता, बिल्कुल बताया।
1: एक्चुअली ये हुआ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, कपड़े बहुत खरीदती हूँ।
0: सभी करते हैं।
1: हाँ तो मेरे को ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत अच्छे अच्छे सूट के, जो उन्होंने अपना खुद का पेजेस बना रखा था कि यहाँ से सूट ऑर्डर करो और कम दाम में आपको अच्छे सूट मिलेंगे। तो उन्होंने ऑफर डाला था कि 500 में आपको 2 सूट मिलेंगे, अगर आप 1000 डालते हो तो आपको 5 सूट मिलेंगे। तो मैंने सोचा वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया, तो मैंने जो भी सूट लेने थे मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको इतने इतने पेमेंट करने पड़ेंगे। मैंने पेमेंट कर दी 1000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद के मैंने बोला कि मेरा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो ये 1000 रुपए पेमेंट कराया ना, तो ये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, आपको 8000 और करने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं वही समझ गई, मैं क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर।
0: तो मतलब तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो गया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: दोस्तों अब देखिए रीना के साथ तो जो है धोखाधड़ी वाला सीन हो गया, आपके साथ ना हो आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप इस चीज का शिकार होते हैं तो आप कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पर जाकर आप जो है इसकी सुनवाई करा सकते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचे, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। श्रोताओं सबसे मजे की बात पता है क्या है कि आजकल ना जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं लोग, जो स्कैम करते हैं मार्केट में, इतने इनके जो तरीके हैं ना बहुत सारे बदल गए, एकदम आपको जेन्युइन लगता है रीना। जैसे केवाईसी अपडेट के नाम पर आपको कॉल आ जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: कभी
1: बिल्कुल।
0: आपको व्हाट्सएप पे कोई अचानक से लिंक आ जाएगा,
1: कभी बोलेंगे बैंक वाले बोल रहे हैं,
0: कॉल्स आ जाती हैं। और आजकल तो शादी के कार्ड भी आ रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी ने भेजा है, क्लिक करोगी तो पैसा
1: पैसे कट जाते हैं,
0: ऐसा वाला सीन भी चल रहा है। तो दोस्तों आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी बात को जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अंतराल का समय है, म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे, अंतराल का समय है और उसके बाद आपको सुनवाएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं और बचने के लिए आपको कहां कैसे शिकायत दर्ज करानी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद,
1: रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे,
0: ये है आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
0: श्रोताओं एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रीना और मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं सोच बदलो, और इस प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है तो ये सोचिए प्रोग्राम कितना प्यारा होगा। वेल आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मैं और रीना आपसे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक खास जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ एक छोटा सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा कर रहे हैं, आप इसको भी सुनिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम थोड़ी देर में मिलेंगे मैं और रीना। क्यों रीना दोस्तों बहुत जरूरी है, देखिए सही सोच के साथ साथ सही जानकारी का होना भी जरूरी
1: है, बहुत जरूरी है।
0: तो आइए सोच बदले प्रोग्राम के अंतर्गत सुनते हैं ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी।
5: आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है, तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है, लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है अरे वाह ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए में दे रही है,
6: जबकि मार्केट में वही फोन 15000 रुपए का है।
5: अब राज कहता है इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं, फिर राहुल कहता है नहीं नहीं वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है क्योंकि 5 दिन हो गए ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले छात्र और गृहणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेन तो करता ही है साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना वो जितने शातिर है ना आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
0: तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये जानकारियां कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगी। और इसी तरह के प्रोग्राम हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं ताकि भैया हमारा जो समुदाय है, हमारा जो कम्युनिटी है, हमारी जो मुरादाबाद की जनता है, उसको अवेयरनेस मिले और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बदले। जब हम सोच बदलेंगे तो हमारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी, क्यों रीना?
1: बिल्कुल। और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी आज से बंद कर देंगे।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग तो बंद मत करो यार रीना, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है ना। शॉपिंग तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, कोशिश करो लोकल फॉर वोकल को ज्यादा बढ़ावा मिले तो बेहतर है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ऑनलाइन तो आप करिए खरीदारी, लेकिन ऑफलाइन भी करिए, क्योंकि लोकल फॉर वोकल बहुत जरूरी है। अपने आसपास के प्रोडक्ट को अगर हम ही नहीं खरीदेंगे तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे बढ़ेगी।
1: लेकिन ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम से शॉपिंग करते हैं उसको कम करें,
0: कम करें आप ऑनलाइन पे। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर आपको कोई लिंक आ रही है, आपको ऑफर दिख रहा है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए श्रोताओं, अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी अपनी बातों को विराम देते हैं और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे जाने की अनुमति देंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं और रीना आपके साथ छोड़ के जाएंगे। प्रोग्राम चल रहा है सोच बदलो, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही अच्छा ये गीत, और आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम, जिसे लेकर आज हाजिर हूँ मैं आनंद, और साथ में आरजे रीना। तो रीना, फाइनली दोस्तों के साथ बातचीत करते करते कैसे हमारा समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला है ना।
1: बिल्कुल भी नहीं पता चलता
0: जी है। हाँ, तो अब बस जाने का समय है, लेकिन बस छोड़ के जाएंगे कुछ खास बातें आपके लिए। देखिए दोस्तों, याद रखिए सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपका नुकसान नहीं कर सकता है ना, और ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो बस आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए। कोई भी दोस्त अगर आपको फेक आईडी या फ्रॉड आईडी बनाकर आपसे पैसे मांगता है, कोई लिंक आपको भेजता है, तो आप उन चीजों से जरा बचकर रहिए। कुछ भी इस तरह की आपके साथ बातचीत होती है या कोई भी ऐसी हरकत होती है, तो आप जो है पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके जरूर शिकायत दर्ज कराएं, क्यों रीना।
1: और जिसके नाम से आईडी बनाकर आपको मैसेज किया जा रहा है, उस आदमी को भी जरूर सूचित करें इसके बारे में कि आपके नाम से आईडी बनाकर पैसे मांगा जा रहा है,
0: पता चल सके ना कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ। तो दोस्तों आज के सोच बदलो में बस इतना ही। अपनी सोच बदलिए, सतर्क रहिए और सेफ रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए
1: एफएम मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो,
1: बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए जी, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय
1: बाय गाइस।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।
8: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
9: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
10: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
11: हाँ मेरी कसम,
10: मिस कर दिया तो रीलोड।
12: चाय चाय चाय,
10: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

प्रभात नमस्कारम जी, सोमवार की सुबह, मेरा नाम आनंद है और आप सभी का स्वागत अभिनंदन खेर मखदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आप सभी का। हाँ जी, कैसे हालचाल है? सब कुछ बढ़िया ना? वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कारम, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा जी खुशामुद्दीन। जुड़ चुके हैं आप आरजे आनंद के साथ आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। श्रोताओं, एक नई सुबह मंडे की मॉर्निंग है, एक पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही हैपनिंग फुल मंडे मॉर्निंग ने तो एंट्री दे दी है पाजी, और मेरी भी दस्तक यहाँ पर जो है अब लगी गई है, मेरी भी हाजिरी लगी गई है, मैंने तो दस्तक दे ही दिया है आपके रेडियो स्टेशन पे, मैं आई गया हूँ, बस अब आपका इंतजार है कि आपके भी मैसेजेस मुझ तक पहुँच जाएँ तो मेरी जो ये सुबह है वो और भी ब्यूटिफुल हो जाएगी। 9:05 हो गए, 18 मई की सुबह है जी। और श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत आज मैंने एक विचार पढ़ा, मुझे लगा कि ये थॉट आपके साथ डेफिनेटली साझा करना चाहिए। तो भाई साहब, विचार कुछ इस प्रकार है कि यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम आपको इस्तेमाल करना है मैं शब्द का। जब आप इन शब्दों का चयन करेंगे, इनको अपनी लाइफ में ज़्यादा ऐड करेंगे, तो यकीन मानिए जब आप इनका उपयोग करोगे तो उसके बाद जो है आपके जीवन में दूसरों का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब आप दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरों को, मेरा मतलब ये कि खुद को भी इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, अपनी इंपॉर्टेंस को तो नहीं भूलना है लेकिन सामने वाले की इंपॉर्टेंस को भी बहुत ज़्यादा जो है उसको ध्यान में रखना है, उनकी इंपॉर्टेंस का भी ख्याल रखना है ना। आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास के जो नेबर

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: खुशबू से, खुशबू ने कहा
0: FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

श्रोताओं, एक खूबसूरत गीत और उसके बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपने ट्यूनिंग किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आरजे आनंद को सुन रहे हैं आप। आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आपने ट्यूनिंग किया है। 9:10 का समय हो गया है स्टूडियो की घड़ी में और आज 18 मई की सुबह है, सोमवार का दिन है। और आइए बात कर लेते हैं आज के दिन के इतिहास के बारे में, इतिहास के पन्नों के बारे में। 18 मई का इतिहास भारत के लिए बेहद है खास, आखिर क्यों? तो श्रोताओं, आपको बताते चलें कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं आज 18 मई की सुबह, जो आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दें, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा भारत ने राजस्थान के जी हाँ श्रोताओं, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ आज के दिन का ये इम्पोर्टेंट इतिहास, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्माइलिंग बुद्धा के बारे में। भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था श्रोताओं, और इसके साथ ही भारत दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की कतार में शामिल हो गया था आज के दिन 1974।

0: में 18 मई की तारीख थी। जी हाँ श्रोताओं, दोस्तों आपको बताते चले, सन 1912 में पहली बार भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी आज ही के दिन। इसके अलावा एक और खास चीज जो इतिहास के पन्नों को और भी महत्वपूर्ण बनाती है श्रोताओं, जी हाँ, उन आज ही के दिन सन 2006 में नेपाल की सांसद ने सर्वसम्मानित से राजा अधिकारियों के सीमित कर उनको मतलब जो सीमित करते हुए उन्हें उनके दायरे में शामिल किया, और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज आज ही के दिन हुई। इसके बारे में भी फटाफट से चर्चा कर लेते हैं श्रोताओं। आज के दिन एच डी देवगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री सन 1933 में जो बने थे उनका आज के दिन जन्म हुआ था श्रोताओं। जी हाँ, 1933 में आज के दिन जन्म हुआ इनका। और आपको बता दें जगदीप धनखड़े जो भारत के उपराष्ट्रपति और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ में रहे उन्हीं का भी आज के दिन जन्म हुआ था सन 1991 में। और वहीं बात करें अनिल चौहान जो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे CDS, उनका भी जन्म हुआ था आज के दिन 1961 में। तो श्रोताओं, ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके साथ साझा कर लिया आज के दिन का इतिहास। बाकी आप भी अपने संदेश और प्यारी प्यारी पॉजिटिविटी आनंद तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर बहुत ही आसान है 9837896896। इस नंबर के जरिए आप अपने दिल का हालचाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं श्रोताओं, और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने दिल की बात और अपने मन की बात बिल्कुल पहुंचाइएगा। हमें इंतजार रहेगा 9837896896। ये प्यारा सा नंबर है, इस नंबर को आपने सेव करना है और रेडियो की सुई को भी आपने सेव करके ही रखना है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस अभी लौट कर आएंगे तो आपसे करेंगे और ढेर सारी बातचीत। आप जुड़े रहिए, टीके रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। हाँ जी, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिए श्रोताओं, एक और बहुत ही खूबसूरत गीत निकल गया है आपके रेडियो सेट पर।
1: क्या यार, तुम
0: बहुत प्यारा गाना है, ये गाना सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ABCD2 का ये गाना एंजॉय करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
9: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
10: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
9: पर पापा।
10: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने एंजॉय कर लिया, मोहित चौहान की आवाज और साथ में मैडम भी साथ दे रही थी, और इतना बढ़िया गाना सुन के सच में यार सबको आनंद आ जाता है सुबह सुबह अच्छी गीत संगीत सुन के। तो है हमारे साथ बहुत सारे श्रोता साथी जुड़ चुके हैं आज की सुबह। सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया जुल्फी भाई का, ये लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, मंडे की सुबह आपकी बहुत ही अच्छी विचार के साथ आपने शुरुआत कर दी, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कर भला तो हो भला, जितना आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं उतना कभी कभी आपको तकलीफ भी मिलता है, लेकिन आप अपने कर्मों को अच्छा बनाते रहिए क्योंकि ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको देख रहा होता है। क्या बात है भाई साहब। एक संदेश पहुंचा है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रुबीना खान। गुड मॉर्निंग रुबीना जी, ये मुझे मैसेज कर रही है करूला मुरादाबाद से, और ये लिखती है, आनंद जी सुप्रभात, आपके गीत संगीत सुन के बहुत अच्छा लगता है, और सुबह सुबह आप सकारात्मक सोच के साथ जो रेडियो पर बोलते हैं बड़ा आनंद आता है। जी शुक्रिया मैम। और इसी बीच हमारे पास मैसेज पहुंचा है मुकुल जी का, मुकुल सैनी मुझे मैसेज करते हैं, इन्होंने मुझे मैसेज किया है मंझोला से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, आज पहली बार रेडियो सुन रहा हूं आपका, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे, क्या बात है साहब। ऐसे लगातार संदेश मेरे पास पहुंच रहे हैं, हमारे तमाम सारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, श्रोताओं आप भी जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए 9837896896। मंडे की सुबह 9:24 हो रहे हैं स्टूडियो घड़ी में, और ये जो स्टूडियो की घड़ी है वो लगातार टिक टिक करके आगे बढ़ रही है, एक छोटा सा सवाल भी होगा, लेकिन उससे पहले आज की सुबह जो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो है हमारे भाईजान का, ये सलमान खान भाईजान का पोस्ट आज सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। जी हाँ, सलमान खान भाईजान ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिएट नोट साझा किया है जिसमें उन्होंने कहा है अलोन और जो मतलब उनका पर्सनल टाइम होता है वो बिल्कुल बहुत ही स्पेशल होता है, लेकिन वो लिखते हैं कि देखिए हर किसी को जो है ना अपनी लाइफ में अकेलापन पसंद होता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी को अकेलापन ही पसंद होता है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि भैया अकेलापन अपनी पसंद से भी हो सकता है और तब जब कोई साथ ना हो, बट उन्होंने साथ में अपनी पोस्ट में आगे ये भी कहा है कि लोगों को खुद समझना होगा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और कैसे अपनी लाइफ को आगे चलाना है। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस की प्रतिक्रियाएं लगातार तेजी से वायरल हो रही है, और उनका एक ट्वीट भी बहुत वायरल हो रहा है आज की सुबह। श्रोताओं अक्सर जब भी हम गर्मी से बाहर से आते हैं, जब तेज़ गर्मी होती है हम बाहर जाते हैं, उसके बाद अचानक से हम जब बाहर से घर में प्रवेश करते हैं तो हमें लगता है कि चलो भाई तुरंत फ्रिज का पानी पी लिया जाए, लेकिन आज की हेल्थ टिप में मैं आपको यही बताऊंगा, क्या सच में आपको पीना चाहिए ठंडा पानी बाहर से आने के बाद, वो भी फ्रिज का, या नहीं? अगर आप पीते हैं तो उसके क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, दोनों चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और ईद की जो है डेट रिवील हो गई है, सऊदी अरब में 17 मई को मनाई जाएगी ईद, बाकी यहाँ की डिटेल्स भी आपको पता ही जाएंगी। आगे आप बने रहिए आनंद के साथ, अभी लौट कर आएंगे तो उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, सोशल मीडिया की दुनिया में क्या चल रहा है और मुरादाबाद की दुनिया में क्या चल रहा है ये भी आपको पता लगेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप, दिन की शुरुआत स्वस्थ आदतों के साथ अगर आप करेंगे तो आपका दिन और आपका दिनचर्या दोनों ही बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। साथियों आप आनंद के साथ हैं, जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में, अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। एक मैसेज मेरे पास पहुंच गया है, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज अमनप्रीत, आनंद यू आर डूइंग वेरी वेल, एंड मैं निकल रहा हूँ अपनी जॉब पर, काशीपुर में मेरी जॉब है, एंड आई एम वर्किंग इन एन HDFC बैंक। ऑल राइट, थैंक यू सो मच बैंकर जी, आपने बहुत प्यारी बात लिखी है, भेजिए उसके लिए शुक्रिया। ये लिखते हैं कि देखिए जब आनंद आप किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, और उस काम की शुरुआत जब पॉजिटिविटी से होती है तो यकीन मानिए वो काम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और मैं ऐसी अच्छी बातें RJ आनंद से सुनता हूँ और सीखता हूँ। अरे बाप रे बाप, थैंक यू सो मच यार, इतनी अच्छी बातें सच में मैं कर लेता हूँ, मुझे काश पहले पता होता। लेकिन मुकैम्बो अभी खुश होगा इस गाने को सुन के। आनंद के साथ सुन रहे हैं आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन गर्ल्स एंड बॉय, जुड़ सकते हैं ना मेरे साथ, लौट के आता हूँ कुछ और हैपनिंग बातों के साथ, सो डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए आपके शहर का अपना अमेजिंग सामुदायिक रेडियो FM मुराद।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
9: अपोजिट
8: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
10: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग।

बेहतर से बेहतरीन गीत, ऐसे खूबसूरत गीतों के लिए आपको आनंद को सुनना होता है मंडे टू सैटरडे। टाइम थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन ये जो रावता है, ये जो सिलसिला है वो बिल्कुल वही वाला बरकरार है। सुप्रभात, वेलकम बैक है, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग है जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 और मेरा नाम आरजे आनंद है। आपकी सुबह को आनंदित बनाने डेली चले आते हैं। सोमवार की ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, सूरज चाचू तो प्रकट हो चुके हैं पूरी लालिमा के साथ। अभी जो करंट टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है बॉस, यानी कि अभी मौसम जो है गर्मी से भरा रहने वाला है आज, और इनफैक्ट दोपहर होते होते गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। हाँ जी, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और जो मैक्सिमम है वो 38 डिग्री पहुँचेगा, यानी कि आज जो है गर्मी और भी ज़्यादा गर्मी आपको गर्मी से सताने वाली है। और जो अगर ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो भैया आज जो है 48 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मी जो है आज चिपचिपाहट वाली रहने वाली है। तो इस गर्मी में जरा अपना ख्याल रखिए, पाजी पानी पीते रहिए, बहुत जरूरी है। और पानी के साथ साथ थोड़े से ना जो तरल पदार्थ है उनकी क्वांटिटी अपने डाइट में ज्यादा बढ़ाइए। कोशिश कीजिए कि दिन में अगर आपको मौका मिले तो आप बेल के शरबत का भी इस्तेमाल कीजिए, बहुत जरूरी है क्योंकि बेल का शरबत बहुत ही अच्छा होता है आपके पेट के लिए भी। तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हाँ जी दोस्तों, आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम जो तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होने के साथ साथ जो एकदम फुर्तुली और चुस्ती के साथ जो आगे बढ़ते हैं ना, एकदम मोटिवेशन के साथ, उनकी लाइफ तो एक अलग ही रिजल्ट उनको दे रही होती है ना। तो लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ऐड नहीं करना है, आपको क्या करना है ना अपनी लाइफ को बहुत सॉफ्ट स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाना है। जितनी सकारात्मक ऊर्जाएं आप खुद को देंगे, जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी लाइफ आपकी पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगी। तो क्रॉस योर फिंगर, अच्छा सोचिए और अच्छा जो है मैनिफेस्ट करते हुए आगे बढ़िए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना शुरू कीजिए दोस्त। जब आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं तो यकीन मानिए ऊपर जो ऊपर वाला बैठा है अल्लाह वाहेगुरु खुदा परमपिता परमात्मा, वो भी आपका कभी गलत नहीं होने देता है। और ये बातें सिर्फ पॉजिटिविटी की नहीं है, इनको जब हम अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो यकीन मानिए इनका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर से बेहतरीन होता है। फिलहाल इसी बातों से आपको ताज़ा तरीन करने और आपको बेहतरीन गाने सुनाने डेली आते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है 9:39:12, आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आप आपकी फेवरेट प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग में, और तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए और इतने प्यार के लिए। मैं सोच रहा हूँ प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा तो बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो लगातार हमें खूबसूरत मैसेज करते हैं और वो फिर अगर प्रोग्राम में शामिल ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली हुई है लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, अपनी टीम से गुजारिश करेंगे, अपनी मैनेजमेंट टीम से कि हमें थोड़ा सा टाइम मिले और हम आपके साथ और गुफ्तगू करें। आपको बताते चले, दिल्ली ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया एंड प्ले ऑफ की रेस में आरआर को हुआ नुकसान, ओ माई गॉड। एंड आईपीएल प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी आरसीबी, पंजाब की लगातार 6वीं बार हार हो गई है बॉस। चलिए लेकिन देखिए ये तो हार और जीत का जो सिलसिला है वो लगा रहता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही रहता है। लेकिन फिलहाल आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, बस मोटिवेट अपने आप को रखना है। वेदर अपडेट की बात करें तो मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली एनसीआर एमपी राजस्थान में भीषण हीट वेव अलर्ट जारी किया है, सीजी में आंधी बारिश से जो है राहत हुई है। बाकी आपको बता दें यूपी में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, उड़द मूंग और अरहर के बीजों पर मिलेगा 50% अनुदान। श्रोताओं कुछ ये अहम जानकारियाँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और सुबह सुबह हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपको जो है उन सारी जानकारियों से रूबरू करा कर जाएँ जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए और हम सभी के लिए। श्रोताओं अगर आप पैदल चलते हैं तो यकीन मानिए 30 मिनट अगर आप, मैं कह रहा हूँ 30 मिनट अगर आपने निकाल लिए खुद के लिए, आधा घंटा अगर आप वॉक कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन है। आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी बहुत बढ़िया है भाई। बाकी दिन की शुरुआत अगर आप कुछ स्वस्थ आदतों के साथ करेंगे तो आपका दिन बहुत ही बेहतर से बेहतरीन होगा। सबसे पहले तो अपने अलार्म को बंद करके बिल्कुल ना सोना है आपने, क्योंकि जब आपका अलार्म बजता है तो कहीं ना कहीं आप उठ जाते हैं। और आपने क्या करना है ना, उठते ही अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, हम उठते ही सबसे पहले मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। वैसे मैं कहना चाहूँगा कि अलार्म के बिना भी उठने की कोशिश करो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें आदत पड़ जाती है, कुछ चीज़ों की हमें आदत हो जाती है जिसकी वजह से हमें दिक्कत होने लगती है ना, तो हमें उस चीज़ का शिकार ही नहीं बनना है दोस्त। कोशिश कीजिए कि बिना अलार्म के भी आप उठ सकें, और उठते ही मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना है आपने। सबसे पहले कुछ लोग होते हैं कि भैया चाय मांगते हैं उठते ही, उनको चाय कॉफ़ी चाहिए, तो ये भी मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, दिन की शुरुआत तुरंत चाय से नहीं करनी चाहिए। कुछ हेल्दी
चीजें से आप कर सकते हैं, जैसे एक गिलास गुनगुना पानी हो गया जो कि बहुत जरूरी है, जितना हो सकता है सोशल मीडिया से बचने का प्रयास करें सुबह उठते ही, और कुछ भी अनहेल्दी बिल्कुल ना खाएं सुबह सुबह, कोशिश करें कि आप घर का बना ताज़ा फ्रेश ब्रेकफास्ट ही खाकर निकलें, और कुछ बढ़िया इमिडिएटली हेल्दी से आप खा सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं सुबह सुबह जो बहुत ही बेहतरीन है आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए आप ओट्स ले सकते हैं सुबह सुबह, आज मैं भी खा के आया हूँ, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो ये कुछ बढ़िया चीज़ें आप शामिल कीजिए, आप बेसन के चीले खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, कितने बढ़िया होते हैं, हेल्दी होते हैं और आपकी हेल्थ को भी बढ़िया रखते हैं, है ना। और बढ़िया भी आपको रखेंगे मेरे गाने, एक छोटा सा सवाल भी होगा, 9:42 हो रहे हैं, स्टूडियो की घड़ी में कुछ और खास बातें होंगी, मुरादाबाद शहर से जुड़ी भी कुछ खबरें हैं जो फटाफट आप तक पहुंचानी है। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप जुड़े रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। और हाँ, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं मेरे साथ आज की सुबह 9837896896, स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज पहुंचा दो फटाफट से। मेरे साथ सबीना खान जुड़ चुकी है, रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से गली नंबर 2 से गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। लिखती हैं, आप बहुत ही अच्छी बातें करते हैं आनंद सर, और आप कैसे हैं, आप हम सभी को जो बातचीत बताते हैं वो काफी बढ़िया होता है, और हम सभी को आप बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं। थैंक यू शबीना खान जी। साथ में एक पिक्चर शेयर करती है, लिखती है, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरें, यूं ही नहीं होती होती हाथों की लकीरें के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली है, बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही फैक्ट और बहुत ही रिलेटेबल है। हमारी लकीरों के आगे जो उंगलियां होती हैं ना, वो इसलिए होती हैं ताकि हम उनसे मेहनत कर सकें, और जो हमें लगता है कि हम नहीं हासिल कर सकते हैं वो भी हम हासिल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसा मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू शबीना खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा है, आनंद जी गुड मॉर्निंग, आज 18 मई की सुबह है, ऑल राइट, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और ये लिखते हैं, 18 मई की सुबह है और 27 मई को ही ईद मनाई जाएगी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, मैंने जो बोला उसके लिए शुक्रिया मेरे भाई। और ये निसार साहब भी जुड़ गए हैं मेरे साथ आज की सुबह, बिल्कुल 18 मई है आज, मैं ध्यान रखूंगा। और अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है मुझे गाने का, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पे, आप एंजॉय कीजिए, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा के रखिए, मंडे की सुबह है, 18 मई, अगेन रिपीट कर रहा हूँ।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: क्या मेरी कसम,
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय,
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
1: आजकल शाम को जब हम मुरादाबाद की सड़कों पे निकल रहे हैं तो ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो जाम है ना इसकी समस्या डेली बढ़ती जा रही है। मुरादाबाद के इतने बढ़ते ट्रैफिक का क्या कारण है? आई डोंट नो, तो मुरादाबाद में जो सड़कों पे काम चल रहा है ना उसकी वजह से भी थोड़े से जो है रूट चेंज हुए हैं जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, बट थोड़े दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ बहुत ही बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। वेलकम बैक यू वंस अगेन, मुरादाबादी आनंद के साथ हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन। 9:51 स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो गया है 9:51। तत्काल प्रभाव से पहले आपको क्या करना है, मेरे एक सवाल का जवाब देना है। हालांकि बहुत सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे दोस्त। अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी नाशाद है तो गेट विल सून, आई होप आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं। और कहते हैं दोस्त, जो अपने अंदर से अपने आप को मोटिवेट रखता है ना उसे कोई भी बीमारी या कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती। तो बस थोड़ा सा मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए और ऐसे ही एनर्जेटिक रहिए। फिलहाल जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक जो डायलॉग प्ले कर रहा हूँ आज मंडे की सुबह 18 मई की तारीख में, ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है?
5: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सिर्फ एक तूफान की कमी थी, शैतान ने पूरी कर दी। लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। अरे भाग बजरो,
1: व्हाट्सएप करना है आपको मेरे को 9837896 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। जी हाँ श्रोताओं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9837896896, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर को आपने सेव कर लिया है ना, वेरी गुड। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज की सुबह ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है?
5: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सिर्फ एक तूफान की कमी थी, शैतान ने पूरी कर दी। लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है।
1: बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही यू नो ऐसी कॉमेडी मूवी है जिसको देख के आप हंसने लग जाते हैं। बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट और बहुत ही फैबुलस पिक्चर है। व्हाट्सएप करने अपने नाम के साथ अपना सही जवाब 9837896896, जो मैंने अभी डायलॉग प्ले किया वो कौन सी फिल्म का है यही आपने मेरे को बताना है। और जरा सुनते हैं इनके दिल की आवाज।
6: नमस्कार, आनंद के साथ में आपका दोस्त गोपी शर्मा, नगर पंचायत पाक बड़ा से। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, मेगा हॉर्स, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। कुछ रिश्ते वक्त पर बात न होने की वजह से भी खत्म हो जाते हैं। शब्दों की कमी नहीं होती पर कहने की हिम्मत खो जाती है। मन तो चाहता है पुकारे उन्हें पर डर भी लगता है कहीं जवाब ना आया तो क्या होगा। फिर धीरे धीरे खामोशियां आदत बन जाती हैं और अपने पराये हो जाते हैं। नमस्कार, राधे राधे। सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज। नंबर 9837896896। नमस्कार, राधे राधे।
1: थैंक यू भूपी जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत आप हमेशा विचार लेकर आते हैं जिनको सुनकर बड़ा आनंद आ जाता है और बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। ऐसे आप भी अपनी प्यारी प्यारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है भाई, ब्यूटीफुल गाना निकाल दिया मैंने, बहुत ही ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे आजकल, बहुत ट्रेंड में है गाना।
7: हम रखे तेरे झंझरा के जो
1: ब्यूटीफुल नंबर, मंडे की सुबह ट्यूनिंग क्या है आपने? आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे सुन रहे मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
3: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
4: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: बिल्कुल सही स्टेशन पे सही वाला शो आपने क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ हैं आप, एंड बहुत सारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के मैसेज लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं जी। मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था आपसे मंडे की सुबह। आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। अच्छे गाने और अच्छी बातें बैक टू बैक आपके लिए होती है इसी स्टेशन से प्रसारित। चलो जी, जो लोग अपनी मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहे हैं उनको ऑल द वे बेस्ट। फ्रिक्वेंसी सेट कर लो यार, 89.6 ये वो फ्रिक्वेंसी है, दिस इज वेरी वेरी मैजिकल फ्रिक्वेंसी, जहाँ मेरी और आपकी बातें हो रही है पिछले 3 सालों से। चलो अभी फिलहाल रिपीट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन। आपको क्या करना है ना, मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है जो अभी ये डायलॉग यहाँ पर मैंने प्ले किया है ये कौन सी फिल्म का है। लास्ट ऑप्शन है आपके पास, फिलहाल 10 बजनों को है, जरा इमीडिएटली गेस करना है। बहुत ही पॉपुलर मूवी थी यार।
6: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सिर्फ एक तूफान की कमी थी, शैतान ने पूरी कर दी। लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। अरे भाग बजरो।
5: यस, मैं आपको कह रहा हूँ भाजी, आपको जल्दी से भागते हुए मेरे को मैसेज करना है 9837896896 पर। व्हाट्सएप करना है अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, सड़क पे बिल्कुल नहीं भागना है, ध्यान रखना है अपने आसपास में जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनका भी, और जो पैदल क्रॉस कर रहे हैं ना उनका भी जरा ध्यान रखिए। बाकी के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। अब रहना।

0: अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा, पलक मुच्छल की आवाज, बहुत ही बेहतरीन गाना सुन रहे थे आनंद के साथ। चलिए जी, इसी बात के साथ मैं आपको बता दूं, मैंने पूछा था आपसे बड़ा इजी क्वेश्चन कि कौन सी फिल्म का डायलॉग है, ये आपको आइडेंटिफाई करना था।
1: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सिर्फ एक तूफान की कमी थी, शैतान ने पूरी कर दी। लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। अरे भाग बजरो,
0: यही आपने मेरे को बताना था। मेरे को लगा देखते हैं कौन है आज की सुबह इतना फिल्मी जो सही जवाब बता पाएगा। और भाई साहब, इतने सारे मैसेजेस आपने किए ना, मतलब आउटस्टैंडिंग यार, मतलब मानना पड़ेगा अनबिलीवेबल। बहुत ही बेहतरीन मैसेज आप लोगों ने कर दिए, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बट तालियां तो आपके लिए होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ मानना पड़ेगा यार, मैसेज तो बहुत सारे थे लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है सही लोगों को शॉर्टलिस्ट करना, और विनर तो कोई एक ही होता है हमारे शो में। आने वाला गाना बहुत ही फैबुलियस है यार।
2: किसने,
0: इससे पहले जरा आगे बढ़ते हैं और अपने लकी कॉलर से बात करते हैं। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
3: बस बढ़िया है आनंद सर, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सुप्रभात जी, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को, कहाँ से कौन साहब जुड़े हैं आज?
3: मोहम्मद आरिफान, जामा मस्जिद अगवानपुर से जाना पहचाना आपका श्रोता।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये अगवानपुर का जो नाम है ना आपका आरिफ खान जी, आपने जहाँ तहाँ पहुँचा रखा है।
3: जी जी,
0: है ना, बहुत बढ़िया। और बताइए सब कुछ बढ़िया चल रहा है?
3: हाँ सब मजे में है, और ऊपर बैठ कर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और कभी कभी सवाल के जवाब भी दे देते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग जो है प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, तो बहुत मजा आता है।
3: जी
0: जी, तो आरिफ जी और सब बढ़िया, सब खैरियत घर परिवार में?
3: अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है, और बहुत बढ़िया, हमारे बेटा भी है मोहम्मद रुहान, हमारी वाइफ भी सब बढ़िया है।
0: चलो बस बढ़िया बढ़िया ही रहना चाहिए आरिफ जी। और बताइए, रेडियो सुनने में मजा आता है या नहीं आपको मुरादाबाद का? ये
3: सर मेरा बचपन से शौक है रेडियो सुनना।
0: क्या बात है,
3: इसे आज तक मैंने बंद नहीं किया है।
0: अरे वाह,
3: लेकिन नहीं किया है मैंने।
0: क्या बात है, मतलब यही है।

0: अब आप जाते जाते रेडियो पर
1: सर मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग मिलजुल कर रही है, खुश रही है।
2: बिल्कुल,
1: अगर किसी की दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसके काम में आइए। और सर ये गर्मी का मौसम चल रहा है और काफी गर्मी भी पड़ रही है, तो मैं कहूंगा कि आप जब घर से निकले तो लगभग 11 से 3 के बीच ना निकले, और जरूरी काम है तो आप अपने सर पर एक कपड़ा रख लीजिएगा या कोई छाता ले लीजिएगा। और पानी का प्रयोग करते रहिएगा बार बार, शिकंजी का, कोई बाजार की चीज ऐसी नहीं खाइएगा जो खुली भी हो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया आरिफ खान साहब। मैं बाहर निकल रहा हूँ, आप अंदर आ जाओ स्टूडियो के, आप आरजे बनने के लायक हो। मतलब सारी जानकारी आप ही दे रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया है, हमारा काम आसान हो गया है। लेकिन आरिफ जी, खैर जोक से बात, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जरूरी है इन चीजों का, हम जब ख्याल रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है।
1: जी सर,
0: जी आरिफ साहब, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आपसे बातचीत करेंगे दोबारा सर। चलिए, नमस्कार भाई साहब। जी थैंक यू सो मच। तो आरिफ खान साहब जुड़े थे, आज के विनर बनते हैं, कंग्रेचुलेशन इनको हमारी ओर से।

0: 9 मिनट हो रहे हैं भाई, जाने का समय हो गया है। खुशी भी आ गई है, आप उसके साथ भी बहुत सारी और बेहतरीन बातें एंजॉय करने वाले हैं। हम शक्ल मूवी का एक गाना, नीरज श्रीधर की आवाज, तमाम सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके थे आज की सुबह। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शैयद शारी के लिए जी लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आपका बिंदास मॉर्निंग शो सुन रहे हैं और आज का राइट आंसर था वेलकम फिल्म का एक डायलॉग नाना पाटेकर जी की आवाज थी। थैंक यू सो मच भाई साहब। गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, कैसे हालचाल है? दिस साइड शाजिया फ्रॉम कानपुर, हाय शाजिया, गुड मॉर्निंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम निपेंद्र है, ये एडवोकेट है निपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया है, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। वेलकम फिल्म का डायलॉग था ये, मेरे पास प्रेम नगर से मैसेज आ रहा है लक्ष्मी जी का, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बातचीत करके, समय थोड़ा सा कम है मुझे और ज्यादा इजाजत नहीं मिल रही, नहीं तो मैं आपसे ढेर सारी बातचीत करता।
1: आनंद सर, जो आपने सवाल किया है जी, वो फिल्म का नाम है वेलकम।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया साहब। गुलाम जलानी पाशा, शुक्रिया ये मैसेज देने के लिए। और इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा था, गुड मॉर्निंग डी के अरोरा चंदन नगर से सही जवाब पहुंचा रहे थे। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? मेरे पास मैसेज आ रहा है मुकेश जी का, इन्होंने भी मेरे को चंदन नगर से मैसेज किया है और एकदम बेहतरीन बातें लिख दी है आज की सुबह। गुड मॉर्निंग आनंद जी, वेलकम फिल्म का डायलॉग है। सुभाष जी मेरे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से। राजू बन गया जेंटलमैन, ये क्या पहुंचा दिया है सर, मुझे को समझ नहीं आया, अगर आप ये गाना सुनना चाहते हैं इस फिल्म का तो थोड़ा सा इंतजार। वेलकम मूवी का था डायलॉग। सपना जी जुड़ी है नगर पंचायत पागवाड़ा से। रामपुर से मेरे साथ शबनम जी जुड़ चुकी है, लिखती है हाई गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, लिखती है सर बड़े टाइम के बाद जुड़ रहे हैं आपके साथ, प्रोग्राम बहुत ही शानदार पेश कर रहे हैं जी, शुक्रिया। विकी सागर जुड़ गए हैं रेडियो वाला, आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, लिखते हैं रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, क्या बात है। रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी साहब जुड़े हैं, लिखते हैं आपका ये प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बाबू भाई, मुकेम्बो खुशवा। चलिए गाइस, कुछ टेक्स्ट मैसेज आए थे वो डेफिनेटली मैं फटाफट इमीडिएटली पढ़ता हूँ, 10:12 मेरे जाने का टाइम, फिर लौट कर आएंगे जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, है ना। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं, हाउ आर यू? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम एब्सोल्युटली गुड। चलो गाइस, आप मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए, ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए, कल सुबह ठीक 9 बजे मेरी आपकी मुलाकात होगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा पानी पीते रहिए, जूसेस पीते रहिए, जैसे कि मैंने कहा बेल का शरबत भी आप जरूर शामिल कीजिए अपने दिनचर्या में, और बाकी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों को सुनने के लिए ट्यून इन रखिए आपके शहर का अपना अमेजिंग सामुदायिक रेडियो।

0: एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आगे भी इन्फॉर्मेशन भी होंगी और एंटरटेनमेंट भी होगा, सो डोंट गो एनीवेयर, बाय।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफ एम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन की मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
6: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
11: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
10: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
11: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
9: कॉल 7500153841।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। मंडे की सुबह है, खुशी आपके साथ है और आप सभी का फेवरेट कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जी हाँ, मॉर्निंग मसाला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समय हुआ है 10:27 और बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज मंडे का। कहते हैं ना कि मन का डे मंडे। और अभी मैं आपको तारीख भी बताती हूँ। जी हाँ, 18 मई की तारीख है। और देखिए ना, मई का महीना कैसे जल्दी जल्दी गुजरता जा रहा है। लाइक साल का 5वां महीना, 18 तारीख हो गई है, 18 दिन कंप्लीट होने वाले हैं ऑलमोस्ट। और खुशी आपके साथ है। एंड दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस ब्यूटीफुल सुबह में आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896 8 9 6 9 8 3 7 8 9 6 8 9 6। और दोस्तों, खुद से प्यार करना सीख लो, क्योंकि अगर आप खुद से खुश नहीं हो तो दुनिया की कोई भी खुशी आपको पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुद पर विश्वास रखो, खुद से हैप्पी रहिए, क्योंकि जब आप खुद खुश रहेंगे, खुद से प्यार करेंगे तो सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी। और आप जो भी लाइफ में चाहते हैं वो तब आपको मिलेगा जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे और मेहनत करेंगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाते हैं। और अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आप 2 कदम पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए एवरीवन, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर भरोसा रखिए और खुद पर भी भरोसा रखिए और अपने काम के प्रति ईमानदारी के साथ अपने काम को कीजिए। एंड ज़िंदगी में खुश रहिए, किसी के प्रति कोई गलत भावनाएं मत रखिए। एंड कहते हैं ना एवरीवन, अगर हम अच्छा किसी के लिए करते हैं तो अपने साथ भी अच्छा होता है। तो इससे प्यारी प्यारी सी बातों के साथ खुशी करती है शो की शुरुआत। और एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी के लिए आज की मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं अपने शहर का बहुत ही खूबसूरत सा रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, बहुत ही प्यारा, फ्रॉम द मूवी सुल्तान से। इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे अपने संदेश पहुँचाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896 8 9 6। मुस्कुराइए, खुशी आपके साथ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
3: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
2: अरे वाह।
3: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
2: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का आरजी खुशी वेलकम करती है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, यहां पर वक्त हुआ है 10:41। मैं जानती हूं कि जो हमारी फीमेल्स हैं वो उस समय काम में बिजी हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और जो हमारी फीमेल्स हैं वो सोचती हैं, जो वुमेन हैं, कि जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आराम से पंखे में बैठेंगे, आराम से फ़ोन चलाएंगे, आराम से सारी चीज़ें, लाइक गर्मी में ना एक तो किचन में खड़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, खाना बनाने का स्पेशली गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या करें, घर की जिम्मेदारियां हैं, सभी का ख्याल रखना पड़ता है, तो उस बीच में सारे काम कंप्लीट करने पड़ते हैं। और मैं आपसे कहती हूँ कि गर्मी में अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो जो आपके किचन में विंडो वगैरह हैं, खिड़कियाँ हैं, उनको खोल कर रखिए ताकि बाहर से हवाएँ आएँ फ्रेश। और यू नो, फैन तो रहता ही है किचन में, अगर नहीं होता है तो विंडो तो ज़रूर होना चाहिए एवरीवन। और इस विंडो को ना बंद मत रखिए क्या, ताकि आपको बाहर की हवा मिले और आपको थोड़ी गर्मी से भी राहत मिले। माना कि बहुत ज़्यादा यू नो गर्मी तो किचन में होती है, लेकिन जब आप विंडो वगैरह खोल कर रखते हैं तो थोड़ी सी राहत तो मिलती है, क्यों? सही कहा ना मैंने, जो हमारी वीमेन है वो सोच रही है। हाँ बिल्कुल खुशी जी, आप सही कह रही हैं। और श्रोताओं, मैं बताती हूँ आपको कि आज क्या स्पेशल है और आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहले मैं अपने बारे में तो बता दूं दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी जो लेकर आती है आपके लिए। मंडे टू फ्राइडे शो आता है मेरा, आप जानते ही हैं, मॉर्निंग मसाला। और मैं आपको बताती हूँ कि दोस्तों, आज 18 मई के इस खास दिन पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खजाने की जो सिर्फ पुरानी चीज़ों को नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, सांस्कृतिक और इतिहास को संभाल कर रखता है। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। दोस्तों, संग्रहालय यानी म्यूजियम, एक ऐसी जगह जहाँ बीते हुए कल की यादें आज भी सांस लेती हैं, जहाँ पुराने सिक्के, मूर्तियाँ, किताबें, चित्रकला और ऐतिहासिक धरोहर हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है। संग्रहालय हमें ये सिखाता है कि अगर अपनी जड़ों को समझना है तो अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि म्यूज़ियम सिर्फ घूमने की जगह है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी पहचान को जीवंत गवाह होते हैं। यहाँ हर वस्तु अपने अंदर एक कहानी छिपी होती है, किसी राजा की वीरता की, किसी कलाकार की कल्पना की, या फिर हमारी सांस्कृतिक की खूबसूरती की। दोस्तों, भारत जैसे देश में तो हर राज्य, हर शहर अपने अंदर इतिहास समेटे हुए हैं। दिल्ली का इंटरनेशनल म्यूजियम हो या फिर हमारे देश के पुराने किले और विरासत स्थल, हर जगह हमें अपने गौरवशाली अतीत की झलक मिलती है। तो आज के दिन एक छोटा सा वादा कीजिए, कभी समय निकालकर किसी संग्रहालय को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो अपने इतिहास को समझता है वही अपने भविष्य को और बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, अब इस खूबसूरत सी सोच के साथ मैं सुनवाती हूँ एक प्यारा सा गाना आपको, लेकिन यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे आपके संदेश भी आए हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और क्या क्या भेजते हैं आज की सुबह, मंडे की सुबह इतनी ब्यूटीफुल है, इतने प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, अपने दिलों की बातें हम तक पहुंचा रहे हैं, तो हम कैसे पीछे रह जाएं उनको शामिल करने में। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज हमें पहुँचाते हैं एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी, नेपा नगर एमपी से, और कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शाद अंसारी जी, शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेडियो सुन रहे हैं। अच्छा लगता है सुबह सुबह जब दोस्तों के साथ एक साथ बैठकर रेडियो सुनते हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं जालौन
उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार जी, एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी जुड़े हैं कार्यक्रम में और ये अपनी फैमिली के साथ रेडियो की कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, मैं एक और खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाती हूँ, फिर हम गुफ्तगू करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और ये प्यारा से गाना आप सुनिएगा ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर।

0: शर्नाक्सस।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर्स
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और सच बात है, जब कुणी बोलती है तो खंड लगती है। लड़कियों की जो आवाज़ होती है ना, सच में बहुत मीठी होती है ना। अब आप सोच रहे होंगे, ओ हो, खुशी जी ने हमारी सुबह सुबह तारीफ कर दी है। जी बिल्कुल, जो हमारी इस समय ब्यूटीफुल वुमेन, हमारी जो फीमेल्स हमें सुन रही हैं, उन सभी को हम कहना चाहेंगे कि आप सच में बहुत प्यारा बोलती हैं और आपकी जो मधुर आवाज़ है ना, दिल को मोह लेती है। अब मैं ये कैसे गेस कर पा रही हूँ कि आपकी आवाज़ इतनी मीठी है, बताऊँ कैसे? आपकी जो प्यारे प्यारे यहाँ पर वॉइस नोट आते हैं ना, तो जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, सच में आवाज़ में तो जादू है। साथियों, अभी वक्त हुआ है 10:53 और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बैक टू बैक आप सभी के खूबसूरत संदेश आ रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं।

और हमारे पास यहाँ पर जो संदेश आए हैं ये हमारे पास मैसेज आया हुआ है रामपुर से। गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर रामपुर से आया है अयूब जी का। और उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, कहते हैं प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से ये हमारे साथ ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं राशिद हुसैन अंसारी जी, साथ में नसरीन अंसारी जी हैं और नौरीन अंसारी जी। ये अपनी पूरी फैमिली के साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कहते हैं धन्यवाद मैम, आपने हमारा मैसेज शामिल किया, मोस्ट वेलकम सर, ये तो खुशी की जिम्मेदारी है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड होस्ट, कैसी हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। ये मैसेज हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से जून रोजी पुलवली जी का। ये हमारे नियमित श्रोता हैं और रेगुलर अपनी हाजिरी लगवा देते हैं। थैंक यू सो मच सर अपना संदेश पहुँचाने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान जी, साइमा नवाज, हसन नवाज जी का मैसेज हमारे पास आया है। कहते हैं आरजे जी को हमारा आदाब, आपको भी आदाब सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, कहते हैं गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आरजे जी आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। आप मुझे बताइएगा कि इस समय राइट नाउ कश्मीर का वेदर कैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है। अभी जो हमारे मुरादाबाद का टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेल्सियस है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर पहुँचा है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, नईमूल अकरम जी का सिरसवा दोराहा से। कहते हैं कोई अपना दूर हो तो करीब लगता है, जाए अचानक सामने तो आ जाए, अचानक सामने तो नसीब लगता है। आपको अगर दो दिन मैसेज ना करें खुशी जी, ईश्वर जानता है बड़ा अजीब लगता है। ओ माय गॉड, क्या बात है, सुबह सुबह शायराना अंदाज। हाँ जी सर। और साथ में इनके यहाँ पर इन्होंने अपने भाई का भी नाम लिखा है, सादिक औरंगाबाद से। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? मौसीम अंसारी जी का, सरताज अंसारी, साथ में शाहिद अंसारी जी हैं, सद्दाम अंसारी जी। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं काशी नगरी बनारस से, कहते हैं वो रूठते हैं तो और भी हसीन लगते हैं, वो रूठते हैं तो और भी हसीन लगते हैं, बस इसी ख्याल से हम उन्हें मनाया करते हैं। माना कि गलती हमारी ही थी ए सनम, माना कि गलती हमारी ही थी ए सनम, पर हम अपनी हर सांस तुम्हारे नाम करते हैं। क्या बात है, बहुत प्यारी प्यारी शायरियाँ सुबह सुबह। चलिए दोस्तों, एक और खूबसूरत से गीत मैं आपको सुनवाती हूँ और बताऊंगी आज और क्या स्पेशल है, वो उसके लिए आपको बने रहना है मेरे साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और श्रोताओं अपने संदेश भी हमें पहुँचाइएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत गुनगुनाते रहिए और प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, तो आप कहीं मजाइए और इस खूबसूरत सी गाने को एंजॉय कीजिएगा। उसमें लौट कर आती हूँ प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ साथियों, जहाँ पर आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और हम आपके साथ दिल से दिल का रिश्ता है। बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, एंटरटेनमेंट होता है आप सभी के लिए, आरजी खुशी आती है एवरी डे। और यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी बैक टू बैक आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, हम अक्सर कल को बेहतर बनाने के चक्कर में ना आज को नजरअंदाज कर देते हैं। और हकीकत तो ये है कि कल कभी आता नहीं है और आज कभी रुकता नहीं है। जो हाथ में है उसे पूरी शिद्दत से जी लो एवरीवन। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ कि आपके पास जो समय है उसे यूटिलाइज कीजिए और उस समय को इतना खूबसूरत बनाइए कि आपका आने वाला कल ऑटो

ना आप अपने आज को बेहतर बनाओ, और जब आज खूबसूरत होगा तो कल तो ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगा, क्यों दोस्तों? खुशी सही कहती है ना, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कल की चिंता मत करो, अपने आज पर फोकस करो, अपने आज पर ध्यान दो, अपने आज को खूबसूरती से जियो, खूबसूरत तरीके से इंजॉय करो, और जो भी आप करते हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, आपको सफलता निश्चिंत मिलेगी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो संदेश आए हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे आप सभी की जो मैसेज आए हैं वो क्या पहुँचाते हैं हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स, जरा उनके दिल की बातें भी हम जान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है मुरादाबाद मिलक से सना जी का, और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, सब हाल चाल हमारे पूछ लेती हैं। जैसे ही 10 बजते हैं घड़ी में, हमारी जो सखियाँ हैं ना वो फटाफट से हमें मैसेज करना स्टार्ट कर देती हैं। हाँ, चाहे कितने भी बिजी हों, लेकिन आप रेडियो के लिए हमारे लिए वक्त निकालती हैं, आप सभी का दिल से थैंक यू। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है अम्बाला हरियाणा से, रवि कुमार राहुल जी का, रंजीत कौर जी का, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरप्रीत, गुरु शब्द सिंह राहुल जी का, और ये हमें नमस्कार पहुंचाते हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी मैं सुनील कुमार बांका बिहारी से आपसे पहली बार कनेक्ट हुआ हूँ, और क्या आप तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है? बिल्कुल सर, आपका संदेश हमें मिल चुका है। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, आज पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ, एंड कल मुझे आपके एफएम के बारे में मालूम हुआ, तो मैंने कल एप्लीकेशन डाउनलोड किया और आपको सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपने अपना संदेश पहुंचाया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, ये हमें मैसेज मिला है आजाद नगर करूला मुरादाबाद से, शहीद शारिक अली जी का, और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, साथ में इनके दोस्त भी हैं शाद अंसारी जी। शहीद मंसूर जी का मैसेज हमारे पास आया है, कहते हैं, लाजवाब प्रस्तुति है आपकी, बहुत बहुत बधाइयाँ खुशी जी, आप कैसे हो? जी बहुत ही अच्छे हैं सर, एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे ही होंगे, और अच्छा लगता है जब इतनी दूर दूर से संदेश हमारे पास आते हैं। भोजपुरी अंदाज में पूछते हैं ना, हालचाल कैसे, हालचाल बा, सब ठीक ही बा। अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, अभी खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपसे फिर से बैक टू बैक हम कनेक्ट होने वाले हैं, आप भी अपने संदेश पहुंचाइएगा, बिल्कुल भी आलस मत करो, कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करना है आपको मुस्कुराने में। हाँ, इतना खूबसूरती से आज का दिन आपको मिला है, और हर दिन अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, तो जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए, और अपने जो आपके पास समय है, जो आपके पास पल है, जो आपके पास अपने हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने काम पर अच्छे से फोकस करो और मुस्कुराओ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ठीक है? किसी के लिए ना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, जो आपके पास है उनकी कद्र करो, उन्हें संभाल कर रखो, और एफएम मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए, पानी भी पीते रहिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिएगा।

बिल्कुल जी, गोरी गोरी मुखड़े भी काला चश्मा वैसे ही आपकी चेहरे पर खूब जचता है और बहुत प्यारा भी लगता है। धूप में अगर बाहर जा रहे हैं तो चश्मा लगाकर जरूर जाइए, गूगल्स लगाकर जाइए, अपनी वीडियो को बढ़ाइए और गर्मी से भी बच जाइए। अपनी आंखों को सेफ कर सकते हैं आप, सेफ रखने के लिए आपको चश्मा तो पहनना ही पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर वक्त हुआ है 11:22 और 18 मई की तारीख है। मैंने आपसे कहा था कि आज और कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ, आपके अपने आरजे खुशी, और आज 18 मई के इस खास दिन पर हम बात कर रहे हैं जागरूकता, सुरक्षा और उम्मीद की, क्योंकि आज है विश्व AIDS जी हाँ टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों AIDS एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी कई लोग जानकारी की कमी की वजह से डर, शर्म या गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। आज का दिन हमें यह संदेश देता है कि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। HIV एक वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है। इससे बचाव के लिए सही जानकारी, सुरक्षित जीवन शैली और समय पर जांच बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है HIV किसी को छूने, साथ बैठने, खाना खाने या दोस्ती करने से नहीं फैलता, इसलिए हमें ऐसे लोगों से भेदभाव नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और सहयोग करना चाहिए। विश्व AIDS टीकाकरण दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और रिसर्च वे वैक्सीन के प्रति उम्मीद बनाए रखना है ताकि आने वाला कल और सुरक्षित बन सके। दोस्तों हम खुद भी जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी देंगे, क्योंकि एक जागरूक समाज ही सुरक्षित समाज बनता है। और अब इस खूबसूरत सोच के साथ एक प्यारा सा गाना भी हम सुनेंगे श्रोताओं, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो संदेश आए हैं उनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने इतने प्यारे प्यारे संदेश पहुंचाए हैं और खुशी उनको ना शामिल करें ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है। हाय,

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग श्रोताओं, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और कार्यक्रम का नाम है मॉर्निंग मसाला। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। समय हुआ है 11:37 और दोस्तों कहते हैं ना कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली ताकत इंसान के हौसलों में होती है और इस बात को सच कर दिखाया है नेपाल के महान पर्वतारोही कामी रीता शिप्रा ने, एंड जिन्होंने 56 साल की उम्र में 32वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए जरा, एक बार एवरेस्ट पर चढ़ना ही लोगों के लिए सपना होता है। वही कामी रीता शिप्रा ने 32वीं बार एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखकर अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनका ये जज्बा हमें सिखाता है कि कहीं अगर इरादे मजबूत हों तो ऊंचाइयां कभी रास्ता नहीं रोकती। बर्फीली हवाएं, कठिन रास्ते और जान जोखिम में डाल देने वाला सफर, लेकिन फिर भी उनके हौसले हर बार आसमान से भी ऊंचे साबित हुए। दोस्तों कामी रीता सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं बल्कि मेहनत, साहस और जुनून की जीवित मिसाल बन चुके हैं। तो दोस्तों अपने सपनों से कभी हार मत मानिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिर के भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप भी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपकी राहों में बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, तो उन मुश्किलों से घबराइए मत, आगे बढ़ते चलिए, खुद पर विश्वास रखिए और आपकी मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। और कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें मुश्किलें ना आए। मुश्किलें हर जगह आती हैं, लेकिन उस मुश्किलों का सामना करना आपको आना चाहिए। खुद पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए और जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए जो पैशन है, जो जुनून है, उसको बरकरार रखिए। और हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, तो उनको भी हम शामिल करते हैं। हमारे पास ये मैसेज आया हुआ है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी ग्राम पोस्ट लदावली मुरादाबाद से अपने मैसेज पहुंचाते हैं। कहते हैं, माय बेस्ट फीमेल आरजे खुशी, कीप ऑन टॉप, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपकी ब्लेसिंग्स ही हमें और चाहिए। एंड जब बड़ों का आशीर्वाद अपने साथ होता है ना और हम दिल से मेहनत करते हैं तो कामयाबी निश्चिंत ही मिलती है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, खुशी जी मैं सुनील कुमार बांका बिहारी से ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं। आपसे मेरा यही कहना है कि आपका जो प्रोग्राम करने का अंदाज है, खुशियों वाला आपका नाम, खुशी आपकी आपका जो प्लेलिस्ट दिल को खुशी देने वाला है, तो आप तो खुशियों का खजाना है जो सभी श्रोताओं को खुशी प्रदान करती हैं। आपके इस अंदाज की क्या तारीफ करूं, आप तो तारीफ की जीती जागती तस्वीर हैं। धन्यवाद, मोस्ट वेलकम सर। अब खुशी इतना प्यारा नाम है हमारा, तो खुशी जो नाम है वो हम भी तो वैसा ही होना चाहिए ना। तो हम चाहते हैं कि जो जब खुशी आए ना तो आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, और जब आप सब मुस्कुराते हैं तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। बस खुशी का यही काम होता है कि वो खुशियाँ बांटे और आप सभी के चेहरे पर प्यारे से भोले भाले से मुखड़े पर खुशी आ जाए, प्यारी सी मुस्कान आ जाए, तो हमारा दिन बन जाता है। और अगला मैसेज हमारे पास पूजा जी का आया है विकास नगर से। कहती हैं, हाय मैम कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ पूजा, आई होप आप भी अच्छी होंगी। एंड ये कह रही हैं कि मैम हम तो खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और गर्मी भी बहुत है, लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना पड़ेगा ना। अब हंस के बनाएं या रोकर? देखिए, अगर आप खाने की बात कर रही हैं ना तो रोकर मत बनाइएगा, हंसकर बनाइएगा, क्योंकि
जिस मन से हम खाना बनाते हैं ना, तो वही जब हम खाते हैं तो वो उसमें परिवर्तन भी होता है हमारा व्यवहार। तो बहुत जरूरी होता है खाना बनाते वक्त ना कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा प्यार के साथ खाना बनाना चाहिए, तभी तो वो जो भोजन आप बनाते हैं उसमें स्वादिष्ट टेस्टी क्यों लगता है, क्योंकि कहते हैं ना बड़े प्यार से आपने बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। तो हमेशा प्यार से खाना बनाइए और सबको खिलाइए, खुद भी खाइए, आनंद लीजिए। एक प्यारा सा गाना मैं आपको सुनवाती हूँ, उसके बाद लौट कर आऊंगी। एवरीवन, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। लौट कर आएंगे तो बात करेंगे आपकी सेहत के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में।

0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

क्या बात है, अमेजिंग ट्रैक आपने एंजॉय किया एवरीवन। एफएम मुरादाबाद 89.6 पे अलका याग्निक जी साथ में शान की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी हम तुम से। और दोस्तों यहाँ पर समय हुआ है 11:53 एंड हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे वादा किया था कि हम आएंगे तो बताएंगे आपकी सेहत के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं सभी हमेशा ऑलवेज स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें। और दोस्तों कई बार क्या होता है ना, सुबह सुबह समझ नहीं आता कुछ कि मॉर्निंग में हम क्या खाएं, ऐसा जो पूरे दिन हमारा एनर्जेटिक रहे एंड हम हेल्दी रहें, क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट होता है हमारी पूरे दिन के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि सुबह सुबह खाली पेट आपको क्या खाना चाहिए। वैसे तो हमारे श्रोताओं को पता है लेकिन हम बता देते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि हमारे एक मैसेज से ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिल जाए। और हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं उनका हेल्थ हमेशा हेल्दी रहे। और श्रोताओं मैं आपको बताती हूँ, सुबह सुबह लिक रात में नाइट में आप क्या कर सकते हैं, बादाम भिगो कर रखिए और उसको सुबह सुबह मॉर्निंग में आप खाली पेट खा सकते हैं। पोषण तत्व से भरपूर होता है और अंकुरित अनाज जो साबुत मूंग होता है ना, ग्रीन वाला आप जानते हैं, हाँ वेरी गुड, उसको भी आप अंकुरित कर खा सकते हैं। अंकुरित अनाज ऊर्जा और प्रोटीन से भरपूर होता है, तो इसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और लाइक एक आपको पता है ग्लो होती है जो बेल होती है बड़ी सी और उस पर बड़े बड़े पत्ते भी होते हैं, उसका आप रस भी पी सकते हैं, डिटॉक्स और इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप इसको खाली पेट मॉर्निंग में ले सकते हैं एंड गुनगुना पानी, नींबू उसमें ऐड कर सकते हैं, नींबू की कुछ बूंदे जो कि डिटॉक्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सुबह सुबह आप ये ले सकते हैं। आप अपनी डाइट में खाली पेट पपीता खा सकते हैं जो पाचन के लिए फ़ायदेमंद है एंड आंवले का भी सेवन कर सकते हैं, चाहे आप उसे मुरब्बे की फॉर्म में ले सकते हैं, अचार के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर उसका पाउडर भी होता है चूर्ण, वो भी आप ले सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है और दही बहुत ही ज़्यादा यू नो हेल्दी है, जो आप दोपहर में ले सकते हैं डाइट में, आफ्टरनून में ले सकते हैं आप लंच टाइम में, ये पाचन और प्रोटीन के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसका भी सेवन करें और फिट रहें। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप ले सकते हैं और अपनी फिटनेस को और भी ज़्यादा यू नो बढ़ा सकते हैं। और आप जब अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो आप यंग भी दिखेंगे और ब्यूटीफुल हैंडसम भी दिखेंगे, है ना। और दोस्तों मैं आपको एक और यू नो बात बताने वाली हूँ, देखिए गर्मी अपने चरम पर है, हम तो अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन सोचिए उन नन्हे परिंदों के बारे में जो बोल नहीं सकते, मांग नहीं सकते, बस हमारी दया और इंसानियत पर निर्भर हैं। सुबह की चहचहाहट से हमारी नींद खूबसूरत बनाने वाले ये पक्षी आज तपती धूप में पानी की एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। दोस्तों अगर आपकी छत की घर की छत, बालकनी, खिड़की या फिर आंगन में थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ एक छोटा सा पानी का बर्तन भरकर ज़रूर रखिए। यकीन मानिए आपके द्वारा रखा गया वही छोटा सा पानी का बर्तन किसी पक्षी की प्यास बुझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यू नो सहायक होगा, जीवनदान बन सकता है। इंसानियत सिर्फ बड़े कर्मों से नहीं बल्कि छोटे छोटे दया से भी पहचानी जाती है, और किसी बेजुबान की प्यास बुझाना शायद सबसे खूबसूरती नेकी में से एक है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी कार्य आप कर सकते हैं और ये छोटी सी

शुरुआत करें अपने आसपास के पक्षी के लिए पानी रखें और इस भीषण गर्मी में उनके साथी बनिए, क्योंकि दया, सेवा और प्रेम ही सच्ची इंसानियत है। और अब इसी प्यारी सी सोच के साथ मैं आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति। दोस्तों, मैं जाने से पहले कुछ और संदेश आए हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। अभी मेरी नज़र गई है, बहुत सारे यहाँ पर मैसेज हैं जो अभी मुझे कंप्लीट करने हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, इनके फ्रेंड्स हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, हम बहुत अच्छे हैं, आपका शो मॉर्निंग मसाला हम रेगुलर सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड ये कहते हैं आपके प्रोग्राम पेश करने का जो अंदाज़ है वो काबिल तारीफ है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी की गर्मी बढ़ती जा रही है, सभी से अनुरोध है आप अपना सही तरीके से ठीक से ध्यान रखें, बिना ज़रूरत के बाहर ना जाएं, जब ज़रूरत पड़े तभी निकलें। और सर कहते हैं वह भी सर ढककर और पानी की बॉटल घर से ज़रूर लेकर साथ जाएं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना ब्यूटीफुल संदेश पहुंचाया है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे पास कुछ टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं जिनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप आए बाहर आई, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहिए और मुरादाबाद में ऐसे ही खुशियाँ फैलाती रहिए। और ये मैसेज हमारे पास आया है आकाश चौधरी जी का लाइन पार से, कहते हैं कि हम आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं मैम, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है वंशिका का, और ये प्रकाश नगर से हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं, कहती हैं मैम आप जो बातें करती हैं ना बहुत प्यारी होती हैं और बात करने का तरीका भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, हम जाने वाले हैं यहाँ से, अनुमति आपसे लेने वाले हैं, लेकिन हाँ जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे अभी कुछ खास एपिसोड हम प्ले करने वाले हैं, कुछ खास कार्यक्रम आप सभी के लिए आने वाले हैं जो कि आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं, आपकी सेहत के बारे में उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं और आपके फ़ायदे के लिए भी हैं। तो श्रोताओं, उनको मिस मत कीजिएगा, सुनिएगा ज़रूर और अपने फीडबैक भी हमें शेयर कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896, ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने आस पास पशु पक्षियों का भी ख्याल रखिए और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी। Bye bye, keep smiling, take care. और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में हांजी। और आज इस कार्यक्रम में हम बात

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूँ अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं।

0: इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है। जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली। पर जब वहाँ बैठी एएनएम बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है, संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते हैं।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं,
2: यही नागरिक समझ है। मुझे नहीं आता, कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए, कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे ही राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है, लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली, ये उपदेश नई अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जाँच के बारे में पूछे, वे हमेशा कहती हैं हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ करी, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है, जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। 3 डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4 सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। 5 परिवार की राय सुनिए पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6 सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7 जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। 7 जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोताओं? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर ID, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, ₹20,000 डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है। बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। OTP, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा। दोस्तों फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए जल्दी शिकायत ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का तो चेक करें खुद, अपने आप गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहां पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें और हाँ ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है पर जानकारी भी जरूरी है।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एफएम मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सुनीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहते हैं कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पैफवा एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाता। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीडियर्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है। माँ भी ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे की बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती हैं। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करे?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह

0: बताती है। ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
2: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
0: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है। यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
0: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
2: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
1: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
2: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
0: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है, उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी तुम्हारे पास प्रमाण क्या है।
0: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं, जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना। अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है,
2: और खासकर बेटियों के मामले में। हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों, तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्पूर्ण हो।
1: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है, लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सर। इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही, लाभ कई, सच में घर तक पहुँचे।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले सब घबरा जाती थी।
2: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है इस वक्त, वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल। ठीक है, आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: ब्यूटीफुल।
1: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: वाव।
1: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है?
1: जब बेबी डिलीवर होता है, एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ गुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी जी।
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी जी
1: जी। ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर

0: बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
1: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
0: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ
0: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
0: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
1: ऑलराइट,
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
1: ओके,
0: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह। अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2 to 3 आवर्ली, इनिशियली 2 to 3 आवर्ली हम बोलते हैं। जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं, उनको नहीं पता होता है। वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: Okay.
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ जी,
0: उसमें
1: हाँ
0: हमारे
1: जी।
0: फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाए ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए।
1: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिसे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोस ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीज हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है,
0: बहुत उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो, ठीक है। और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म से जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए, बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं। तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू। तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है, जिनका जैसे 1.5 kg मतलब 1.5-2 kg इस टाइप के वजन है, जितना भी, तो जब बच्चे का वजन 2 kg या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है। उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्री टर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है। तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कतें हैं, ठीक है। और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है।

0: कि आभा कार्ड पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड यानी कि PHR को आप ऑनलाइन मैनेज कैसे करें, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसकी आईडी बनती कैसे है,
1: और ये भी आप चरणबद्ध तरीके से बताइएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पहले तो ये समझ लें कि आभा आईडी पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस बनाने के लिए कुछ चरण हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। पहला, आप आभा ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि एंड्रॉयड और iOS पे हमको आभा ऐप जो है वो प्रोवाइडेड है। सरकारी आईडी का प्रयोग करके रजिस्टर करें और पोर्टल की तरफ से पूछे गए जितने भी विवरण हैं वो उसमें सब भर दें आप, ठीक है। अपने आधार कार्ड से जो फोन नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पे दर्ज कर दें, ठीक। अपने मोबाइल नंबर पर शेयर किए गए OTP के साथ नंबर को सत्यापित कर दें, ठीक है। OTP सत्यापित जैसे ही होगा ये प्लेटफॉर्म आपका PHR एड्रेस जनरेट कर देगा, ठीक है। अब आपका PHR एड्रेस जनरेट हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल एक ये आ जाता है कि आभा कार्ड के लिए आखिर अप्लाई कैसे करें, है ना। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ एक पोर्टल पर आए हैं,
1: अभी उसका ऐप डाउनलोड करके चीजें हमने
0: जी
1: उसको अपने मोबाइल पे ले लिया है, लेकिन अब उसको क्या करें कि ऑनलाइन आभा कार्ड अप्लाई कैसे करें।
0: बिल्कुल। तो ये भी समझने वाली जरूरत, ये भी समझने वाली बात है। तो आभा एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन है जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जो अप्लाई करेंगे वो कैसे कैसे करें या इसमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, भावना।
1: आशीष, एक प्रश्न आ रहा है छोटा सा,
0: पूछिए।
1: कि आभा जो अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले अपना पर्सनल हेल्थ एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा।
0: हाँ, जो मैंने आपको बताया पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है आपका, वो आपको जैसा मैंने बताया कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे,
1: PHR एक एड्रेस है पहले, वो जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम आभा आईडी के लिए अप्लाई कर सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तभी तो उसमें आपसे OTP मांगी जा रही है। जब आप OTP डालकर अपना फोन नंबर सत्यापित करते हैं तो आपका PHR जो है PHR एड्रेस वो जनरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। अब जो आपने पूछा है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें इस कार्ड के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, इसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आभा कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना आधार कार्ड रेडी रखें या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रेडी रखें। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके आप आभा हेल्थ कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला ये कि आधार कार्ड का उपयोग करके, है ना, और दूसरा ये कि ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके। तो अगर आप मान लीजिए आधार कार्ड का उपयोग कर रहे हैं आभा नंबर पाने के लिए, ठीक है, तो एक लिंक है आभा ऐप का जो मैं पढ़ भी देता हूं, और अगर हमारे श्रोता भाई बहन जो हैं अगर वो जन सेवा केंद्र पर जाते हैं तो वहां पर जो व्यक्ति मौजूद होते हैं वो आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। यदि आप खुद इंटरनेट के जानकार हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लैपटॉप पर या अपने फोन पर ब्राउजर में जाके अगर वो लिंक डालेंगे तो वो लिंक खुल जाएगा। लिंक मैं जबानी तौर पे भी बता देता हूँ,
1: जबानी तौर पे आशीष बहुत ही आराम से पढ़िएगा।
0: हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा
1: करके आप
0: जी, ताकि लोग उसको सुन लें और अच्छे से नोट कर लें। लिंक कुछ ऐसा है, तो भावना मैं जबानी तौर पर भी एक बार अपने श्रोताओं को ये बता देता हूँ कि वो लिंक क्या है, ताकि अगर वो लोग कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है
1: बहुत आराम से आशीष बताइएगा।
0: तो लिंक, अगर आप आधार कार्ड के जरिए अपना आभा नंबर पाना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो है http:// दो बार लगाना है आपको, और उसके बाद आपको टाइप करना है ABHA आभा, डॉट लगाना है abdm.gov.in, ये हमारी आईडी है। फिर स्लैश लगाइए, ABHA लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए, V3 लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए और रजिस्टर लिखिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका दूसरा चरण जो आएगा वो ये कि आप आधार का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाएं, ये ऑप्शन जहां पे है उस पर क्लिक कर दें। फिर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर वहां पर दर्ज करना है, उसमें घोषणा बॉक्स होगा जिसको आप चुने और अगला, उसमें लिखा होगा अगला यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें नेक्स्ट या अगला लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP आ जाएगा, ठीक है। अब आपको OTP वहीं पर डालना है जहां पर उसको लिखना है, सामने आपके स्क्रीन पर वो ऑप्शन आएगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है।

0: अधिक जानकारी के लिए कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर दोबारा दर्ज करें। ऐसा करने के बाद आपका संचार का जो विवरण है वो दर्ज करें, और जब ये सारी चीजें आप दर्ज कर देंगे तो आपका आभा पता बनाया जाएगा।
1: ये तो बहुत आसान प्रक्रिया लग रही है आशीष।
0: हाँ, सुनने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है या लेंदी लग सकती है, लेकिन एक बार वो करेगा उसके लिए प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरलीकरण।
1: जो लोग इंटरनेट आजकल तो सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं और रजिस्टर खुद ही मोबाइल पे करते हैं, बहुत सारी चीजें
0: जी,
1: तो हमें उम्मीद है कि श्रोता ये लोग खुद ही कर लेंगे।
0: हाँ, या जनसेवा केंद्र है,
1: जनसेवा केंद्र पे कर सकते हैं।
0: ठीक है, और ये दूसरा जो विकल्प ड्राइविंग लाइसेंस वाला है वो भी मैं बताना चाहूंगा। उसके लिए आपका जो लिंक है वो है https://abha.abdm.gov.in जो हमारी आईडी है सरकार की, फिर /abha/v3/register। ये लिखने के बाद क्लिक करें तो आपके सामने एक पन्ना खुलेगा जहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करना है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाए पर क्लिक करें। वहां पे ये एक ऑप्शन होगा, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाएं, इस पर क्लिक करिए। वहां पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और घोषणा चुनें, आगे बढ़ें, यानी कि आगे बढ़े वाली जो घोषणा है उसको क्लिक करें और आगे बढ़ें। जैसे ही आप ये करेंगे अपने रजिस्टर मोबाइल पर आप देखेंगे कि एक ओटीपी आया होगा जिसको दर्ज करें सामने, और फिर वहां पर एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें नाम, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म तिथि, लिंग, पता, पिन कोड, जिला और राज्य जैसे विवरण आएंगे जिसको आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका है उसकी फोटो उस पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये सब कुछ करेंगे आपका आभा नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर लें। आपका आभा नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसा हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि आभा कार्ड के साथ हेल्थ केयर का जो भविष्य है वो वाकई में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो सुव्यवस्थित हो जाती है और टेलीमेडिसिन इंटीग्रेशन भी होता है। जैसे आभा कार्ड वर्चुअल कंसल्टेशन को भी सपोर्ट करता है जिससे रोगियों को दूर से हेल्थ केयर सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद मिलती है भावना, खासकर ग्रामीण या कम सेवा वाले क्षेत्र के लोग जो हैं उन्हें लाभ हो सकता है।
1: यानी कि फोन से भी आप अपने दवाओं की जानकारी पा सकते हैं।
0: हाँ, मतलब उसमें अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप ये भी जानकारी वहां से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अनिवार्य सूचना क्या है, आभा के साथ CGHS लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। CGHS जानती है क्या होता है? केंद्र सरकार की जो हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, इसको लिंक करना जरूरी है और इसके भी कई सारे फायदे हैं।
1: वो क्या है आशीष?
0: वो ये है कि सुव्यवस्थित सेवाएं हो जाती हैं आपकी, जो केंद्र की सेवाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, यानी कि सेंट्रलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड आपका हो जाता है, ठीक है, बेहतर हेल्थ केयर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ ये अनिवार्य लिंक जो है वो सरकारी नियमों का पालन भी सुनिश्चित करता है जिससे केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ती है।
1: आशीष, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, लेकिन एक प्रश्न और आ रहा है मन में और वो ये है कि ये आभा एड्रेस क्या है?
0: हाँ बिल्कुल, सारे प्रश्नों का जब तक उत्तर ना मिले तब तक चर्चा का भी क्या फायदा भावना। तो मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगा, आभा जैसा कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, आभा एड्रेस जो है एक विशेष पहचानकर्ता के रूप में काम करता है।
1: अच्छा।
0: यानी कि आपका जो आभा नंबर है वो एक विशेष पहचान है,
1: आधार कार्ड नंबर की तरह।
0: बिल्कुल, आधार कार्ड नंबर की तरह, ठीक है। तो आभा एड्रेस एक विशेष पहचानकर्ता के तौर पर काम करता है जो अनिवार्य रूप से स्वघोषित यूजर नेम है आपका, ठीक है, जो आप अपना बनाते हैं, और ये आपको अपने हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में शेयर करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है।
1: आशीष, आपने सारी बातें तो बताई, लेकिन हमने बहुत पहले ही प्रश्न पूछा था शुरुआत में ही, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बार बार ये आभा अकाउंट ये आ रहा है, ये अकाउंट ये खाते का क्या मतलब है? क्या इसमें पैसे भी जमा करने पड़ेंगे या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उससे लिंक करने का ये क्या अर्थ है, जरा समझाइए थोड़ा।
0: नहीं बिल्कुल भावना, ये आपके दिमाग में आई हुई एक बात है और कहीं ना कहीं हो सकता है कई श्रोताओं के मन में भी ये बात आए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आभा कार्ड प्राप्त करने की जो लागत आपको लग रहा है ना कुछ होगी, ये बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। आभा कार्ड मुफ्त है। आपको अगर अपनी आभा आईडी बनानी है तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट पर जाइए, वहां से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने आईडी बनाई है तो। लेकिन अगर आपको आभा के तहत कवर ना की गई किसी भी अतिरिक्त हेल्थ केयर सेवाओं को एक्सेस करने की आवश्यकता है तो आपको उनके लिए अलग से भुगतान करना पड़ सकता है।
1: अच्छा आशीष, अब ये बताइए कि कार्ड रजिस्टर करने में कितना लागत लगता है?
0: देखिए मैंने बताया पहले भावना कि ये सब कुछ मुफ्त है, आप मुफ्त में आभा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी आभा आईडी बना सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है,
1: मतलब अगर हम इंटरनेट यूज करते हो तो खुद ही जाकर, या हमारे घर में अगर कंप्यूटर है प्रिंटर है तो खुद भी डाउनलोड, ये सारे काम हम खुद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ चूंकि बात आभा की हो रही है तो सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो आयुष्मान कार्ड के तौर पर हमारे देश में चलाई जा रही है उसके बारे में भी मैं एक लाइन में जानकारी देना चाहूंगा कि जो योग्य व्यक्ति हैं वो देश भर में पैनल में शामिल जितने भी हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उस पर हर वर्ष 5 लाख तक के कैशलेस हेल्थ केयर का लाभ पाने के लिए अपने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: आशीष, ये आयुष्मान कार्ड और ये आभा कार्ड ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो क्या दोनों बनवाने हैं कि एक ही से हमको सुविधा मिल जाएगी, ये जरा हमको थोड़ा सा समझाइए।
0: ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दरअसल आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड के बीच अंतर जो है वो ये है कि आभा कार्ड मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जबकि आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त में हेल्थ केयर लाभ प्रदान करता है। अब एक बात और जो मैं अपने तरफ से बता देता हूँ कि आभा कार्ड के उपयोग में मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस करने, हेल्थ केयर सेवाओं का लाभ उठाने और सुव्यवस्थित उपचारों के लिए बीमा विवरण लिंक करने के लिए हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और फार्मेसी शामिल की गई है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आता है कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट प्रदान करता है या नहीं?
1: जी बिल्कुल,
0: ये भी आपके मन में आ रहा होगा।
1: बिल्कुल मन में आ रहा था, हम अगला प्रश्न ही आपसे करने वाले थे, पूछने वाले थे।
0: हाँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं, अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि नहीं, इसका जवाब है नहीं। फ्री में कोई ट्रीटमेंट आभा कार्ड ऑफर नहीं करता, क्योंकि आभा आपकी मेडिकल हिस्ट्री स्टोर करने की एक व्यवस्था है।
1: तो ये जो अकाउंट शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं वो अकाउंट सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री के लिए है स्टोर
0: ये करने अकाउंट
1: के
0: वैसा
1: लिए?
0: ही है जैसे आप अपने इंटरनेट पर कहते हैं ना कि हमारा जीमेल अकाउंट है, हमारा याहू अकाउंट है ना, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, हमारा फेसबुक का अकाउंट है, या हमारा ट्विटर या एक्स का अकाउंट है। तो जैसे वो खाता है वैसे ही एक एप्लीकेशन जिसमें बना हुआ एक ऐसा खाता जो आपकी जानकारियां स्टोर करता है,
1: जो हमारे पर्चे, जो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो हमारी सारी विवरण इसमें स्टोर करके रख देगा।
0: तो इसीलिए कहते हैं कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करता है, बल्कि ये हेल्थ रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जैसे मेडिकल खर्चों को कवर नहीं करती है। ठीक है
1: जी आशीष,
0: 2-3 सवाल और जो अक्सर लोग पूछते हैं, मैं उसका भी एक बहुत कम शब्दों में जवाब दे दूं। जैसे एक सवाल ये भी आता है कि क्या आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर भी है नहीं। दरअसल आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करता, इसे मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने, जैसे मैंने पहले बताया, और शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन बेहतर एक्सेस के लिए आप इसे अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के साथ लिंक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और एक सवाल आता है भावना, पता है आपको
1: आशीष,
0: अक्सर लोग पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आभा कार्ड कैशलेस है? तो इसका उत्तर कुछ ऐसा है कि आभा कार्ड खुद में तो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान नहीं करता, लेकिन ये बीमा विवरण स्टोर करने में मदद जरूर करता है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य बीमा प्लान से लिंक होने पर कैशलेस क्लेम के लिए जरूर किया जा सकता है। ठीक ठीक है,
1: कैशलेस क्लेम।
0: जी, कैशलेस क्लेम के लिए आप
1: लिंक
0: उसका
1: करेंगे अपना हाँ, बीमा को, तब वो
0: तो जैसे आपने मान लीजिए कैशलेस इलाज कराया तो उसका क्लेम करने के लिए जरूर ये आपके काम आएगा, ठीक है। एक सवाल और भी आता है, आभा कार्ड के लाभों की लिमिट क्या है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि आभा कार्ड के लाभों की फाइनेंशियल लिमिट तो कोई है नहीं, लेकिन डिजिटल स्वास्थ्य पहचान के रूप में चूंकि ये कार्य करता है इसलिए जो मेडिकल रिकॉर्ड तक सुरक्षित एक्सेस आपको देता है, लेकिन इलाज की लागत को कहीं से कवर नहीं करता। तो ये हमें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि हम आभा आईडी बना लेंगे तो हमारा सब कुछ मुफ्त में हो गया।
1: बिल्कुल, आमतौर पे ये सब सुनने में ऐसा लग रहा है, आभा कार्ड हो सकता है कुछ लाभ मिले। तो श्रोताओं से कहना चाहिए,
0: लाभ तो बहुत बड़ा है इसका,
1: लाभ सिर्फ रिकॉर्ड को रखने तक ही ये बहुत जरूरी है। ये
0: तो ये लाभ
1: पुराने से पुरानी बीमारी जितनी भी होगी वो सारे रिकॉर्ड में मेंटेन रखेंगे।
0: कोई बच्चा बीमार हो गया
1: जी,
0: ठीक है, आपने उसका आभा कार्ड बनाया है, आपने उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री रखी हुई है, अब वो ठीक हो गया, मान लीजिए 15 से 20 साल की उम्र के बाद में अचानक से उसको कोई ऐसी बीमारी हुई जिसकी मेडिकल हिस्ट्री कहीं ना कहीं उसके 20 साल पहले वाली बीमारी से जुड़ती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, वो डॉक्टर को तुरंत समझ में आ जाएगी। तो ये कितना बड़ा टूल है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि ऐसी जानकारी आप कहीं और इकट्ठा करके रख नहीं सकते। तो इसलिए आपको एक डेडिकेटेड सरकार की तरफ से सर्वर दे दिया गया है जहां आप अपना खाता खोलें, अपनी जानकारी सारी उसमें रख दें। इसके साथ साथ एक सवाल और भी पूछा जाता है कि आभा क्या एक निजी है या सरकारी पहल है, तो ये पूरी तरीके से सरकारी पहल है, ये हम सभी जानते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसकी तरफ से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो कि ABDM है, इसके तहत 2021 में इसको शुरू किया गया था।
1: 2021 तक ये सुविधाएं सभी को मिल दी जा रही हैं
0: और काफी उपयोगी है, ये तो हम देख ही रहे हैं इसके जो फीचर्स हैं।
1: जैसे कि अभी चर्चा के दौरान बात निकल के सामने आई, ये बहुत ही इजी और बहुत ही लाभप्रद है आशीष।
0: बिल्कुल। अच्छा, ये भी बात है कि आभा कार्ड बनाने के बाद क्या करें, तो आभा कार्ड बनाने के बाद आपको अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक करना चाहिए, ठीक है, बीमा विवरण अगर आपके पास कोई है तो उसको अपडेट कर लीजिए, बेहतर मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट को अगर समन्वित करना है तो उसके लिए हेल्थ केयर प्रदाताओं के साथ में अपनी आईडी भी आप शेयर कर दें ताकि वो आपको सही ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो भावना, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आज जो हमने आभा को लेकर विस्तार से आपस में चर्चा की है या जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई है वो उनके बहुत काम आने वाली, क्या कहती हैं
1: आशीष? बहुत काम आने वाली है, और हम तो श्रोताओं से कहेंगे कि इसको बहुत सावधानी पूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा सुने।
0: बिल्कुल, और देखिए रेडियो चैनल पर भी बहुत सारे हमारे जो गांव हैं वहां के महिला, वहां के पुरुष, वहां की बेटियां, वहां के बच्चे विजिट करने भी आए थे। जब हमने उनसे सवाल किया तो कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आभा कार्ड क्या होता है या आभा आईडी क्या होती है या इसके क्या काम है, इसका कैसे हम प्रयोग करें, कैसे पाएं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी श्रोताओं की एक श्रृंखला है, अब उन सबको ये बात पता चल जाएगी कि आभा है क्या, और ये कहीं ना कहीं उनके बहुत काम आने वाली है।
1: बहुत काम आने वाली है आशीष, क्योंकि जो आज चर्चा का मुख्य बिंदु ही रहा।

0: अहमदाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज।
1: और मुझे यानी अपने साथी आशीष और मेरी सहयोगी भावना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
4: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
5: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
6: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 और हम फिर से लेकर आ गए आप सभी के लिए महिला मंच। आपको ही पता है कि रीना अकेली नहीं आती है मेरे साथ।
1: आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। और बहुत ही खूबसूरत है हमारे शो का नाम महिला मंच, और इस महिला मंच में हम फिर से हाजिर हो गए दोनों। हाँ जी रीना जी, और खुशी तो आपके साथ रहती ही है। तो दोस्तों आज हमारा विषय

0: आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही खास है, जहां हम बात करते हैं समाज और जिंदगी से जुड़े उन मुद्दों की जो घर से जुड़े होते हैं। आज का विषय हमारा है लड़कियों की जिंदगी बचपन से शादी तक।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई लड़की 25 साल की होती है, घर परिवार और समाज की बातें शुरू हो जाती हैं। अब तो शादी कर दो, लड़की बड़ी हो गई है।
0: हाँ यार, ऐसा मैंने भी सुना है अक्सर आसपास में। धीरे धीरे ये बातें तानों में बदल जाती, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और लड़की भी सोच में पड़ जाती, क्या सच में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ शादी ही है।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हम समझेंगे कि एक लड़की की जिंदगी में बचपन, पढ़ाई, सपने, शादी और

0: शादी के बाद की जिम्मेदारियां किस तरह से बदल जाती हैं।
1: बचपन और सपनों की दुनिया। हर लड़की का बचपन भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी भी बच्चे का। वो भी सपने देखती है, डॉक्टर बनने का, टीचर बनने का, कुछ बड़ा करने का।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन कई बार समाज की सोच उसके सपनों को छोटा कर देती है। लड़कियों को अक्सर कहा जाता है, ज्यादा मत पढ़ो, आखिर शादी ही तो करनी है, घर का काम सीखो,

0: बैठी है। इन बातों से सिर्फ लड़की ही नहीं, उसकी माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं।
1: लेकिन हमें यह समझना होगा कि शादी कोई मजबूरी नहीं बल्कि जीवन का एक बड़ा फैसला है, और यह फैसला लड़की की खुशी और उसकी इच्छा से होनी चाहिए। क्यों, सही कहा ना खुशी मैंने?
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद लड़की की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक घर छोड़कर उसे दूसरे घर में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, नया माहौल। कई बार उसे हर छोटे बड़े काम के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ पूछ कर करना पड़ता है।
1: ये तो तुमने 100% सही बात कही है। ऐसे में लड़की को कई बार लगता है कि उसकी आजादी कम हो गई है, लेकिन अगर परिवार समझदार हो और लड़की को सम्मान दे तो शादी के बाद की जिंदगी भी खुशहाल और सुंदर हो जाती है। तो श्रोताओ, आप आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ यूं ही आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं लड़की की पहचान और आत्मनिर्भरता के बारे में। आज के समय में सबसे जरूरी है कि लड़कियां आत्मनिर्भर बने। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो वह हर परिस्थिति में सामना कर सकती हैं।
0: एग्जैक्टली राइट रीना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शादी हो या ना हो, लड़की की पहचान सिर्फ किसी की बेटी, बहू या पत्नी होना नहीं है, उसकी अपनी भी एक पहचान है, उसके अपने सपने हैं। और समाज को ये समझना होगा कि लड़कियां बोझ नहीं बल्कि ताकत होती हैं।

0: अब हम जानने वाले हैं समाज के लिए संदेश। समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लड़कियों को ताने देने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उन्हें पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का मौका देना चाहिए। अगर हम लड़कियों को सम्मान और बराबरी देंगे तो समाज भी मजबूत बनेगा।
1: तो दोस्तों, आज हमने साझा की एक लड़की की जिंदगी, बचपन से लेकर शादी और उसके बाद तक की कितने बदलावों से गुजरती हैं। जरूरत है कि हम लड़कियों को समझने, उनका साथ दें और उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका दें, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा
0: लेते हैं और कल मिलेंगे हम सेम टाइम एंड सेम जगह।
1: तब तक के लिए साथियों, सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार
0: नमस्कार श्रोताओं।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
1: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
2: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
1: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट आरजे खुशी। जी हाँ, आपकी दोस्त। और यहां पर समय हुआ है अभी 3:06।

0: राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में मंडे का दिन है आज और तारीख मैं आपको बता दी 18 मई की तारीख है और दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय राइट नाउ एंड अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में अखिल जी भी हैं, बहुत ही प्यारा मुस्कुराते हैं, इनकी स्माइल देखकर ना मुझे भी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर भी आ जाती है। तो दोस्तों मुस्कुराने में ना कभी कंजूसी मत किया करो, किसी उदास चेहरे को क्या पता आपकी मुस्कुराहट की ही तलाश हो, आपकी जो स्माइल है वो किसी उदास चेहरे पर भी लेकर आ जाए। तो हमेशा मुस्कुराते रहा करो और शुरू का नाम है हेलो फरमाइश, जहाँ पर बातें भी होती हैं और गाने भी होते हैं आपकी पसंद के। तो अखिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, मोस्ट वेलकम।
1: और कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी?
1: आज ट्रैफिक है दिल्ली रोड पे, अच्छा खासा। तो जो लोग दिल्ली रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं इस समय,
0: हाँ जी,
1: तो बहुत टाइम, थोड़ा सा टाइम लेके चले, और चौधरी चरण सिंह चौराहे के आसपास भी थोड़ा सा ट्रैफिक है आज।
0: ओके, तो देखिए ट्रैफिक अपडेट भी आपको मिल गई है कि कहां कहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, अगर आप उस रूट पर जा रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा ताकि आप ट्रैफिक में ना फंसे, एंड आपको अगर कहीं जाना है तो ऐसे रूट से जाइए जहां ट्रैफिक ना हो।
1: गाड़ी के एसी की सर्विस जरूर करवा लें।
0: हाँ, अखिल सर कह रहे हैं, आपने सुना भी है कि एसी की सर्विस कराइए क्योंकि गर्मी और ज्यादा बढ़ने पर है, राइट? जी, तो अखिल जी कार्यक्रम की शुरुआत तो हमने कर दी है लेकिन एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, आज की दोपहर डेडिकेट करते हैं ये स्पेशल ट्रैक आप सभी के लिए एवरीवन। और आप इस शो में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत सिंपल काम करना है, अपना फोन उठाना है और टाइप करना है हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर 9837896896। करेंगे और खट्टी मीठी बातें आप सभी के साथ श्रोताओं, एंड आप हमें एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आजकल रेडियो डिजिटल हो गया है, आपको पता है, कहीं भी जाइए आपका रेडियो आपके मोबाइल में है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप प्ले स्टोर पर जाइए और एफएम मुरादाबाद 89.6 सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा, नजर आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए और इजीली आप एफएम मुरादाबाद सुन सकते हैं। तो चलिए खूबसूरत सा गाना सुनते हैं अखिल जी, उसके बाद अपनी कॉलर से भी जुड़ेंगे, और ये ट्रैक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए, मुझसे दोस्ती करोगी मूवी का नाम है और गाना बहुत शानदार है, तो सुनते हैं। थैंक यू अखिल सर, एंड हम सब एंजॉय करते हैं मिलकर, और आप भी प्रयास कीजिए कि आपका भी कॉल जल्दी से लग जाए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और मेरे साथ में अखिल जी भी हैं, यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने उनको बोला कि पता नहीं जाने वो कैसा होगा रे, तो अखिल सर कहते हैं वो शुरू शुरू में होता है, बाद में तो पता ही नहीं क्या होता है। जी अखिल सर, बताइएगा कैसे हालचाल है। आपने इतनी गर्मी क्यों करवाई है, पहले तो मुझे ये बताइए आप।
1: मैंने कोई गर्मी नहीं कराई है।
0: आपने गर्मी नहीं करवाई है? हाँ, आप तो रहते हैं पूरे दिन एसी में और हम बाहर जाते हैं।
1: एसी चलता है भैया, एसी
0: एसी एसी चलता है। ओके, अच्छा अखिल सर, अभी
1: एक हमारे लिसनर्स की कॉल आई थी। हाँ। तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि गाड़ी में एसी अपना सही करके रखिए।
0: जी,
1: उनका विचार होगा, अभी एसी चल नहीं रहा है गाड़ी में। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ही

0: उन सर का
1: बाहर भी गर्म और गाड़ी भी गर्म
0: जी। अखिल सर गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि हर चीज गर्मी के आगे फेल हो रही है, कोई भी चीज वर्क नहीं कर रही है। और उन सर की बहुत ही खूबसूरत सी लाइनी थी, एक्चुअली वो अभी मैं भूल गई हूँ, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वो कह रहे थे कि जैसे ही मैं कार में बैठा तो मैंने आपकी आवाज सुनी एफएम मुरादाबाद पे, आपने कहा कि मुस्कुराने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, मुस्कुराने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो मुस्कुराना चाहिए। एंड उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ये लाइनें सुनकर मैंने फटाक से आपको कॉल किया, बट सर का कॉल मेरे को भी नहीं मालूम कैसे डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं।
1: हेलो फरमाइश। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम क्या है सर?
0: सालिम अंसारी जी बात कर रहे हैं।
1: सालिम अंसारी जी, सर बढ़िया सर, बढ़िया सर। क्या फरमाइश है आज आपके अंसारी जी?
0: तुम्हें क्या खबर, तुम हसीन इस कदर हो। अरे वाह वाह, क्या बात है,
1: क्या बात है, क्या बात? आपकी शादी हो चुकी है अंसारी साहब?
0: अच्छा,
1: बहुत जल्दी नंबर आए और बहुत जल्दी सबको आप दावत पे बुलाएं, जो भी आपको सुन रहे हैं ना उन्हें तो बुलाएं बुलाएं। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, इस बार आएंगे, जरूर आएंगे इस बार।
0: आपकी शादी में आएंगे सर?
1: थोड़ा सा ना सब समय के चलते, मतलब काम के समय के चलते थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल, मगर इस बार जरूर आएंगे। हाँ सर पक्का पक्का। सब बढ़िया सर, सब बढ़िया है सर।
2: हमारा मोबाइल खराब हो गया था तो दोस्त के फोन में सुन रहे थे सर, और उसी से फोन लगाया था।
1: तभी आवाज कम आ रही है आपकी, दोस्त ने आपकी आवाज कम कर रखी है। क्या नाम है आपके दोस्त का? फैजान साहब, आपने क्यों उनकी आवाज कम कर रखी है? हमारे अंसारी साहब की घबरा रहे हैं, ये तो बहुत घबराती हुई आवाज आ रही है, इनकी शादी होने वाली है तो उसका लग ये थोड़ी घबराएंगे। अरे सर ये तो परेशानी तो ऐसी है, एक आती जाती है सर।
0: एग्जैक्टली, जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम तो आते रहते हैं।
1: नहीं नहीं सर, कोई ये तो मोबाइल ही तो सबसे ज्यादा बड़ी टेंशन है, यही दूर है तो सबसे अच्छी चीज है। चलिए सर ये गाना सुनिए और अपनी इस टेंशन को थोड़ी देर के लिए दूर करिए। ओके सर,
0: मोस्ट वेलकम। अच्छा लगा हमें भी बात करके। तो चलिए श्रोताओं, ये बहुत ही प्यारा सा सर की पसंद का ट्रैक सुनते हैं। और अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं, अपना फेवरेट गाना सुनना चाहते हैं या फिर किसी स्पेशल को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई ट्रैक, तो बिना किसी देरी के आप हमें कॉल कीजिएगा, नंबर आप बताइएगा
1: 9837896896।
0: अरे वाह क्या बात है। अखिल सर आपने आज खाना नहीं खाया क्या? थोड़ी सी एनर्जी आपकी डाउन लग रही है मुझे।
1: अभी अभी लंच करने के बाद फिर से एनर्जी मिल जाएगी।
0: ओके चलिए अभी हम ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं एवरीवन, हातिम ताई मूवी का, एंड लौट कर आएंगे। तब तक आप भी कॉल लगाना ना भूलिएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए।
0: हाँ अभी आई है एनर्जी। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कभी कभी ना दोस्तों, सिर्फ एक गाना काफी होता है दिल को सुकून देने के लिए। इसलिए मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ वक्त बिताते रहिए और जिंदगी के छोटे छोटे पलों को महसूस कीजिए। एंड हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन जुड़े हैं अखिल सर, जरा बताइएगा हमें।
1: जो हमारे साथ अभी नेक्स्ट कॉलर जुड़े थे वो जरा अभी कहीं निकल गए हैं।
0: अच्छा, ओके,
1: तो उन्हें पकड़ना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिएगा। पकड़ लिया।
0: गर्मी ज्यादा है। हेलो, ओके, लगता है वो बिजी हैं शायद। अच्छा अखिल सर, आप कुछ बता रहे थे, बताइए।
1: मैं कुछ बता रहा था आपको।
0: हाँ,
1: मैं कह रहा था कि डेडिकेट करना भी सॉन्ग ना इतना इजी नहीं होता है कि हर कोई एकदम डेडिकेट कर दे, क्योंकि थोड़ा सा अंदर से अनकंफर्टेबल लगता है।
0: हाँ, exactly right.
1: तो इसलिए थोड़ा सा आज जरा हमारे मुरादाबाद की जनता जो है थोड़ा सा जागरूक होके एक दूसरे को डेडिकेट करे कुछ ना कुछ।
0: अच्छा अच्छा अखिल सर, अगर आपका कोई गाना सुनने का मन है तो आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: अगर मेरा कोई गाना सुनने का इस समय मन है तो इस समय मेरे तो दिमाग में वही आ रहा, चांद सिफारिश।
0: ओके, चांद सिफारिश शुरू करता तुम्हारी देता वो तुमको बता।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा तो चलिए सुनवाते हैं। कोई शायरी वगैरह है जो आप सुनवाना चाहते हो? अच्छा, ओके, ओ मैं समझ गई हूँ। अखिल सर भी शर्मा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया रेडियो पे तो सारे लोग सुनते हैं और भाभी जी भी सुन रही हैं, पता चला। ज्यादा ही खुश होकर
1: सारी शायरी मैं सुनती हूँ।
0: हाँ एग्जैक्टली। तो दोस्तों हम एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं एंड उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिए। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गाने गुनगुनाते रहिए और वहाँ पानी भी पीते रहिए। अखिल सर जो कार में बैठे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप, जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं, हौले हौले ड्राइव कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कुछ ट्रैफिक में बहुत परेशान भी हैं?
1: मैं तो बस यही कहूंगा कि हॉर्न कम से कम बजाएं, क्योंकि जितना हॉर्न जितना नॉइस पोल्यूशन कम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। और दूसरा, कभी कभी आ जाता है आपके आमने सामने ना कोई गाड़ी वाला या कोई ना कोई ऐसा बाइक वाला आ जाता है आपके सामने जो लगता है आपको गलत आ गया, मगर क्या कर सकते हैं, उसे बेचारे को कुछ कहे हैं, वो भी आ ही गया, तो आराम से एक प्यारी सी स्माइल देके उसे पास कर दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गुस्सा ना करें। और
1: एक तो वैसी गर्मी हो रही है तो ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं रहेगा ना।
0: बिल्कुल, तो देखिए गर्मी में ना दिमाग को गर्म नहीं करना है, कूल रखना है। और उसके लिए हम आपको कूल गाने सुनवाएंगे जिससे आपका माइंड कूल रहेगा। आप स्माइल करो और पानी पीते रहो और ये प्यारा से गाना एंजॉय करो। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए।
0: जी बिल्कुल।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजी खुशी आप सभी का वेलकम करती है और मेरे साथ अखिल सर भी हैं। एंड ये कुछ कहना चाहते हैं तो कहिएगा।
1: खुशी जी, थैंक यू, आपने मेरी पसंद करके ट्रैक प्ले किया। शान साहब की आवाज में, मतलब मैं जब भी गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो ऑलमोस्ट कोशिश ये रहती है कि एक आध ट्रैक तो शान साहब की आवाज का आएगा।
0: और ये खूबसूरत मूवी भी है फना, मैंने भी देखी है। आपने देखी है ना?
1: हाँ, मैंने भी देखी है। फना मूवी भी अच्छी थी। और अभी हमारे साथ एक लिसनर जुड़ी थी।
0: हाँ।
1: जिनका नाम था निशा।

0: उदित सर के, उदित नारायण जी के गाने 20 से 25 मतलब मोर देन 25,000 अभी तक वो गाने गा चुके हैं 36 लैंग्वेजेस में. और साथ में याग्निक जी भी, याग्निक जी का भी 20 से 22,000 के अराउंड उन्होंने अभी तक ट्रैक्स संग किए हैं और वो भी 25 लैंग्वेजेस में.
1: 25 लैंग्वेज में ना, लैंग्वेजेस में
0: ऐसे ऐसे हमारे पास.
1: अच्छा, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी इंग्लिश तो इनके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपको?
0: हिंदी और इंग्लिश के अलावा तो और अभी ऐसी कोई और लैंग्वेज है नहीं ऐसी जो
1: तेलुगु तमिल.
0: तेलुगु तमिल मैंने मतलब रहा हूँ मैं इन लोगों के
1: साउथ इंडिया. हाँ जी,
0: मगर थोड़ी थोड़ी मेरे को इन लोगों के मतलब हाव भाव से मैं समझ जाता था कि क्या कहना चाह रहे हैं.
1: ओके, लिटिल बिट शब्द भी आपको आते हैं.
0: मलयालम मतलब मलयालम लैंग्वेज बहुत उनके साथ मेरा वो पढ़ा है.
1: टिपिकल से बहुत ज्यादा है ना मलयालम लैंग्वेज.
0: लैंग्वेज हाँ, मलयालम टिपिकल कोई लैंग्वेज नहीं है, बस ये है कि अगर आप यूज टू हैं, अगर आप उसे पहले से बेसिक, अगर आपकी हर चीज की पता हो तो सारी लैंग्वेज आपको
1: इजी होती है, कोई भी मुश्किल नहीं है. एग्जैक्टली,
0: सुनने में भी अच्छी लगती है और कभी कभी अंदर से ये भी फील होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, यार इतनी लैंग्वेजेस तो और आनी चाहिए.
1: हाँ, एक्चुअली मेरे को ना तेलुगु लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स आते हैं और मुझे को अच्छा लगता है जब कभी कोई साउथ इंडिया से जुड़ते हैं यहाँ पर तो उनके साथ बात करने में. एंड गुजराती लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, बंगाली भी बहुत ज़्यादा है. केम छो गुजराती में तो मैं केमो ना छो अमी भालो आछी. और लाइक मराठी लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छी है. लैंग्वेज सभी बहुत अच्छी होती हैं, सबका अपना स्वैग है, अपना अंदाज है.
0: मुरादाबादी भी अच्छी. कहाँ जा रही है, किधर जा रही है?
1: अच्छा ऐसा बोलते हैं. अच्छा
0: मतलब
1: ये लोकल में बोलते हैं ना,
0: ये ऐसी थोड़ा
1: हाँ
0: कॉमेडी स्टाइल में.
1: ओके
0: अच्छा,
1: अच्छा आपके साथ में कोई आपके फ्रेंड है फ्रेंड सर्कल में जो ऐसा बोलते हैं लोकल में, तो कैसे बोलते हैं वो एक बार मेरे को भी जानना है. मुरादाबाद लोकल कैसे बोलते हैं?
0: नहीं मतलब ये तो अपना जैसे मुरादाबाद में अपने अपने दोस्त सर्कल में बात कर रहे हैं तो क्या चल रहा है, कहाँ गुजार रहा है, मतलब ये कभी कभी ऐसा.
1: ओके अच्छा ओके, लेकिन इस की लैंग्वेज का जो अपना लोकल टोन होता है उसकी बात ही अलग है ना.
0: लोकल टोन का तो अलग ही एक वो रहता है.
1: हाँ
0: चलिए ये वाली उनकी फरमाइश पूरी करते हैं
1: बिल्कुल, और उसके बाद हम लौट कर आते हैं. और श्रोताओं आप भी ट्राई कीजिए कि आपका भी कॉल लग जाए, जब आप प्रयास करेंगे तभी आपका कॉल भी लगेगा. एक दो बारी आप सोचें कि कोशिश की आपने कि कॉल ही नहीं लग रहा है, बहुत बिजी आ रहा है, तो एक दो बारी में नहीं लगेगा क्योंकि इस शो के ना बहुत सारे फैंस हैं जो कतार में लगे हुए हैं और वो भी कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं, बट आप उनमें से लकी आप भी हो सकते हैं. तो आप कोशिश करती रहिए और इस प्यारे से ट्रैक को एंजॉय कीजिए. हम लौट कर आते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक पर. ये है आपके शहर का अपना प्यारा सा, जी हाँ, सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए
0: और गुनगुनाते रहिए.
1: भैया पानी पी के आना है मुझे, मेरा गला सूख रहा है.
0: नींद तो नहीं आ रही ना तुम्हें?
1: नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अपने काम के टाइम पे नींद चैन सब ना मैं भूल जाती
0: हूँ.
1: तो चलिए एवरीवन ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं. अमेजिंग गाना है उदित जी, साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज. अच्छी फिल्म देखी है क्या आपने? राज
0: राज हाँ देखी है मैंने.
1: मैंने नहीं देखी है, मुझे बहुत डर लगता है ऐसी मूवी मैंने देखती.
0: नहीं इसमें डरने वाली मूवी नहीं है ऐसी कुछ,
1: इसमें
0: मतलब
1: थोड़ा सा
0: स्टोरी बहुत अच्छी है.
1: हॉरर टाइप का भी है ना थोड़ा सा.
0: ऐसी अगर आपको पसंद आए तो कई लोगों ने तो इसे दो दो तीन तीन बार देखा होगा.
1: और मुझे इसके ट्रैक ऑलमोस्ट सभी बहुत अच्छे लगते हैं. चलो अभी हमारी बातें यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, गाना सुनते हैं.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। एंड दोस्तों, अभी समय की बात करें तो वक्त हुआ है 3:46 और बहुत ही प्यारा सा अभी ट्रैक आपने एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी राज और उदित नारायण जी साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: दुआ मांगी थी आसियाने की, दुआ मांगी थी आसियाने की, चल पड़ी आंधी जमाने की, मेरा दर्द कोई समझ ना सका, मेरा दर्द कोई समझ ना सका, क्योंकि मुझे आदत थी मुस्कुराने की।
0: अरे वाह, क्या बात है, इतने खूबसूरत सी लाइनें बोली।
1: मैं इशाक अहमद अंसारी, ग्राम करेली, भिंडी मोहल्ला, जिला बरेली से बोल रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप।
1: बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं।
0: हाँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपकी ब्लेसिंग से। आप बताइएगा कहाँ पर हैं इस वक्त आप।
1: इस टाइम मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल से मैंने फोन लगाया है।
0: अच्छा,
1: तो काफी समय के बाद लगाया है।
0: ओके, लॉन्ग टाइम के बाद आपने कॉल लगाया है, तो बताइएगा सर क्या फरमाइश है आज आपकी।
1: आज मेरी फरमाइश है सदा स्वादन मूवी से,
0: जी
1: एक गुस्सा कैसे उतरेगा।
0: ओके okay, और ये गाना इतना खूबसूरत सा है, किन के लिए सुनना चाहते हैं आप।
1: ये इसलिए सुनना चाहता हूँ, इसमें कई सारी जो है सूचनाएं दी गई हैं, जैसे मनाना है किसी को,
0: जी
1: मना भी मनाते हैं तो
0: हाँ
1: गुस्सा हो जाता है।
0: जी
1: हाँ, तो उसमें ये नहीं है, जैसे पत्नी जो है अपने हस्बैंड को मना रही है, इसमें बहन भाई को भी मना सकते हैं, माता पिता को भी मना सकते हैं,
0: जी जी जी
1: सभी
0: जी
1: को मना सकते हैं।
0: ओके, ये ऑल मेंबर्स के लिए ट्रैक है। इस गाने में दर्शाया गया है, इस गाने में जो बयां की गई है बातें, अगर कोई नाराज हो जाता है तो उनको कैसे मनाना है, राइट।
1: जी,
0: जी, शुक्रिया सर
1: सुनना चाहता
0: कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं ये आपकी पसंद का प्यारा सा गीत।
1: हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी सर,
1: आप कुछ नाम बोलना चाहूंगा।
0: हाँ जी, बता दीजिएगा।
1: मेरे साथ अफ्तार अहमद, अंसार अहमद, दिलदार अहमद, मोहम्मद हस, मोहम्मद आरिफ, विद्वान भाई,
0: ओके, ठीक है सर, बिल्कुल। आपके सभी फ्रेंड्स के साथ ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं, आपने कॉल किया उसके लिए शुक्रिया। और एवरीवन, चलिए प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं। अगर आप किसी से गुस्सा है तो मान जाइए, एंड बस खुशी यही कहेगी कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी है। तो मुस्कुराइए और पानी पीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ये प्यारा सा गाना इन्जॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ।

0: पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुन्दर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
7: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
6: पर पापा।
7: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
9: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
10: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
9: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
10: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
9: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
11: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है. हेलो, जी हाँ, आप सभी का स्वागत है. हेलो फरमाइश शो में, खुशी आपके साथ है. और श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय किया. और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं. हेलो फरमाइश.
1: हाँ हेलो फरमाइश. सबसे पहले फसल जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार.
0: जी आपको भी नमस्कार. अपना नाम बताइएगा.
1: मैम जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका नीम श्रोता मोहम्मद इशरत आस बात कर रहा हूँ. मैम कैसी हो आप?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ इशरत जी, आप बताइएगा आपकी कैसे हाल चाल है.
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो जाती है और भी अच्छे हो जाते हैं. मैम मैम आपके पास में ये तो है अखिल भारतीय, मैम इन्हें रात को लगा दो, हेलो बता दो बस. मतलब काफी दिनों से बंद है प्रोग्राम.
0: अच्छा ओके.
1: मैम मैंने रात में सुना है गीत आपके नाम से, वो भी नहीं आया. हेलो मुरादाबाद तो लगभग 15 दिन से नहीं आ रहा.
0: सर रात तो मैं शू कर रही थी, आपने सुना नहीं.
1: मैम आप कर रही थी, मैं फोन इन फोन नहीं था, वैसे आ रहे थे बातचीत.
0: हाँ
1: कर रही
0: जी
1: थी
0: हाँ, कॉलिंग वाला शो नहीं था, बातचीत का वाला था. आप
1: मैम
0: क्या
1: ऐसा ना, रात
0: जी.
1: को भी एक फोन इन फोन होने चाहिए ना.
0: ओके हम पूरी कोशिश करते हैं सर. ठीक है.
1: और बताओ मैम मौसम कैसा मुरादाबाद का?
0: हाँ जी बहुत ज़्यादा गर्मी है, 39 डिग्री सेल्सियस इधर का वेदर है, टेम्परेचर है. बाकी आप बताइएगा रामपुर का मौसम कैसा है अभी.
1: मैम इस टाइम तो गरम गरम लुए चल रही है. और मैम कभी बारिश है, कभी गर्मी, कभी सर्दी आती है, मौसम मैम सब रंग का गड़बड़ है.
0: जी बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे आज.
1: मैम मैं आज सॉन्ग सुनूंगा. मैम आज दो मूवी है.
0: हाँ जी
1: मैम पहली मूवी है चाहत, और उसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है तेरे बिन दिल नहीं लगता नहीं लगता. और दूसरी मूवी है घराना, गाने के बोले मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना. मैम आज के फरमाइश में इन दोनों में से जो सॉन्ग आपको पसंद आ रहे प्ले कर देना कुछ.
0: ठीक है सर. हाँ जी बिल्कुल बताइएगा.
1: मैम सबसे पहले ये ग्राम रिपोर्ट से मकसूद भाई और यहाँ स्वाड से डीजे राठौर, ये वाला सॉन्ग इन्हीं को डेडिकेट साथ में आप और हम.
0: ठीक है सर, ये सुनवाते हैं गीत आपको. शुक्रिया कॉल करने के लिए.
1: थैंक यू. नमस्कार मैम.
0: नमस्कार आपको भी. तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक. और आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. और ये प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिएगा.

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने शहर का प्यारा सा रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। एंड वक्त हुआ है अभी एवरीवन यहां पर 4:05 और हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है आज। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: साथ अगर दोगे तो निभाएंगे जरूर, साथ अगर दोगे तो निभाएंगे जरूर, प्यार अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, राह में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आवाज अगर दोगे तो आएंगे जरूर। मैं भी नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा सर।
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद, जिला करेली से बोल रहा हूँ।
0: जी सर, बताइएगा कैसे हैं आप।
1: बहुत बढ़िया है, आप बताएं आप कैसे हैं, आपका शो सुन रहे हैं, काफी खूबसूरत अंदाज में अच्छे गीतों के साथ आप कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे, तो और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये गर्मी का समय होता है, समय से भी आराम से भी उठ जाता है आदमी, तो आपका शो इस वक्त मतलब बहुत अच्छा और कामयाब साबित होता है।
0: जी शुक्रिया आपका सर। आप क्या करते हैं।
1: जी मेरा बेल्डिंग का काम है, गाँव करेली में ही मैं अपना काम करता हूँ, वक्त निकाल कर आपका ये शो सुनता हूँ और
0: जी शुक्रिया आपका सर। बताएगा क्या फरमाइश है आज आपकी।
1: जी फरमाइश करना चाहूंगा, आज अजीबा फिल्म का गीत है मोहम्मद अजीज और अंसारी अजीज की आवाज में, मैं माफी का गुस्सा तू सोने की गुड़िया, लेकिन जिससे पहले चंद मैंने हूँ अगर आप कहते हैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइएगा सर।
1: जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे, ये मत पूछना किस किस ने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के भी चेहरे उतर जाएंगे।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत खूब लाइनें हैं आपकी एंड ये खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं सर, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया, और लौट कर आते हैं इस प्यारे से गाने के इस पार। मैं आपसे कहती हूँ एवरीवन कि आप भी मुझे कॉल लगाइए, मोबाइल नंबर है 9837896896, 9838 पर कॉल लगाइएगा और इस प्यारे से गीत को सुनिएगा।

0: आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपने दिल की बात आप कह सकते हैं और उसके लिए आपको मुझे कॉल करना होगा दोस्तों। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने इंजॉय किया कुमार सानू साथ में साधना सरगम जी की, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा
1: जी। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, जामनगर गुजरात से मैम।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सुनील जी?
1: ठीक मैम, बस बैठे थे मैम रेडियो सुनते हुए मैम।
0: जी जी जी बताइएगा, कैसा मौसम है अभी गुजरात का?
1: जी मैम यहाँ तो बहुत अभी धूप है मैम, बस बैठे थे मैम आपका शो सुनते हुए मैम।
0: जी जी जी बिल्कुल, बताइएगा कौन सा गीत आज आप सुनना चाहते हैं सर, क्या फरमाइश है आपकी
1: जी? आज हमको सुनवा दीजिएगा गाने के बोला तुम्हें देखे मेरी आंखें, और सुनवाएंगे कितने रेडियो और दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुन।
0: ठीक है सुनील जी, सभी आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी स्पेशल को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, जी हाँ, एंड या फिर खुद के लिए भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल बिना किसी देरी के आप कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी, और ये प्यारा सा ट्रैक आप सब इन्जॉय कीजिएगा। Oh,

0: हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और देखिए दोस्तों, आपके दिल का हाल हम जानते हैं। इस वक्त गर्मी में आप थोड़ा सा परेशान हैं, लेकिन परेशानियों को करने का सामना एक्चुअली आपके अंदर है, और वो पावर, वो शक्ति आपके अंदर है। बस उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। लाइक अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, आपको भी पता है, तो इस समय आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। लाइक नींबू पानी पीजिए, एंड सिकंजी आप पीजिए, बेल का शरबत, एंड उसके अलावा गन्ने का जूस, इन चीज़ों का आप सेवन कीजिए। छाछ पीजिएगा। इन चीज़ें जब आप तरल पदार्थ लेते हैं तो उनसे आपको राहत मिलती है। और अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश
1: मैं
0: जी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका
1: जिला रामपुर ग्राम काशीपुर से नया बात कर रही हूँ आपसे।
0: जी, बताइएगा कैसी है नैया जी आप।
1: मैं अच्छी, आप बताइए आप कैसी हैं।
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ मैम। आप क्या करते हैं।
1: मैं जरी का काम करती हूँ।
0: अच्छा, जरी का काम करते हैं। तो कितने घंटे आप वर्क करते हैं जरी का, कितने घंटे काम करते हैं आप।
1: मेरे टाइम तो खाली है, काम नहीं आ रहे।
0: अच्छा ओके, जैसे शादियों का सीजन होता है या त्योहार आते हैं तब ज़्यादा बिजी होते हैं, है ना
1: मैं
0: जी। तो बताइएगा, इस वक्त आपका कॉल लगा है हेलो फरमाइश में, क्या फरमाइश है आपकी।
1: गाना सुन बाद लिए खुदा के लिए ये पढ़ता हटा दे, मुझे सिकंदर की सूरत दिखा दे।
0: ठीक है सर, मैम ये गीत आपको सुनवाते हैं, शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये प्यारा सा गीत का आप आनंद लीजिएगा। और दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि आप हमें कॉल लगाइए, चाहे आप कार में हो या फिर आप ऑफिस में बैठे हैं। अगर फ्री हैं तो आप कॉल लगा सकते हैं, और बिजी हैं तो आप गानों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे श्रोता थोड़े से भी परेशान हों। और हाँ, जो इस समय फ्री हैं, जो सोच रहे हैं कि क्या करें, समझ नहीं आ रहे हैं, फ्री बैठे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मुझे कॉल लगाओ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और समय की अगर बात करें यहाँ पर, तो श्रोताओं वक्त हुआ है 4:30, और इस खूबसूरत से गीत का आनंद लीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गाने के इस पार।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और साथियों, यहाँ पर समय हुआ है 4:38 और लगातार हमारे कॉलर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ कॉल्स डिसकनेक्ट भी हो रहे हैं शायद नेटवर्क इशू की वजह से। तो अभी हमारे साथ एक सर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजिर अफार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आपके वहाँ क्या हाल है?
0: जी बहुत ही अच्छे हैं सर, गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ही गर्मी है, बहुत जबरदस्त लू चल रही है।
0: जी जी जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप, हम तो धूप में बाहर जाते ही नहीं है, पूरे दिन हमें तो ऑफिस में ही हो जाता है।
1: चलो ये अच्छी बात है, उससे आप लू से तो बहुत ही जरूरी है बचना।
0: जी जी जी बिल्कुल, और सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि दोपहर के समय में ज्यादा से ज्यादा घर में रहें एंड बहुत कम ना के बराबर बाहर निकलें, अगर कोई काम है अर्जेंट तो जाएं वरना ना जाएं।
1: बहुत ही जरूरी काम है तो बाहर निकले
0: जी, क्योंकि इस समय अगर धूप में बाहर जाते हैं सर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं।
1: जी।
0: जी तो आप बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: मूवी का नाम है जीने की राह,
0: जी
1: और मोहम्मद रफी साहब की आवाज है और गाने के बोल हैं एक बंजारा गायक, कुछ सुनने वालों के नाम है
0: जी जी बिल्कुल बताइएगा।
1: मेरे पास है राजिया खान, कैमरन खान और मुरद आवाज के कुछ दोस्त हैं, अयूब खान साहब
0: जी,
1: शहनाज बाबू अंसारी, मिराज अंसारी, शफी अहमद अंसारी, रईदुल्ला अंसारी, शाहनूर अंसारी, मकसूद हुसैन, अंसार हुसैन, शारिक अली, इरशाद अली, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी तो चलिए श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत का आनंद लेते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना तो बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत इजी सा आपको काम करना है। जो अभी आप फोन चला रहे हैं ना, हाँ इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं से कहना चाहूंगी कि आप ही हमें कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए।
2: नया एक फसाना

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज डीएमआर हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें डीएमआर हॉस्पिटल, सिविल लाइंस मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक एनआईसीयू सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून नहीं बोलेंगे अभी हम। वैसे गुड आफ्टरनून बोलना भी है और बोलना भी नहीं, क्योंकि ये वक्त हुआ है 4:47 और बाहर की गर्मी को देखकर लग रहा है कि अभी 3 ही बजे हैं। इतनी कड़क धूप है, इतनी गर्मी है ना, बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन एवरीवन, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो 5 बजे के बाद ही जाएं। हम तो यही कहेंगे आपसे, जो इस समय ऑन द वे कार में हैं, हमें सुन रहे हैं, तो हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा मुस्कुराइए और रेडियो का जो वॉल्यूम है ना, म्यूजिक, वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट कॉलर की जानेंगे क्या फरमाइश है। और कुछ गीत ना बहुत ही खूबसूरत होते हैं जो दिल को सुकून दे जाते हैं, और जानते हैं अभी उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: जी, आपको भी नमस्कार। अपना नाम बताइएगा सर।
1: जी, मैं रियाजुल बोल रहा हूँ
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? गोविंदपुर से।
1: जी
0: जी जी जी, बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी, फरमाइश थी मैम, हमारी मैडम की फरमाइश थी, बोले आपका फोन लगाना। हेलो फरमाइश था तो गाना सुनना, साजन मेरा उस्तार है, मिलने को दिल बेकरार है।
0: अच्छा, तो आप दूर रहते हैं क्या अपनी फैमिली से?
1: जी, गोरखपुर बस्ती में रहते हैं मैम।
0: अच्छा, आप गोरखपुर में रहते हैं?
1: जी,
0: ओके
1: जी।
0: रहने वाले आप मुरादाबाद से ही है, राइट?
1: जी, मुरादाबाद के रहने वाले हैं, काम से जा रहे हैं।
0: अच्छा, ओके, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं सर?
1: ये मकान बना रहे हैं मैम।
0: अच्छा, ओके, आप आशियाना तैयार करते हैं। शायद आपसे हमारी पहले भी बातचीत हो चुकी है ना कार्यक्रम में?
1: 15-20 दिन में लगा देते हैं।
0: जी जी जी जी, बताइएगा। आज आप सुनना चाहेंगे अपनी मिसेस की पसंद का साजन मेरा उस पार है, राइट? हाँ जी, बिल्कुल, आपकी मैडम की फरमाइश पूरी करते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं मैम की पसंद का प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा कि आपका भी कॉल जल्दी से लग जाए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, देखिए, मैंने आपको कहा था कि समय की अगर बात करें यहाँ पर, तो वक्त हुआ है अभी 4:55 और हमारे जो लिसनर हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे उनकी क्या पसंद है, आज कौन सा गीत है जो उनके दिल के बेहद करीब है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: बोल रही है।
0: हाँ जी, मैं खुशी बात कर रही हूँ।
1: मैं इनाम अजीम बोल रहा हूँ, लाल स्कूल मुरादाबाद से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप?
1: मैं सॉन्ग सुनना है, जब काम जब किया इरादा मुझे, मैं हूँ आदमी सड़क का।
0: जी, मैंने कहा आप कैसे हैं, अपने हालचाल तो बताइए, गाने तो आप सुनवा ही देंगे हम आपको।
1: जी
0: आप कैसे हैं सर, आपका स्वास्थ्य ठीक है?
1: मैडम आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हो पा रही।
0: आवाज क्लियर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपके पीछे बैकग्राउंड में मेरी आवाज ही चल रही है, रिपीटेड हो रही है ना? ओके ठीक है सर, हम ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं, आप केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा।
1: ठीक है।
0: तो चलिए एवरीवन, सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं और इस खूबसूरत गीत के साथ हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहेंगे, क्योंकि एवरीवन नेक्स्ट प्रेजेंटर भी यहाँ पर आ चुके हैं, आरजे रीना जी, जो आपकी शाम को बनाती हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है एंड आज पूरे दिन में क्या स्पेशल होने वाला है वो सब कुछ आपको बताएंगी, तो आप सुनना ना भूलिएगा 5 से 7। एंड अभी फिलहाल तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपको कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपनों का भी ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। और यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपनी सेहत का विशेष कर ध्यान रखिएगा। बाय बाय, नमस्कार एवरीवन, टेक केयर।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पॉल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका, नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री, और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:03 हो चुके हैं और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो, जो आप सभी के लिए हम नई नई चीजें लेकर आते हैं, ताकि देखिए मतलब हम घर बैठे बैठे ना बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिल सके, बॉलीवुड से लेकर यानी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस होने वाले हैं। और हमारे मोदी जी ने यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या चीज़ें के ऊपर उन्होंने देखिए हमारे लिए ही अच्छी चीज़ें हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जब आप फॉलो करोगे तो देखिए ठीक भी रहोगे, हेल्दी भी रहोगे, क्योंकि आजकल ना दो कदम पे चलने के लिए हम बाइक स्कूटी उठाते हैं और यही रीज़न है कि इंसान यानी कि एक्टिविटी बॉडी से हो नहीं पा रही है, फिर वो बीमार होते जा रहे, थायराइड की, सांस की दिक्कत, बहुत से दिक्कतें बॉडी में चेंजेस होने लगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, सो उसके बारे में बात करेंगे। और आज मैं आप सभी को बॉलीवुड की गलियों की तरफ भी ले चलूंगी, सो आपने कितने नहीं जाना जी, बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आरजे रीना के साथ। और आप सभी के लिए ना बहुत प्यारा गाना है, क्योंकि देखिए हम प्यार तो रेडियो से बहुत करते हैं। और सच बताओ मेरा तो जो पहला प्यार है हम आरजेस के लिए, पहला प्यार हमारा रेडियो होता है, माइक होता है, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जैसे जिस आरजे का शो का समय होता है ना भाई, सच बताऊं हम एक टाइम के लिए रोटी नहीं खाते, खाना नहीं खाते, लेकिन शो के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इतने प्यारे प्यारे शो होता है, जो मैसेज प्यारे प्यारे करते हैं, और जब तक आपसे बात ना करें ना तो वो खाना भी हजम नहीं होता है। तो चलिए गाइज, ये बहुत प्यारा गाना है, सो इस गाने को एंजॉय करिए और लौट कर आते हैं आप ही के साथ कनेक्ट होने वाले इस स्टेशन पर और ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए गाना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हम तो आपसे प्यार करते ही करते हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
3: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
4: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
3: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, अर्जरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो 5:16 हो चुके हैं और अब हम बात कर लेते हैं जिसका इंतजार हमें बेसब्री से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंतजार तो बहुत सी चीजों का होता है बेसब्री से, लेकिन ये जो शाम का वक्त है ना, इस

का इंतजार हमें, जैसे बचपन की अगर बात करूँ तो स्कूल समय से, यानी कि जब भी छुट्टी होती थी ना, तो बस बैग उठाकर हम कुछ नहीं देखते थे कि हम गिरेंगे, कहीं चोट लगेगी, कुछ लगेगी, बस सीधा घर की तरफ रवाना हो जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब यानी कि हम ऑफिस से घर के लिए जब निकलते हैं तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि बस यार हम घर पहुंच जाए किसी तरह किसी तरह। लेकिन सच बताओ, ये समय जो होता है वो ट्रैफिक जाम वाला होता है, जहां आपको भरपूर मात्रा में ट्रैफिक मिलती है, और आप अगर जा रहे तहसील स्कूल चौराहे की तरफ तो आपको भरपूर मात्रा में यहाँ पर ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। साथ ही डबल फाटक और हरथला पीएससी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर तो भाई सच बताओ क्राउड रहता ही रहता है। 5 बजे के बाद से लेकर यानी कि 8-9 बजे तक तो बहुत ज्यादा आपको भीड़ मिलने मिलने वाली है गाइस। और साथ ही अगर आप कहीं ट्रैफिक में हैं तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा नंबर है 9837896896, क्योंकि जो भी उस रूट से आने वाले होते हैं वो थोड़ा सा बच जाएंगे। रेलवे स्टेशन की तरफ से जा रहे तो वहां पर तो आपको भी मतलब ट्रैफिक, देखिए शाम का वक्त है, ट्रैफिक आपको मिलेगा। मैं कहती हूँ हॉर्न कम, धैर्य रखिए और होले होले गाड़ी चलाइए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। सो आरजे रीना के साथ यूं ही कनेक्ट रही अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी आरजे रीना के साथ। फिलहाल जो अगला गाना ना, सच बताऊं माइंड ब्लोइंग, बहुत प्यारा गाना है। इस गाने को आप सुनने के बाद ना भाई, मैं तो यही कहूंगी कि रेडियो का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाइए, फिर इस गाने को सुनिए, एंजॉय करते करते सफर आपका कैसे निकल जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। चलिए फिलहाल मैं गाना ही प्ले कर देती हूँ, क्योंकि बहुत बोलती हूँ मैं, चुप नहीं होती हूँ।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और समय की बात करूँ तो 5:30 हो चुके हैं। तो श्रोताओं, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप गाड़ी में सुन रहे हैं हमें या फिर घर पर है कोई काम कर रहे हैं, कि देखिए रेडियो कभी आपसे ये नहीं बोलता है कि मेरे लिए मतलब तुम समय निकालो तभी तुम मुझे सुन पाओगे, बल्कि रेडियो आप कहीं भी सुन सकते हैं, काम करते करते भी सुन सकते हैं, हमारे रेडियो एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया है कि 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर से ही काम करना है आपने। तो ये इसलिए लिया गया है कि देखिए, अब देखा जाए तो हर घर में गाड़ी बहुत ज्यादा है, को दो है चलाने वाला तो दो के पास गाड़ी होगी, साथ ही साथ बाइक जो, और जब ये गाड़ियां चलती है तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और इसी पॉल्यूशन की वजह से हम भी बीमार होते जा रहे हैं, सांस लेने की दिक्कत होते जा रही है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए, यानी कि जो ये क्राउड बढ़ रहा है ना, इसीलिए उन्होंने चाहा कि 2 दिन के लिए सही, थोड़ा सा रोड पर ना सांस लेने की मतलब फुर्सत तो मिल जाएगी, जो पर्यावरण है थोड़ा शुद्ध तो होएगा, इसीलिए वर्क फ्रॉम होम उन्होंने रख दिया है। साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों पर, यानी कि पहले बात की जाए, बाहर आप घूमने जा रहे हैं, ईंधन की इनफैक्ट जो कि पॉल्यूशन के लिए कहा जाता है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा, और अब हर चीज़ महंगी हो गई है, यानी कि 2-3 रुपए महंगी कर दी गई है, पेट्रोल से लेकर दूध तक लेकर मसाले तक लेकर हर चीज़ महंगी हो गई है। और साथ ही साथ हमें अपना ध्यान भी रखना है गाइस, क्योंकि देखिए, और दूसरी बात ये है कि आप घर पर काम कर रहे हैं ना, यानी कि वर्क फ्रॉम होम तो हो ही गया है, लेकिन घर पर भी आप काम कर रहे हैं, तो अपने आप को इस तरीके से रेडी करिए कि सोचिए कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ऑफिस में ही काम कर रहा हूँ। क्योंकि घर पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई ठीक है, कौन देखने आ रहे हमें, ऐसे बैठ जाते हो ऑफिस के काम करने के लिए, लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो एक तो आप पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, आपके अंदर वो नेगेटिविटी आती रहती है, क्योंकि भारीपन रहता है मन में। तो इसीलिए चाहे ऑफिस हो या घर, हमेशा नहा के अच्छे से रेडी होकर ही आप अपना वर्क करें, फिर आपकी इससे ना सोच भी चेंज होती रहेगी, यानी कि अच्छा आप सोच पाएंगे और कोई भी काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम बात करने वाले हैं, भाई शादी में ना दामाद जी को चांदी का चप्पल मिल चुका है, और ये न्यूज़ कहाँ की है कहाँ की नहीं है, सो इसके बारे में बताएंगे। बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल कुछ कमर्शियल आर्ट ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आर्जेरीना के साथ। और आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो 5:42 हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि आज का जो डे है बहुत ज्यादा खास है। वो खास इसलिए है क्योंकि आज मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। यानी कि म्यूजियम डे इसलिए मनाया जाता है, ऐसी जगह होती है जहां पुरानी और खास चीजें संभाल कर रखी जाती है, जैसे पुराने सिक्के, कपड़े, हथियार, मूर्तियां, पेंटिंग और इतिहास से जुड़ी हर एक चीज। इन चीजों को देखकर हमें अपने देश और दुनिया के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पहले के समय में कैसे क्या होता था, क्या नहीं होता था। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जो पहले के टाइम में ना जैसे झोपड़ी बनाकर घर बनाकर रहते थे, चूल्हे पर खाना बनाना, अब के जो बच्चे हैं वो कहाँ देख पाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि अब जो पक्के मकान बन चुके हैं तो उनको पुरानी चीज़ों के बारे नहीं पता होता है। तो इसीलिए म्यूजियम डे है आज, वहाँ पर हर एक पुरानी इतिहास से जुड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यह दिन हर साल यानी कि 18 मई को मनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि म्यूजियम हमारी संस्कृति और इतिहास को बचाकर रखने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप चाहते हैं कि भाई घूम कर आए, तो मैं बताऊं एक कुरुक्षेत्र में यानी कि महाभारत में क्या हुआ था, कैसे युद्ध हुआ था, कैसे हथियार उपयोग किए गए थे, हर एक चीज कुरुक्षेत्र में म्यूजियम है। ब्रह्म सरोवर से बहुत थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन उधर है, तो आप कभी जाइए उधर घूमने जाइए, म्यूजियम तो आपको कहीं भी मिल सकता है, तो आपको वहाँ इतिहास के बारे में पता लगेगा कि कैसे हथियार होते थे, कहाँ पर क्या चीज़ें होती थी, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आज यानी कि 18 मई को ये यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। मैंने आपको जैसा बोला था कि शादी में यानी कि दामाद को चांदी के चप्पल मिले हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं वो जानने के लिए तो कहाँ क्या करना पड़ेगा मेरी जान, बस आर्जेरीना के साथ ना आपने कनेक्ट रहना है। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:44 हो चुके हैं, तो फिलहाल आप सभी से कनेक्ट होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
5: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
4: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
5: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
4: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल, सिविल लाइंस मुरादाबाद, कॉन्टैक्ट 9760304534।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हैं आप अर्जरीना के साथ, और आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:55 हो चुके हैं, और अब यानी कि बॉलीवुड के गलियों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए जिंदगी में ना इस भाग दौड़ में मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है, और रेडियो के साथ साथ टीवी देखने का भी मज़ा ही अलग होता है। सो अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि 1 मई को रिलीज हुई थी शिवाजी राव मूवी, जो कि सच बताऊँ ये मूवी बहुत अच्छी है। मैं खुद कल ये मूवी देख कर आई हूँ, सच में बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इसके बारे में जानें, और आप तो आप बच्चों को ज़रूर ये मूवी दिखाइए। मैं तो बिल्कुल सजेशन दूंगी कि बच्चों को आप अपने साथ, बच्चे को ज़रूर लेकर जाइए, उनको दिखाइए मूवी कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। और ये मूवी यानी कि जो इसके डायरेक्टर है और साथ ही साथ उन्होंने भूमिका भी निभाई है रितेश देशमुख ने, यानी कि फिल्म की कहानी में दिखाया गया है एक महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज का जन्म यानी कि साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनकी सोच बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनकी माता जी ने बचपन से ही साहस, धर्म और अपने लोगों की रक्षा करना सिखाया था। बचपन से ही उनके अंदर ये था कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। और धीरे धीरे शिवाजी राव महाराज ने कई किलों पर जीत हासिल की और अपना

0: स्वराज्य यानी स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उनकी बहादुरी और नेतृत्व के कारण यानी कि 1674 में उनका राज्य अभिषेक हुआ और वो कहलाए छत्रपति यानी राजा बन गए। छत्रपति यानी कि शिवाजी राव से वो राजा बनने तक जो संघर्ष था उनका बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने ठान ली थी चाहे कुछ भी हो जाए, हम क्योंकि उस टाइम देखा जाए तो मतलब धरती के लिए यानी कि अन्न उगाने के लिए भी मना कर दिया गया था, लेकिन एक शिवाजी राव जो थे यानी कि राव से राजा बने, इसके पीछे का जो संघर्ष है बहुत संघर्ष किया उन्होंने। तो दोस्तों ये मूवी आप ज़रूर देख कर आइए, मैं तो यही सजेशन दूंगी कि ये मूवी देखनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है जो कि हम नहीं जान पाते हैं, इसीलिए इतिहास के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इतिहास के बारे में नहीं जानते हमें पता नहीं चलता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़कर ज्ञान मिलता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वीडियोस मूवी देखकर पता चलता है। मुझे तो सच बताऊँ पढ़ने के साथ साथ यानी कि जब मैं कुछ चीज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी यानी कि वो चीज़ें जो माइंड में सेट हो जाता है। सो इस मूवी को ज़रूर देखिए, मैं आपको बार बार ज़रूर कह रही हूँ ये मूवी ज़रूर देखिए आप। और साथ ही साथ मेरे पास वॉइस मैसेज आता है सो उसको भी सुनाती हूँ और फिर कमर्शियल एड ब्रेक के पार चलेंगे, उसके बाद इंटरव्यू, फिर कड़क सवाल, फिर चांदी वाले जो चप्पल गिफ्ट किया गया है गाइस उसके बारे में बात करेंगे। बातें बहुत सारी है मेरे पिटारे में, जितना बोलो उतना कम है, इसीलिए मैं इतना बोलती रहती हूँ चुप, मतलब होने का मन ही नहीं करता है मेरा। चलिए फिलहाल एक वॉइस मैसेज है जो आप सभी तक पहुँचाते हैं सो इसको ज़रूर सुनिए, बहुत मधुर आवाज़ और इनकी जो सोच है भाई कुछ शब्द नहीं होते इनके लिए, मतलब इतनी अच्छी इनकी सोच है, इतनी अच्छी थिंकिंग है इनकी, तो चलिए सुनते हैं।
1: राधे राधे, कैसे हैं पीतल नगरी के दोस्तों, आशा है सभी अच्छे होंगे। सुन रहे हैं FM रदवाद 89.6, जिसको बजाना पड़ता है गुनगुनाना पड़ता है, तो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए भी क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। नमस्कार, राधे राधे, सुनते रहिए हरियाणवी तड़का, आरजे रीना के साथ, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत पागुड़ा से। भेजते रहो अच्छे अच्छे शानदार मैसेज जो मैसेज सुनाए जाएंगे बजाए जाएंगे आपके इस अपने रेडियो स्टेशन पर, और सुनाई देंगे सारे शहर सारे देश और सारे संसार को। नमस्कार, राधे राधे, FM मुरादाबाद 89.6, गुनगुनाते रहो बजाते रहो, भेजते रहो 98-378-96-96 पर अपने पसंदीदा मैसेज। राधे राधे।
0: क्या बात है सर, और आपकी मुझे जो लाइन थी वो बहुत अच्छी लगी है कि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सो हमें ना अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप चार लोगों के बारे में सोचेंगे, देखिए चार लोग में ना दो लोग अच्छे भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते भाई आगे पुशअप करते हैं कि नहीं आगे बढ़ो, दो लोग ऐसे भी होते हैं जो वो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, इसलिए ज़िंदगी आपकी है और ये शर्माना ये कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, भाई इस चीज़ से आगे निकलो, जब तक आप आगे नहीं निकलोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसीलिए कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, अगर आप भी ये सोचने लग जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, इसीलिए बस आगे बढ़िए, अपने काम करते रहिए और यूं ही मस्त एंजॉय करते रहिए अपनी ज़िंदगी। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया गाइस।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: आवश्यक सूचना, 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। लेकिन अब शो में आगे बढ़ते हैं, आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं गाइज, उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ। सो इंटरव्यू जरूर सुनिए और अपना फीडबैक जरूर हमें दीजिए।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
4: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
3: थैंक यू सर,
4: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
3: वाओ, लवली, कैसा लग रहा है सर? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
4: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
3: क्या बात है।
4: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
3: जी जी, प्लीज।
4: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
3: ब्यूटीफुल।
4: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
3: वाओ।
4: उसके बाद मैंने किया है DM न्यूनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
3: क्या बात है।
4: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूनेटोलॉजी है क्या?
3: जी,
4: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
3: हाँ जी।
4: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
3: हाँ जी।
4: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
3: Alright.
4: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
3: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
4: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
3: जी जी।
4: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
3: जी
4: हैं।
3: जी जी जी।
4: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
3: जी जी जी।
4: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं,
3: बट
4: ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती हैं। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
3: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
4: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
3: हाँ जी,
4: तो
3: हाँ
4: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
3: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
4: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
3: ऑलराइट,
4: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
3: हाँ जी, हाँ जी,
4: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
3: जी।
4: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
3: ओके।
4: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह। अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
3: ओके, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
4: बेबी को 2 to 3 आवरली, इनिशियली 2 to 3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से 3 घंटे में आप फीड कराएं, कुछ

0: होती हैं
1: okay.
0: तो जिससे उसका पेट भी बढ़ता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरह से फीड करा रही हैं तो सिर्फ 4 मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं बढ़ेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
2: बहुत ही बढ़िया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है ना, तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
2: बिल्कुल।
0: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
2: मतलब कोई रीजन, कोई कारण मतलब जिससे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
2: ठीक है,
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
2: जी,
0: है
2: जी, जी,
0: ठीक
2: जी,
0: है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहनाने हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
2: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
2: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
2: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
2: हाँ जी, हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
2: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी।

0: ये बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 एफ एम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 केजी के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है। उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कतें हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को आईसीयू की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश नहीं है जाते जाते?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत,
1: हाँ जी।
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है।
1: जी जी।
0: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे, बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी, तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें,
1: बिल्कुल,
0: और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए बहुत बहुत थैंक यू, और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
6: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही अच्छी बात जानकारी आपने ली, यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ। सो देखिए श्रोताओं, आपसे बस यही कहना चाहेंगे, यानी कि जो न्यू मदर बनने वाली है या फिर जो मदर बन चुकी हैं, यानी कि देखिए बच्चे की देख रेख ना बहुत ज़रूरी होती है। सच बताओ उनको मतलब एक तो जो छोटा बच्चा होता है 1-2 महीने का, उनको पंखे से, उनको बस हल्की, बहुत हल्का फुल्का हवा की ज़रूरत होती है। साथ ही उनको जब बच्चा रोता है तो देखिए एक माँ अच्छे से समझ पाती है। सो अपने यहाँ ध्यान रखना है। और जो न्यू बेबी, यानी कि जो बेबी को, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे, देखिए खुद के लिए ना खाइए, कम से कम बच्चे के लिए आप ज़रूर खाइए। आई नो कि स्टार्टिंग में बोलते हैं 2-3 महीने वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग तो होएगी होएगी, लेकिन हमें इस वॉमिटिंग के बीच में भी ना, यानी कि कुछ हल्का फुल्का खाते रहिए। ये नहीं कि बिल्कुल खाना छोड़ देना है, अगर आप खाना छोड़ते हैं तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना वो नहीं बन पाती है। और उसके बाद आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले कि बच्चों को हम ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे तो बच्चों की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, नहीं हो पाती है। इसीलिए जब आप गर्भ अवस्था में है तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पानी जितना हो सके उतना पिए, बाहर के जो जंक फूड चीज़ें हैं, और साथ ही साथ चाय बिल्कुल भी मत लीजिए। सुबह के टाइम में अगर आप चाय की ज़्यादा नीड है उसके आगे दूध कर दीजिए, बस सिर्फ 9 महीने, क्योंकि अगर जब आप ही खाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की ग्रोथ के लिए होती है। तो इसीलिए अपना ना देखकर बच्चे के लिए खाइए और आपका भी सेहत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसी अपडेट के लिए बस सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए एक बहुत ही प्यारा गाना, जो कि भाई सच बताओ बड़ा प्यारा गाना है।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
5: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
4: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
5: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
4: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:00 यानी कि 32 मिनट हो चुके हैं और आज की तारीख 18 मई। सो अब हम बात करने वाले हैं, देखिए हमारे देश में ना दामाद की इज्जत तो पहले से ही वीआईपी वाली होती है, लेकिन इस बार तो दामाद जी को एक ऐसा तोहफा मिला कि लोग देखकर भी बस यही बोल रहे हैं, अरे वाह भाई वाह, ऐसा ससुराल तो हमें भी मिलना चाहिए। यानी कि मामला है कोल्हापुर का, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ एक परिवार ने अपने दामाद को ऐसा गिफ्ट दिया है कि सोशल मीडिया तक लेकर हर इलाके में इन्हीं के चर्चे हैं। भैया इन्हीं के इंस्टाग्राम आप खोलो तो इनके आपको चर्चे दिखेंगे। जी हाँ, यानी कि दामाद जी को भेंट में मिली है 1.5 किलो चांदी की कोल्हापुरी चप्पल। आय हाय, अब सोचिए आम लोग चप्पल पहनकर चलते हैं, लेकिन दामाद जी अगर ये चप्पल पहन ले तो हर कदम पर चांदी ही चांदी चमकेगी और मोहल्ले वाले भी शायद यही कह रहे होंगे, भाई ऐसा ससुराल तो हमें भी मिल जाए, बस हम भी रोज यानी कि चप्पल यानी कि चांदी की चप्पल पहनकर चले और आगे अपने हर कदम कदम पर बस यही कहे चांदी ही चांदी है, चांदी ही चांदी है। भारतीय परंपरा में यानी कि दामाद को भगवान जैसा माना जाता है, लेकिन यहाँ तो लगता है दामाद जी को चांदी के सिंहासन की जगह चांदी की चप्पल मिल गई है। तो भैया अगर आपके घर में भी कोई दामाद आने वाले हैं यानी कि नई शादी होने वाली है तो संभल कर आइए, कहीं उन्हें भी चप्पल पसंद आ गई तो बजट थोड़ा भारी पड़ सकता है। सो श्रोताओं, बस आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहिए, ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अगला गाना भी बहुत प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करिए। लौट कर आती है जी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर और करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ आपके लिए कड़क सवाल भी लेकर आने वाले हैं। सो ये गाना, अगला जो गाना है ना, सच बताओ बहुत प्यारा है। और यूं ही अपने दिल की बातें भी हमें भेजते रहिए। फिलहाल मैसेज की बात करूँ तो मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? रीना जी गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं और जानकारियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी लाती हैं आप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और देखिए गर्मी ज़्यादा है तो बस आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि समय पर पानी पीते रहिए, बाहर की जो जंक फूड है उनको अवॉइड करिए, नारियल पानी पीजिए और बेल का जो जूस होता है वो पीजिए, जो कि गर्मी में रामबाण है, वो पीते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। साथ ही साथ आप खाने में दही शामिल कर सकते हैं। और पानी तो मैं कहती हूँ जी, आप चाहे पग पग पर कदम रख रहे हैं ना, तब भी अपने साथ बॉटल लेकर जरूर जाइए, बॉटल ना भूले। और ये गाना एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं जी।

क्या बात है जी। हर इंसान के अंदर अच्छा गुण परखने की जरूरत होती है, और अपने आप अपने अंदर अपने गुण को ढूंढिए। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:42 हो चुके हैं, और आज रीना लेकर आ गई आप सभी के बीच कड़क सवाल, और कड़क सवाल भी बड़ा आसान है जी। तो आपने बताना है ऐसा कौन सा पक्षी है जो इंसानों की तरह बोल भी सकता है और हमारी बातें भी याद रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल बात करूँ तो हम उनको घर में भी पालते हैं और नमस्ते राम राम भी बोलने के लिए सिखाते हैं, तो बोलता भी है। तो आपने बताना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो इंसानों की तरह बोलता भी है। हमारा मैजिकल नंबर है यानी कि 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो इंसानों की तरह बोलता भी है। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए जी। और अगला गाना भी बड़ा ही प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

जी, गुड वाली इवनिंग है नेहा के साथ। और समय की बात करूं तो 6:50 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बचाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, आज रीना के साथ। सो आज का मैच भी ना भाई साहब बड़ा ही धमाल का होने वाला है। यानी कि आज के अगर मैच की बात करूं तो हैदराबाद और चेन्नई के बीच यानी कि मुकाबला होने वाला है। अब ये मत कह देना कि चल ओई चेन्नई एक्सप्रेस लेकिन जो आज का मैच है ना, सच बताओ बड़ा ही धमाल मैच होने वाला है हैदराबाद और चेन्नई के बीच। सो मैच देखना गाइस बिल्कुल ना भूले। अगर आप हैं मैच के दीवाने मेरी तरह तो जरूर मैच देखिए। मैं शो भी करने आती हूँ ना, तो जब मैच स्टार्ट हो जाता है तो मैं एक तरफ मैच भी देखती रहती हूँ, शो भी करती रहती हूँ और आप सभी से बातें भी करती रहती हूँ। सो चलिए, आज का मैच तो धमाल होने वाला ही है, हम भी धमाल मचाते हैं। धुम मचाले, धुम मचाले, धुम। और कड़क सवाल आज का बहुत ही सिंपल है गाइस, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सोचना है कि आखिरकार इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे पास बहुत से मैसेज आ चुके हैं और वो भी कड़क आंसर के साथ आया गाइस। अगर आपने अभी तक कड़क सवाल नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ऐसा कौन सा पक्षी है जो इंसानों की तरह बोल भी सकता है और हमारी बातें भी याद कर सकता है? जब भी आप घर में आते हैं, राम राम नमस्ते आपको बोलता भी है और होता है बड़ा ही प्यारा, सबका चहेता। सो सोचिए और फटाफट मैसेज करिए, नंबर है 9837896896। आरजोरी ने के साथ। चलिए जी, फिलहाल धूम मचाते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच, मैसेज भी शामिल करेंगे, साथ ही साथ हेल्थ अपडेट भी देंगे आपके।

जी गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। आप आज रीना के साथ कनेक्ट है और देखिए इस गर्मी में ना भाग दौड़ की गर्मी में ना हम अपने हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं। यानी कि गर्मियों में अगर आप लीवर को चाहते हैं भैया ठीक रखना तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहली बात तो आपने जो बाहर की जंक फूड वाली चीजें हैं उसको अवॉइड करना है, वो नहीं खाना है। साथ ही साथ आपको जितना हो सके उतना आपको पानी पीना है। सुबह सुबह से ही आपने आदत डालनी है यानी कि सुबह गुनगुना यानी कि 2 गिलास आपको पानी तो पीना ही पीना ही है। साथ उसके बाद आप नींबू पानी पी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लीवर को ठीक रखना, क्योंकि जब लीवर में दिक्कत हो जाती है ना तो आप अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाते हो, इसीलिए सीजनल फ्रूट्स भी हमें खाना चाहिए जिसमें यानी कि पानी भरपूर मात्रा में हो सके, जैसे पपीता, खीरा, तरबूज, खरबूजे। साथ ही साथ अगर आप तरबूज खाते हैं तो देखिए श्रोताओं आपने बहुत सी चीज़ें भी ध्यान रखना है कि जो चमकीला चमकता धमकता तरबूज है उसको आपने नहीं खरीदना है। साथ ही साथ आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, सैलेड वगैरह खा सकते हैं। और वही यानी कि गुनगुने पानी में हल्दी का बस छोटा सा कम डालना है, क्योंकि हल्दी अगर आप टर्मरिक हैं और जब आपके अंदर हल्दी जो पानी में मिक्स होकर अगर पीते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। साथ ही साथ योगा प्राणायाम जरूर करें, सुबह के टाइम अपने लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए। आपको कोई ये नहीं बोलता कि पूरा हमें यानी कि समय दो, अपने लिए बस आप आधा घंटा भी निकाल लेंगे ना वही बहुत है। शाम के अगर आपके पास समय है तो शाम के टाइम वॉक करिए, पार्क में जाइए, घूमिए। और साथ ही साथ नींद भरपूर मात्रा में लेनी है, अगर आप नींद भरपूर मात्रा में लेते हैं तो आप ठीक, आपका लीवर भी ठीक रहेगा। साथ ही साथ आज का जो कड़क सवाल हमने पूछा है आप सभी से, बहुत प्यारा कड़क सवाल है। कड़क सवाल ये है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो इंसानों की तरह बोलता है। तो चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि पहला मैसेज आता है हमारे पास, विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं और इनके कहने की पैरेट। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना जी क्या हाल है आपके, बहुत बढ़िया है जी। मेरा नाम है प्रीति सक्सेना जी, कनेक्ट होती है प्रकाश नगर चौराहा लाइन पर मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि आंसर जो है आपने वो तोता है, यानी कि जो मुझे याद आ गया तोता, यानी मैं तोता हरे रंग का मैं तोता। क्या बात है जी, फनी हो गया। हाँ थोड़ा फनी हो गया, होना भी चाहिए। देखिए लाइफ में फनी होना बहुत जरूरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नरेंद्र सिंह हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनका कहना है कि कड़क सवाल है तोता। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी। रीना जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो हरियाणवी तड़का हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब हम हरियाणवी तड़का शो मैं करती थी सर, लेकिन अब मैंने चेंज मैं करने वाली हूँ इस हरियाणवी तड़का शो, यानी कि जो नाम है वो अब मैं चेंज कर दूंगी, इसीलिए मैं अपने शो में भी हरियाणवी तड़का शो नहीं रिवील कर रही हूँ, क्योंकि अब आप सभी के लिए मैं नया शो लेकर आने वाली हूँ। यानी कि शो का नाम चेंज हो जाएगा, बातें वही है, हर चीज इन्फॉर्मेशन आप सभी से डिलीवर होता रहेगा, लेकिन बस शो का नाम चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ इनका कहना है कि गाने बहुत अच्छे प्ले करती हो और उसी के साथ साथ आप बहुत जानकारियां भी अपने शो के माध्यम से हम सभी लिसनर तक पहुंचाती हो, जो कि बहुत ही जानकारी, बहुत सी जानकारियां बहुत ही काम की होती है। बिल्कुल जी सही कहा आपने। और आज का राइट आंसर है तोता, यानी कि तोता एक ऐसा पक्षी है जो उसको अगर घर में लोग पालते हैं तो वह इंसानों की तरह बिल्कुल बोलना बोलता है, और उसको कुछ सिखाया जाए तो वह भी याद कर लेता है। बिल्कुल जी सही कहा आपने कि वो याद कर लेता है। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना जी हरियाणवी तड़का में गुड वाला इवनिंग है। ओके जी, हरियाणवी तड़का अब हमने चेंज करने वाले हैं, और आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा कि आखिरकार हमारे शो का क्या नाम है अब, और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है तोता। तो अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं श्रोताओं,
और इनके घर में तोता भी है, क्या बात है जी, आपने पाल रखा है तोता, ओह माय गॉड। अगले मैसेज की बात करूं तो इनका भी कहना है कि तोता, लेकिन इन्होंने नाम नहीं बताया है, सो इनका नंबर है 1416। अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, अतुल सिंह कनेक्ट होते हैं, और क्या हाल है जी, बहुत बढ़िया है, और इनका कहना है कि तोता। बिल्कुल जी, बहुत सभी श्रोताओं ने हमें राइट आंसर पहुंचाया है, लेकिन देखिए अब इसमें से तो हमें एक ही को शॉर्ट आउट करना होता है जिनका मैसेज पहले आया है। आप सभी ने राइट आंसर किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का जो मैसेज आता है, प्यार बरसता है, यही काफी होता है हमारे लिए। और जो हमारे पास यानी कि जो जिनका सबसे पहले मैसेज आया था, आज वो विनर होते हैं विक्की सागर जी मुरादाबाद से। तो सर आप हमारे शो के विनर है, तो देखिए आप गोलगप्पे खा सकते हैं क्योंकि रीना को गोलगप्पे बहुत पसंद है। साथ ही साथ गर्मी में थोड़ा मैं बोलूंगी ये जो चीजें है अवॉइड करिए, खरबूज खाइए क्योंकि रीना को खरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए जी, इसी के साथ एक म्यूजिकल एक गाने के साथ आपको छोड़कर जा रही हूँ। कल मिलेंगे जी सेम टाइम एंड सेम जगह, ढेर सारी बातें करेंगे। बस आरजे रीना के साथ ही कनेक्ट।

0: बिल्कुल जी, धक्का लगा तो क्या नहीं करना है, बस हमें उनकी हेल्प करनी है। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं जी, गुड वाली इवनिंग है। और अब आरजे रीना एक यानी कि स्टे ऑर्डर का हम इंटरव्यू चलाने वाले हैं, जिसको आप सुनिए। यानी कि रूल फॉलो करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, कल मिलेंगे जी, बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, अभी तो नहीं मतलब जिनको जिनको नींद आ रही उनके लिए गुड नाइट है जी। चलिए फिलहाल बाय बाय।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: दिस साइड आर्जेरीना FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
5: रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सर ये बताइए, आप मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
5: जी,
0: तो आपको हमारे रेडियो आके पहले कैसा लगता है?
5: नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
0: अरे अरे क्या बात है।
5: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया है आपने।
0: बिल्कुल जी, हाँ जी सर,
5: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए। और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है?
5: देखिए, बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना है, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थायी आदेश होता है, जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को, निर्णय को, कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक सकती है। कोर्ट के पास ही अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी है, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
0: बिल्कुल सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
5: देखिए, जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को अस्थायी रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती
0: है। सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
5: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
0: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
5: देखिए, स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
5: देखिए, जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है उस पे कुछ नहीं कर सकते।
0: हाँ बिल्कुल सर, उस पे जब रोक लग चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते,
5: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना आपको मानना भी है और बाध्यता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए

0: देखिए, इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी, एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कोर्ट के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
1: बिल्कुल।
0: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है, तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
1: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल लगा सकती है। अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है, तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाई कोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
1: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
0: जी हाँ बिल्कुल, हटाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं, तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
1: क्या बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
0: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपनी लीगल राइट्स को जानें, और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या राइट जो कानून तोड़ रहे होते हैं। तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए, और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
0: बिल्कुल, आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए। अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है, जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था।
0: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं, उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है ना, जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता ही
0: जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गो को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
1: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं, बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृत
2: दी। परिषद के दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5801.05 करोड़ रूपए पर सहमति प्रदान की गयी। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
0: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9,00,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है। वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि धर्मेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। चार नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है।
4: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
5: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देशभर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटना स्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
6: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
8: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
10: कॉल 8826213131।
11: गुड वाल इवनिंग है अर्जेरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कानूनी अधिकारों के बारे में, यानी कि हमारे बुजुर्ग समाज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन कई बार उन्हें अपने ही अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है।
12: थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
11: पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
12: देखिए मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है। और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
11: बिल्कुल बिल्कुल।
12: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
11: सही कहा।
12: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
11: बिल्कुल सर। तो चलिए इस सिलसिले को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सीनियर सिटीजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है?
12: देखिए कानून के बारे में जानने से पहले मैं पहले अपने जो हमारे समाज में जो इस समय बुजुर्गों की स्थिति है उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। अधिकतर देखा गया जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन हैं उनको मोस्टली एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है आजकल के यूथ।
11: बिल्कुल बिल्कुल।
12: उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनको बिल्कुल किसी भी चीज की भरण पोषण की आवश्यकता है या कोई हेल्प चाहिए, उनको इग्नोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, हमें हमारे पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, अब हमारा भी दायित्व है कि अगर वो इस एज में है तो
11: उनकी सेवा करें,
12: सेवा करें हम भी। और भारत में सीनियर सिटीजन्स के अगर हम अधिकारों के लिए बात करते हैं, सुरक्षा के लिए उनकी बात करते हैं, तो मुख्य रूप से एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। ये कानून के तहत बच्चों या परिवार के सदस्यों के अपने माता पिता की देखभाल के लिए भरण पोषण का अधिकार है। अगर कोई जो भरण पोषण अपने माता पिता का नहीं कर रहा है, जैसे अधिकतर घर में देखते हैं कि भाई बच्चों की शादी हो जाती है तो वो अपना
11: अलग रहने की कोशिश करते हैं
12: और माता पिता को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, और उस समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है सीनियर सिटीजन्स को, तो उसके लिए भी उनके पास राइट्स है, वो कोर्ट में विवाद दायर करके उनके मेंटेनेंस इत्यादि मांग कर सकते हैं भरण पोषण की।
11: बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है हमारा सर, अगर बच्चों के द्वारा माता पिता की देखभाल नहीं की जाती तो बुजुर्ग क्या कर सकते हैं?
12: देखिए ऐसी स्थिति में आप किसी भी लीगल लॉयर की एडवोकेट की हेल्प लें, उसे पूरी बात बताएं, और ऐसी स्थिति में आपको जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल बच्चों को आदेश दे सकता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। लोकल आप SDM कोर्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं, DM के यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कानूनी विधि हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों से मदद मांग सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रत्येक बच्चों को खुद ही आगे आके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
11: जिस तरीके से हमें माँ बाप जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े करते हैं, वही हमारा दायित्व है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
12: करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था।
11: बिल्कुल सर, और इनफैक्ट तो हम भी उस एज में आने वाले ही एक टाइम।
12: बिल्कुल, जैसा आप बीज
11: वैसे ही फल मिलेगा,
12: फल मिलेगा आपको।
11: बिल्कुल सर, तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
12: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है लोकल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आवेदन करके आप जो है मांग कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है तो वह अपने बच्चों से कानूनी वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकता है।
11: श्रोताओं, आपको जो ये हमारी बात है आई होप कि बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। यानी कि अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही घर में जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए?
12: देखिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या कोई जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करे तो सबसे पहले तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएं। पुलिस आपकी तुरंत हेल्प करेगी। सीनियर सिटीजन एक्ट में भी ये आपको अधिकार दिया गया है। पुलिस आपकी तुरंत सहायता करती है। नजदीकी थाने या चौकी पे जाके अपनी पूरी बात बताएं। रिटन में अगर कंप्लेंट करने को वहाँ पे पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं तो लिखित में आप अवगत कराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तुरंत किसी लीगल सलाहकार से बात करके ट्रिब्यूनल में अगर आप केस डालना चाहते हैं तो आप केस भी डाल सकते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी।
11: और बहुत से बुजुर्ग है सर, उनके पास फोन नहीं होते तो वो कैसे पहुंच सकते हैं?
12: देखिए, नजदीकी थाने में तो आपको पता होता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका मित्र है या संबंधी है तो आप तुरंत उसकी मदद मांगी कैसे भी करके, लेकिन सूचना आपको पुलिस को देना जरूरी,
11: पहुंचाना जरूरी है
12: तुरंत।
11: चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं?
12: जी बिल्कुल उठा सकते हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अपनी पति को देते समय कुछ शर्तें रख सकते हैं। अगर उन शर्तों का पालन के वारिसान नहीं करते हैं तो वो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी कर सकते हैं कानूनी।
11: बिल्कुल,
12: तो लेकिन जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखित में होनी चाहिए।
11: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रॉपर यही है कि लिखित में हो।
12: हाँ,
11: तभी
12: अगर आप कोई भी संपत्ति अपने वारिसों को देते हैं या दान करते हैं और दान करने के बाद वो आपकी सेवा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, तो अक्सर मन में ये मलाल रहता है कि हमने संपत्ति क्यों दे दी।
11: बिल्कुल,
12: तो जो भी आपके मन की बात है, जो भी टर्म्स कंडीशन है, वो पहले ही लिखित में आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं।
11: इससे लिखित में होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी सर।
12: आपका अधिकार बना रहता है फिर भी। अगर मान लीजिए आपको कोई दान में दी हुई चीज रद्द करनी है या किसी चीज को लेके आप उसमें कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपने उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है और उसकी वो फुलफिल आपके वारिस नहीं करते, तो आप उस चीज को लेके भी आप जो भी आपने कोई भी उनको फेवर दिया तो उस पॉइंट पे आप उनको रद्द भी कर सकते हैं।
11: ओके सर, क्या सरकार सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अदालत या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करती है?
12: हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे सुना जाता है। अगर हम कोई भी बात दायर करते हैं तो उनके लिए एक जो है कोर्ट का भी जो है अलग ही एक नजरिया रहता है। और मुख्य रूप से जो ये हमारी सरकार की नीति है या हमारी जुडिशरी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता प्रथम पायदान पे दी गई
11: दी जाती है। सीनियर सिटीजन को सरकारी योजनाओं में कोई विशेष सुविधाएं मिलती हैं?
12: सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी सुविधाएं काफी दी गई हैं। जैसे आप सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए पेंशन है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी है, यात्राओं में छूट दी गई है, उनके सामाजिक योजनाएं कई सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सुरक्षित और सम्मान ढंग से कर सके।
11: बहुत अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बुजुर्ग के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो जाए तो क्या कर सकते हैं?
12: देखिए, बुजुर्गों को सबसे बड़ी चीज है कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो सॉफ्ट टारगेट समझता है, क्योंकि इस एज में एक तो बुजुर्ग ज्यादा जो है सोचने विचारने की शक्ति थोड़ा सा उनकी
11: कम हो जाती है,
12: शरीर भी थोड़ा दुर्बल हो जाता है।
11: मतलब एनर्जी पावर थोड़ा लो हो जाता है।
12: क्रिमिनल व्यक्तित्व के लोग हैं वो सॉफ्ट टारगेट उनको लगता है कि वो बुजुर्ग को बनाए। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप तुरंत जो है पुलिस में लेके शिकायत दर्ज कराएं, कानूनी सहायता आप लीजिए। कानून बुजुर्ग को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ही सख्त प्रावधान कानून के तहत बने हैं और बुजुर्गों की जो शिकायत है वो बिल्कुल प्रथम पायदान पे जाके सुनी जाती है पुलिस अधिकारियों द्वारा। तो निश्चित तौर पे आपको तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए।
11: क्या बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना कानूनी अपराध है?
12: जी हाँ, बुजुर्गों के साथ कानून अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है कोई, तो ये कानूनन अपराध है। आमतौर की डेली दिनचर्या में हम देखते हैं कि अगर हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं या पड़ोस में ही होते हैं, तो हम किसी बुजुर्ग को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, धमका देते हैं, तो ये भी क्राइम है अपने आप में।
11: अच्छा, मतलब कोई धमका रहा है, कुछ गलत
12: तो
11: बोल रहा है।
12: आप किसी को भी आप ऐसे अगर आप बोलते हैं बुजुर्गों को, तो खास तौर पे अगर आपने कोई भी ऐसी अपशब्द बोल दी, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। और खास तौर पे जो है पुलिस के आला अधिकारियों को जुडिशरी की तरफ से भी साफ इंस्ट्रक्शन है कि बुजुर्गों का, बच्चे और बुजुर्गों दोनों के लिए अगर कोई भी क्राइम होता है, तो तुरंत तत्काल लीगल एक्शन लिया जाए उसके।
11: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, हमें किसी के बारे में बोलने का कोई राइट?
12: बिल्कुल, आप किसी को अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? आप किसी को कानून कैसे आप हाथ में ले सकते हैं? तो आपको निश्चित तौर पे जो है सबका आदर सम्मान करना चाहिए। और जो है बुजुर्गों को तो खास तौर पे आपको जो है उनकी सेवा भाव रखना चाहिए मन के अंदर।
11: बिल्कुल श्रोताओं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर आप सेवा करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारा अंत में, यानी कि आप सीनियर सिटीजन और उनके परिवार को क्या संदेश एक देना चाहेंगे?
12: देखिए, मेरा सभी जितने भी आपके FM मुरादाबाद 89.6 MHz के कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि हम सभी को अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और साथ ही सीनियर सिटीजन्स को अपने कानूनी अधिकारों की भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है, तो तत्काल वो उस पर लीगल एक्शन ले सके, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। और जो है बुजुर्गों को खास तौर पे हमें जो है वॉच भी करना चाहिए, क्योंकि इस एज में आके उनको हमारी जरूरत पड़ती है। वो शरीर से भी दुर्बल होते हैं, सोच भी उनकी थोड़ी सी, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
11: बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके हमें बहुत सी जानकारियां मिली कि बुजुर्गों के लिए भी कानून है, मतलब उनके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। मतलब तो थैंक यू सो मच सर, अब मैं यहाँ से जाने की इजाजत लेती हूँ। श्रोता, अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारा नंबर है 9837896896।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: साथ में प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। ईंधन की बचत के लिए दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत मेट्रो मंडे पहल शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मेट्रो और डीटीसी बस से अपने कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। भारत मंडपम में 2 सम्मेलनों के अभ्यास कार्यक्रम के मद्देनजर कल आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। और दिल्ली में पूरे सप्ताह लू का येलो अलर्ट, तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के तहत मेट्रो मंडे पहल शुरू हो गई है। दिल्ली मेट्रो प्रत्येक सोमवार निजी वाहनों के स्थान पर मेट्रो को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 24

0: अतिरिक्त ट्रेन चला रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा है कि यह निर्णय मौजूदा परिस्थितियों में ऊर्जा दक्षता, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सार्वजनिक परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम DTC की बस से अपने कार्यालय पहुंची। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क, स्वच्छ स्टेशन, समयबद्ध सेवा और सहज कनेक्टिविटी वास्तव में विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि DTC की इलेक्ट्रिक बसें आरामदायक, सुरक्षित और वातानुकूलित हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए जहां संभव हो मेट्रो, DTC बसों और कार पूलिंग को अपनाकर मेरा भारत मेरा योगदान जन भागीदारी अभियान का हिस्सा बने।
1: दिल्ली के अपने सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ना केवल ये देश के लिए ईंधन की बचत करेगा बल्कि हमारे इस दिल्ली शहर के लिए तो ये बेहद ही जरूरी है। हमारी दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए, और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा।
0: इस बीच दिल्ली पुलिस ने सरकारी वाहनों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने और ईंधन की खपत कम करने के उपायों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश पुलिस आयुक्त कार्यालय ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और ईंधन की खपत में कमी लाने की अपील को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। इसके अनुसार दिल्ली पुलिस की सभी इकाइयों और कार्यालयों को अनावश्यक आवागमन रोकने, उपलब्ध वाहनों का अधिकतम उपयोग करने और ईंधन के किफायती उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है ताकि ईंधन संरक्षण और अनावश्यक व्यय में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास में सार्थक योगदान दिया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल द्वारका विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र में जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कें, सीवर ओवरफ्लो और बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगा। इन परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण, चौपालों का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और पार्कों का सौंदर्यीकरण तथा पर्यावरण अनुकूल विकास शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज सुबह दीपक सिंगला और अन्य हवाला संचालकों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन के हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। इसके अलावा दीपक सिंगला ने अपने चाचा और भाई के साथ मिलकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 150 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। निदेशालय ने बताया कि ये पैसा सिंगापुर स्थित नियंत्रित फर्मों को भेजा गया था। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है।
2: आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के यहाँ करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी, बैंक लोन से धोखाधड़ी और आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की सरपरस्ती में जो काला धन कमाया है उससे जायदाद खरीदना, वो एक मामला सामने आया जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई। आम आदमी पार्टी जो ताल ठोक कर आई थी हम समाज को बदलने आए, क्या इन्होंने बदला कि रिश्वत खोरी से शुरू करते करते अब टैक्स चोरी भी करेंगे, काले धन से बेनामी जायदादें भी खरीदेंगे और बैंक लोन की धोखाधड़ी भी करेंगे।
0: नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। CBI ने इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर में RCC कोचिंग क्लास के निदेशक शिवराज मोंटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया है। ये संस्थान विद्यार्थियों को नीट स्नातक परीक्षा की कोचिंग देता है। मोंटे गांवकर को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अभिभावक पर भी अपनी बेटी के लिए लीक हुए प्रश्न पत्र को 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। सीबीआई की एक टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर आगे की जांच के लिए कल एजेंसी के पुणे कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की एक आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने आज शशि गार्डन इलाके से मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कुछ नकद धनराशि और 294 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले से कई आपराधिक मामलों में संलिप्त है। मामले की जाँच जारी है। दिल्ली नगर निगम ने करोलबाग जोन में धूल नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने और लोक निर्माण विभाग ने सड़कों पर स्वच्छता में सुधार के लिए 15 दिन का धूल मुक्त सड़क अभियान शुरू किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: यह अभियान सड़कों को नो डस्ट स्थिति में बनाए रखने पर केंद्रित है। इस सफाई अभियान में MRS मशीनें, वाटर स्प्रिंकल, पानी के टैंकर, ऑटो टिपर और साथ ही 40 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अभियान के अंतर्गत प्रमुख सड़क मार्गों की नियमित निगरानी, कचरे का त्वरित उठान और निरंतर रखरखाव पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। वहीं करोलबाग जोन के उपायुक्त दिलखुश मीणा ने बताया कि अभियान सख्त फील्ड मॉनिटरिंग और समर्पित सफाई व्यवस्था के साथ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियानों के अंतर्गत साफ सुथरी सड़कें, प्रभावी धूल नियंत्रण और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ करिश्मा राय।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पद के लिए मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय को नामित किया है। बोर्ड के सदस्य के लिए नांगलोई जाट से विधायक मनोज कुमार शौकीन और घोंडा से विधायक अजय कुमार महावर को नामित किया गया है। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक संयुक्त आतंकरोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच त्वरित कार्रवाई और निर्बाध समन्वय का शानदार प्रदर्शन किया गया।
4: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये मॉक ड्रिल उप महानिरीक्षक और विमानन सुरक्षा समूह के मुख्य हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी तथा CISF के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया गया। CISF, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बम निरोधक दस्ते तथा अन्य एजेंसियों के कर्मियों ने इस समन्वित अभ्यास में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए उभरते खतरों के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाना था। प्रिया रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज एक यातायात परामर्श जारी कर बताया है कि कल दोपहर 12 बजे से शाम के 3 बजे तक भारत मंडपम के आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने बताया कि भारत मंडपम में इस महीने के अंत में होने वाले 2 सम्मेलनों का कल अभ्यास किया जाएगा। इसके मद्देनजर पुलिस ने लोगों को रिंग रोड, राजघाट, धौलाकुआं, मोतीबाग, सरायकाले खां, बीकाजी कामा प्लेस और वंदे मातरम मार्ग के साथ ही अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली सचिवालय में आज सिक्किम दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेश और देशवासियों को सिक्किम दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सिक्किम प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत उदाहरण है। भारतीय संत महापरिषद का वैश्विक सम्मेलन आज नई दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ाना, सभ्यतागत एकता को आध्यात्मिक संवाद से जोड़ना और भारत में निहित साझा परंपराओं के माध्यम से भारतीय मूल्यों का पुनरुद्धार करना था। आयुष मंत्रालय ने आज अत्यधिक गर्मी और लू के संबंध में व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इस परामर्श में लोगों के लिए गर्मी से होने वाले तनाव और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: परामर्श में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय में सीधे धूप में आने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने तथा मौसमी फलों और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों के सेवन पर जोर दिया गया है। इस सलाह में नागरिकों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के संकेतों जैसे चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, मानसिक स्थिति में बदलाव, शरीर का अत्यधिक तापमान, निर्जलीकरण, दौरे पड़ना और बेहोशी के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गंभीर मामलों में तुरंत आपात कालीन हेल्पलाइन नंबर 108 और 102 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। परामर्श में लोक स्थिति से निपटने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, योग, यूनानी और होम्योपैथी सहित विभिन्न आयुष पद्धतियों के पारंपरिक स्वास्थ्य और निवारक उपायों को भी शामिल किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
0: इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में इस सप्ताह लू का येलो अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस सप्ताह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईंधन की बचत के लिए दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत मेट्रो मंडे पहल शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मेट्रो और डीटीसी बस से अपने कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। भारत मंडपम में 2 सम्मेलनों के अभ्यास कार्यक्रम के मद्देनजर कल उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा और दिल्ली में पूरे सप्ताह लू का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये कहानी है एक।
7: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
8: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
9: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
8: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
10: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में हैं, इस वक्त वहां पर वर्किंग हैं। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: वाओ।
1: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सर, समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
1: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी, जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी,
1: हैं।
0: जी, जी, जी,
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी, जी, जी।
1: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि

0: एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
1: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
0: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
1: हाँ जी,
0: तो
1: हाँ
0: हम
1: जी.
0: प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
0: सॉर्ट ऑफ, इट्स अ डिफरेंट थिंग।
1: ऑलराइट,
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
1: ओके,
0: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2-3 आवरली, इनिशियली 2-3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
1: हैं, हाँ जी,
0: उनको नहीं पता
1: नहीं
0: होता
1: पता
0: है
1: होता
0: वो क्या
1: है।
0: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: ओके,
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ जी,
0: उसमें
1: हाँ
0: हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
1: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा, तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिसे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है, ठीक है। कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर

0: इतनी गर्मी है, मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25 टू 27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो, ठीक है। और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं, अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर
1: जी,
0: हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीन, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी है और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे।

0: और आप प्लीज आते रहिएगा श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश देंगे जाते जाते?
1: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
0: हाँ जी।
1: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है?
0: जी जी।
1: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है।
0: हाँ जी हाँ।
1: ठीक है। या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीज देखने को मिलती है तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें।
0: बिल्कुल।
1: और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों, आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों। तो आज हमारे साथ हैं आरजे रीना, आरजे कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैल।

0: जी, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
1: थैंक यू आनंद। सच कहूँ तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है, लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
2: बिल्कुल सही कहा। पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते
3: हैं। रीना जी और कुमकुम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदी हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम होती जा रही है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं वेलकम बैक।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, अपना टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ आप कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त है और एक और दोस्त है, तो मतलब कुल मिला के 4 लोगों के टॉपिक पे 4 लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
6: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
5: क्या बात है, बहुत बढ़िया। नया जब हम आप लोग एफएम पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
6: कुछ नया है
5: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
6: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
5: जी
6: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
5: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाय करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
7: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
5: जी।
7: मैं कुमकुम, आप सबकी प्यारी दोस्त, फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
5: जिसका नाम है सोच बदलो।
7: जिसका नाम है सोच बदलो।
5: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
8: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
5: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
6: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और 4 लोग क्या कहेंगे, ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। 4 लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
5: करेक्ट?
6: वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है। वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है। वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। वो 4 लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो 4 लोग तभी क्यों आते हैं?
5: करेक्ट।
6: तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
5: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन 4 लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये 4 लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
6: उन 4 लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो 4 लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप 4 लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
5: एडवाइस
6: कर रहे हैं कि तब सुनिए आप उनकी, हमारे हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की, हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
5: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है, मुझे भी ऐसी लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना। बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं, मुद्दे की बात यह है। क्यों कुमकुम, कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
7: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
5: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
8: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोगों की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
5: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे।

0: सोच के लिए फोकस करो, क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
0: वो एक सॉन्ग है राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ तो

0: कहीं बीत न जाए रे नाम, कुछ तो लोग कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए, अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट होंगे। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस
2: मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं सुनी ही नहीं हूँ। तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी। और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम, जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ।

0: बात उस दिन मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
1: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा हाँ, आगे बोलो
0: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
1: करेक्ट, सही कहा है।
2: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
3: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा। हाँ, चार लोग अच्छे
2: भी होते हैं।
3: चार लोग केवल निगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी होते हैं।
1: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
2: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के चार टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
7: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
8: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज
2: जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर, तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
2: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
1: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
2: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट शारजे छाया और आप सुन रहे हैं मुझे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। मौजूद है आपके साथ लेकर अपना नया कार्यक्रम विशेष बातचीत, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मनोज वर्मा मनुजी। आपको बता दे दोस्तों कि मनोज मनुजी एक कवि, गजल, गीत, नज्म और दोहे जैसी रचनाएं करते हैं, और आज के इस विशेष बातचीत में हम सुनेंगे मिस्टर मनोज वर्मा जी की कुछ रचनाओं को, और साहित्य जगत से जुड़े हुए होंगे कुछ सवाल जवाब। तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद छाया जी।
0: जी, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अपने नाम के आगे जो आपने उपनाम दिया है मनोज वर्मा मनु, मनु नाम से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या सोच के रखा था मनु?
1: जी छाया जी, ये जो मेरा उपनाम है ये मेरे दोस्तों की, मेरे घर में मेरे परिवार की देन है, और इसके बारे में मैं कहूँ तो ये हमारे संस्कृति में आदि पुरुष जो मनु सतरूपा के नाम से आपने सुना होगा, जो कि आदम के इक्विलेंट आते हैं, ये उसी नाम से संबंधित है, और मैं सोचता हूँ कि मानवता के लिए ये एक अच्छा नाम है, इसलिए मैंने इसे अपने नाम के साथ जोड़ा है।
0: हाँ जी जी जी। तो जैसा कि आप गजल, गीत, दोहे, नज्म वगैरह करते हैं, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि गजल और

0: शायरी लिखने में आपका कैसे रुझान विकसित हुआ, या कोई विशेष लम्हा या प्रभाव आपकी रुचि को प्रज्वलित किया?
1: बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल जिस समय हम अपनी युवावस्था में थे, उस समय और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं बेसिकली, वो जगह मुशायरों के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। जनपद रामपुर, जो अदब का शहर कहलाता है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अक्सर हम जो मुशायरे वगैरह में जाते थे और अपने साथियों के साथ इसको सुनते थे, वहाँ पर उसका एक क्रेज अलग था। तो जब वहाँ पर शायरों को सुना जाता था और उनका अंदाज देखते थे, तो इसी चीज ने धीरे धीरे रुझान पैदा कर दिया। और ये तो एक बात है ही कि किशोरावस्था में अगर आपको गजलों से निस्बत होने लगे, तो यकीनन ये इस बात का सबूत है कि दिल में किसी की चाहत के अंकुर फूट रहे हैं। तो और बंदा अपने दिल की बात बड़े अदब और शाइस्तगी के साथ अपने महबूब तक पहुंचाने की तमन्ना रखता है, तो धीरे धीरे शायरी को जानने और समझने का सलीका भी रुचि पैदा कर देता है। बस इस तरफ थोड़ा रुझान हो गया।
0: चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा आपका जवाब मिला हमें।
1: शुक्रिया
0: जी। जी, तो गजल और शायरी लिखते समय आपकी रचनात्मक प्रकृति कैसी होती है? क्या आप कोई निश्चित रूटीन फॉलो करते हैं या कोई विशेष प्रेरणा के स्रोत है?
1: मकतबेश का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। तो छाया जी, मैं कहना चाहूंगा कि रचना कर्म से जुड़ने के बाद भी बिल्कुल यही कैफियत लागू होती है। इसका कोई निश्चित रूटीन नहीं होता, ना ही संभव है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार जहन को अपनी जद में बांधे रखती है और नेचुरली आसपास के हालात या मन की कैफियत से प्रस्फुटित होकर अपने आप को सृजित करवा ही लेती है। हालांकि उसके शिल्प की तरतीब और उस विधा की बुनियादी जानकारी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसमें कहाँ तक महारत हासिल कर पाते हैं। इसके बावजूद भी शेर कहना, पढ़ना, ये एक खुदादाद कैफियत होती है, ईश्वरीय प्रेरणा का स्रोत होती है। क्योंकि कहा गया है, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं।
0: अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं, क्या बात है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपका कोई पसंदीदा गजल या शायरी जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, और आपके लिए वो खास क्यों है?
1: दरअसल छाया जी, बात यह है कि कोई भी शेर, कोई भी गजल अपने आप में हमेशा जो हमारी याद होती है उनसे जुड़ी हुई होती है, या जो परिवेश होते हैं उनसे मिली हुई होती है, उनसे प्रेरित होती है। चलिए मैं आपको दो एक शेर के माध्यम से बात बताता हूँ। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती। तो शायरी के कई पक्ष हैं, ये सामाजिकता को लिए हुए होती है और अपने दिल के जज्बों को भी समेटे हुए होती है। तो जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे वर्क दर वर्क पन्ने खुलते चले जाएंगे।
0: वैसे ये जो मुक्तक था, काफी अच्छा लगा हमें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मुक्तक आपको इतना पसंद क्यों है?
1: जैसा कि मैंने बताया, शायरी अपने आप में कई मकाम समेटे हुए होती है। ये कब कितनी आगे चली जाती है, कब कितनी पीछे चली जाती है, इसका कहना मुमकिन नहीं होता। तो ये सब उन्हीं जज्बों के छोटे छोटे अंश हैं जो हमारे सामने चलते रहेंगे। मैं और आपको रूबरू कराऊं अपने एक कते से कि हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल ने, हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है। तो ये सब यादों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो एकाएक आती हैं और फिर पन्नों में सिमट कर हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।
0: क्या बात है, क्या खूब कथा आपने सुनाई। और इसी के साथ अगर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े, तो हमारा अगला सवाल आपसे होगा, कविता और शायरी आपके लिए क्या है, मतलब क्या मायने रखता है, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: जी छाया जी, मेरे नजदीक शायरी या कविता में श्रृंगार के साथ सामाजिक और मानविक मूल्य, कुदरत के प्रति संवेदनशीलता, रिश्तों में आत्मीयता और ईश्वर के प्रति आभार, ये संदेश प्रवाहित होकर ही कविता को कालजयी श्रेणी में रखते हैं, और मेरे नजदीक ये केवल लफाजी का एक तरीका नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मात्र लफाजी तुकबंदी ये कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। और जो कविता या गजल या शायरी अगर हमारे समाज को संदेश ना दे पाए तो वो व्यर्थ होती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा लगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। सवाल अगला करेंगे लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका कोई पसंदीदा गजल जो सुनना चाहेंगे हमारे आज के इस विशेष बातचीत में।
1: देखिए, छोटी छोटी बातों से मैं कविता को अपने नजदीक क्या समझता हूँ उसे बताने की कोशिश करता हूँ। हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो के जाहिर नहीं। हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो के जाहिर नहीं। जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं। हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं। और गजल में मैं दो तीन शेर आपके बीच रखता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद। हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद। मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, अपना पहलू मेरे पहलू से बदल शाम के बाद। हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद। और अगला शेर है इसमें कि तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद। और हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद। और फिर गजल का शेर है कि तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद। और जो ताईद का शेर होता है कि मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद। और हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, रिश्ता बेसाख्ता जाता है बदल शाम के बाद। हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद।
0: क्या बात है, आपकी जितनी भी रचनाएं हैं इसका मधुर सौंदर्य हमारे सभी श्रोताओं के हृदय को छू रहा होगा और साथ ही साहित्य जगत को भी प्रभावित कर रहा है। चलिए ये तो रही आपकी शायरी की बात, लेकिन कुछ गीत दोहे जो आप सुनाना चाहते हैं, हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और मुझे कुछ गीत सुनाएं।
1: जरूर। देखिए, गजल और शायरी ये अपना शौक है, लेकिन कविता और गीत ये हमारा कल्चर है, तो मैं आपको एक अंचे के साथ, एक मुखड़े के साथ एक गीत के कुछ अंश रखता हूँ।

0: क्या बात है सर, जितनी प्यारी आपकी रचनाएं उतना ही प्यारा आपका गीत।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: वैसे हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा और इसका फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे कल के शो में। हाँ जी, फिलहाल तो अपने शो की तरफ आगे बढ़ती हैं और अगला सवाल जानते हैं मनोज मनु जी से कि गजल और शायरी लिखते समय क्या आपने किसी प्रशिक्षण का सामना किया है? कैसे आप लिखने के भेद को समाप्त करते हैं या प्रेरणा प्राप्त करते हैं जब आप लिखने में अटक जाते हैं?
1: देखिए, शायरी की तरफ रुझान होना और शायरी कर पाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हर विधा को निखारने के लिए प्रशिक्षण और सतत प्रयास की आवश्यकता होती ही है। और शायरी के बारे में तो ये कि शेर कह पाने की सोच एक ईश्वरीय वरदान का नतीजा माना जाता है। तो अगर आप में शेर कह पाने की खुदादाद सलाहियत नहीं है तो उसके समूचे व्याकरण आदि को जानने के बावजूद भी आपके शेर में वो बात हरगिज पैदा नहीं हो सकती जो उसको मकबूलियत या उसको प्रसिद्धि प्रदान कर सके। दो लाइनों से मैं अपनी बात रखूं कि अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, खैरात सा नहीं ये इनायत सा नहीं है, जिसने लहू दिया है वही पाल सका है, ये शोक रईसों की रवायत सा नहीं है, ये शोक रईसों की रवायत सा नहीं है।
0: क्या बात है, क्या खूब आपकी रचनाएं और बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आ रहा है हमें, हमारे सभी श्रोताओं को भी।
1: बहुत शुक्रिया।
0: जी जी, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि क्या कोई कवि या लेखक जो आपके काम पर प्रभाव डाले हों, उन्होंने आपकी रचना और लिखने की प्रकृति को कैसे प्रभावित किया है?
1: जी, मेरे विचार से किसी भी विधा के प्रति आकर्षित होने का ये सबसे पहला स्टेप होता है। जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उनमें से बहुत से प्रभावित हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया है और प्रभावित व्यक्तित्व से रचना कर्म में समानता ही एक सामान्य बात है। शायरी के इस फहरिस्त में जनाब श्री कृष्ण बिहारी नूर साहब, मजाज लखनवी साहब, नरेश कुमार साध साहब और वर्तमान में दादा निजाम हाफतिफ साहब जो मुरादाबाद से ही बिलोंग करते हैं, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब जो नूर साहब के ही शागिर्द हैं, इन नामों से मैं खासा प्रभावित रहा हूँ। इन्होंने मुझे, इनके रचना कर्म ने मुझे खासा प्रभावित किया है और वो झलक अगर मेरे रचना कर्म में झलकती हो तो इस बात को लेकर मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूंगा।
0: अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे आप गजल और शायरी के पारंपरिक तत्वों को सच बोलते हुए अपने आप की आवाज और अंदाज को शामिल करते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये किसी भी रचना के शिल्प और उसकी अदायगी का प्रश्न है। परंपरागत तौर पर शायरी का अपना ही एक व्याकरण है, बाकी कंटेंट के रूप में सामाजिक और मानविक मूल्यों के उठाए गए सच्चे विषय जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये बात अंदाजे बयां को एक पुख्तगी और एक स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत होता है। मैं समझता हूँ कि इसी चीज से एक पुख्तगी आती है। जब हम सच कहेंगे तो सच के कहने में उस आवाज में जो जोर होता है उसका एक अपना अलग अंदाज हो जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सच बोलने की ताकत सब में नहीं होती है, लेकिन जो सच बोलता है ना उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, हमें एक अलग ही ऊर्जा झलकती है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि बड़ा अहम सवाल है ये और इसका जवाब बहुत ही अच्छा मिला हमें। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि आपको लगता है कि आधुनिक लेखों के लिए गजल और शायरी जैसे क्लासिक काव्य के रूप में जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है? आधुनिक दुनिया में उनका क्या महत्व है?
1: जी छाया जी, आधुनिक दौर में निसंदेह क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, परंतु साहित्य में शायरी से गजल के क्षेत्र में ये बात है कि ये विधा अपनी रवायत के साथ हमेशा से खड़ी रही है और भविष्य में भी इसकी शोहरत कम होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, क्योंकि जब तक इंसान में इंसानियत, रोमानियत और सामाजिकता का जज्बा रहेगा गजल और शायरी हमेशा जिंदा रहेगी।
0: क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें, हमारे श्रोताओं को। अगला सवाल तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी। हम सभी एक्चुअली जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं गजल और शायरी समाज में क्या भूमिका निभाते हैं?
1: जहाँ तक शायरी और गजल की समाज में भूमिका का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि इस फन को अदब की संज्ञा दी गई है। यानी कि जब कोई बंदा गजल या शायरी या साहित्य से वावस्ता होता है तो वह अदब के क्षेत्र में आ रहा होता है, और जब अदब से रूबरू होना यानी समाज में सकारात्मक योगदान की भूमिका निभाना है, तो पाठकों और सुनने वालों को आकर्षित करने का मादा शायरी में बिल्कुल इस तरह से है जैसे गर्म चाकू पर मक्खन पेवस्त कर दिया जाता हो। यानी आप देखें कि हम जो बात कहना चाहते हैं, शायर जो बात कहना चाहता है शायरी में, वो बात सीधे ही दिल तक उतरती है। तो ये इसकी अपनी खासियत है और इसको सामाजिकता में एक सकारात्मक सहयोग के रूप में, सकारात्मकता के रूप में ही हम देख सकते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात। हेलो नमस्ते, आदाब। एफएम मुरादाबाद 89.6।
2: टायर लो सोना जीतो।
0: क्या?
2: जी हाँ,
3: जावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।

0: मुरादाबाद कॉल 7500153841।
1: डायरी और गजल, और इसीलिए आपकी और हमारी मुलाकात हुई है इस विशेष बातचीत में। अगला सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आप अपने विचार में गजल और शायरी के भविष्य पर कुछ विचार देना चाहेंगे?
2: जी, गजल और शायरी के भविष्य हमेशा से उज्जवल रहा है और हमेशा से उज्जवल रहेगा। हाँ, अगर शायरी केवल बादशाहों के हरम तक ही महदूद रह जाती, वहीं दम तोड़ जाती, तब शायद इसका अस्तित्व कुछ और होता। लेकिन चूंकि अब ये सामाजिक और मानविक मूल्यों के चिंतन से भी जुड़ चुकी है, तो उसके बाद इसका श्रृंगारिक पक्ष और भी वसी और भी विशाल हो गया है। इसलिए इसका भविष्य सुरक्षित है और प्रकाशवान है। आने वाले वक्त में इसकी शोहरत, इसकी मकबूलियत हमेशा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: आप जैसे कवि और गजल की रचनाएं करने वाले लोग होंगे तो जरूर, और हमें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। वैसे सर, जाते जाते, क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो रहा है, तो जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे उन सभी दोस्तों को, उन सभी यूथ को जो कम उम्र से ही शेरो शायरी करने का शौक रखते हैं, गजल सुनते हैं, सुनाते भी हैं अपनी रचनाओं के तौर पर, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी छाया जी, बहुत बड़ा विषय है, तो यूथ का जो मेरा संदेश है वो मैं अपने अशार के ही माध्यम से कहना चाहूँगा। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। अगर एहसास मर जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता, जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों, जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। और ये भी संदेश कि रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों, बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों। और अभी तो शम रोशन है, ये जलवा देखना यारो, जवां जब रात बाकी हो तो घर जाने की बातें क्यों। जहां चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की, तो जहाँ चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की, तो पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों, पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों। रवा के रुख के जानी भी पलट जाओ मगर सोचो, जिधर से आग भड़की हो उधर जाने की बातें क्यों। और मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों।
1: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। क्या बात है, क्या बात है, एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप इस लाइन को दोहराइए।
2: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। और ये गजल के दो मिसरे भी इसमें है कि हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों। जुबा दे दी अगर तो फिर मुकर जाने की बातें क्यों।
1: क्या बात है, जुबा दे दी अगर तो मुकर जाने की बातें क्यों। बहुत ही खूबसूरत सी आपकी ये रचना।
2: जी, जहाँ तक आपने मुझे बताया कि एक यूथ के लिए इस समय क्या संदेश है, तो मैं अपने चंद अशार के साथ ये बात यूथ तक पहुंचाना चाहूंगा आपके रेडियो के माध्यम से कि जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, और करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, ये मेरा संदेश है, करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, मगर गुनाह से तौबा, मगर गुनाह से तौबा गुनाह याद रखो, और नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, और रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, रहम पसंद बनो, ये पसंद है उसकी, मुआफियों में है रब की पनाह, याद रखो, मुआफियों में है रब की

0: पनाह याद रखो और जमीन पे पांव, फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो।
1: क्या खूब, क्या खूब,
0: शुक्रिया।
1: वैसे जाते जाते मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, सोच रही हूँ पूछ ही लूँ। किस उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया, किस उम्र में आपका इंटरेस्ट रचनाओं में होने लगा?
0: छाया जी, बात दरअसल ये है कि जो परिवेश मैंने जैसे बताया पहले, ये जो परिवेश था मुशायरों का, तो ये टीन एज से ही हमें शौक लग गया था। तो दोस्तों के साथ जब जाते थे, देखते थे, शेर को समझते थे और उस पर शायरों को दाद देते थे, तो वो एक अलग अनुभव महसूस होता था। इसी चीज ने जो रुझान पैदा किया, तो टीन एज से ही ये रोग हमारे साथ है। खैर।
1: जी जी, तो वैसे जाते जाते बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन वक्त तो हो गया हमारा जाने का, इसलिए एक आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर को समर्पित कोई गीत, कोई रचना आपकी, जो आप अभी हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें।
0: जी, क्या बात है, और वाकई जहाँ हम रहते हैं उसका कर संपर्क होता है, तो मैं जरूर बात रखूंगा। एक गीत के माध्यम से मैं अपने शहर को जो समर्पित करना चाहता हूँ, पंक्तियाँ शहर।

लिए हुए। इस गीत में आपको जो इससे संबंधित इतिहास है वो थोड़ा देखने मिलेगा, उसकी झलक मिलेगी। तो जी। मैं रखता हूँ। यहाँ अनेकों रंग समेटे प्रतिभाएं आभामय हैं, विश्व पटल पर धाक जमाने योग्य कुशल हैं तन्मय हैं। यहाँ अनेकों रंग समेटे प्रतिभाएं आभामय हैं, विश्व पटल पर धाक जमाने।

ये हुए, ये पीतल लकड़ी कहलाता है, विश्वविख्यात है और नक्काशी यहाँ का मेन वर्क है। तो नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाएं, हुक्का बर्तन आभूषण प्रतिमाएं क्या क्या दिखलाएं। नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाएं, हुक्का बर्तन आभूषण प्रतिमा

0: अपने शहर मुरादाबाद को आपने बहुत ही प्यारे शब्दों में पिरोया है और इसका वर्णन किया है। बहुत अच्छा लगा हमें भी और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी। इस एपिसोड का ये हमारा विशेष बातचीत का कार्यक्रम और इसका पहला एपिसोड आप लोग सुन रहे हैं और इसका पुनः प्रसारण आप कल सुनेंगे 9 बजे से सुबह 10 बजे तक। तो इसका फीडबैक मैं अपने शो यानी छाया गीत के शो में जरूर।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, और राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो सोच है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी को, लाइफ को मस्त और झकास बनाने के लिए, है ना रीना? अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ हम अच्छे
4: अच्छा
3: से कर पाएंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा भी कर पाएंगे, है ना?
4: बिल्कुल।
3: तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, और चाहे आप विमेन्स हैं या फिर आप मेन्स हैं या आप बच्चे हैं या आप युवा हैं, ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय, अपने विचार रख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो रीना तुम कैसी हो, पहले ये बताओ।
4: आनंद मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई होप कि तुम बहुत अच्छे
3: हो। अच्छा हूँ यार मैं। और देखो दोस्तों, मैं और रीना आए हैं चटपटी बातें लेकर। तो रीना, हमारे शो का नाम है सोच बदलो, ये डेली हम प्रसारित करते हैं।
4: बिल्कुल,
3: क्या मानना है, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा या नहीं?
4: अरे बिल्कुल, अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा, और हमें जो आसपास सुन रहे हैं उनकी भी सोच बदलेगी, फिर वो एक दूसरे तक बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए।
3: बिल्कुल। तो आज सोच बदलो का जो टॉपिक है वो है भैया ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। तो जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त, हमारे प्रिय मित्र रेडियो से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में रीना वापस आएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से, धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तमाम जानकारियां हैं आज आपके लिए इस प्रोग्राम में। तो आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
4: गुनगुनाते रहिए।
3: श्रोताओं,
5: आई लव यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो श्रोताओं, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं आपके लिए कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रीना, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, हर इंसान जो है डिजिटली आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को जो है अब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया। और इसी बीच तमाम सारे जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में बढ़ती जा रही है, मतलब
1: बहुत ज्यादा बढ़ रही है
0: जी। जो फ्रॉड के मामले रही ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई सीन या कोई कहानी या किस्सा है तुम्हारे साथ या कभी हुआ हो? हाँ, तो रीना वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: देखो, मैं किसी और से किसी और की कहानी बताने से पहले मैं अपनी बता देती हूँ।
0: बता, बिल्कुल बताया।
1: एक्चुअली ये हुआ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, कपड़े बहुत खरीदती हूँ,
0: सभी करते हैं।
1: हाँ, तो मेरे को ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत अच्छे से सूट के, जो उन्होंने अपना खुद का पेजेस बना रखा था कि यहाँ से सूट ऑर्डर करो और कम दाम में आपको अच्छे सूट मिलेंगे। तो उन्होंने ऑफर डाला था कि 500 में आपको 2 सूट मिलेंगे, अगर आप 1000 डालते हो तो आपको 5 सूट मिलेंगे। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया, तो मैंने जो भी सूट लेने थे मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको इतने इतने पेमेंट करने पड़ेंगे। मैंने पेमेंट कर दी 1000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद के मैंने बोला कि मेरा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो ये 1000 रुपए पेमेंट कराया ना, तो ये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, आपको 8000 और करने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं वही समझ गई, मैं कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर।
0: तो मतलब तुम्हारे

0: अपडेट के नाम पर आपको कॉल आ जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: कभी
1: बिल्कुल।
0: आपको व्हाट्सएप पे कोई अचानक से लिंक आ जाएगा,
1: कभी बोलेंगे बैंक वाले बोल रहे हैं,
0: कॉल्स आ जाती हैं। और आजकल तो शादी के कार्ड भी आ रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी ने भेजा है, क्लिक करोगी तो पैसा गायब,
1: पैसे कट जाते हैं,
0: तो ऐसा वाला सीन भी चल रहा है। तो दोस्तों आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी बात को जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अंतराल का समय है, म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे, अंतराल का समय है, और उसके बाद आपको सुनवाएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, और बचने के लिए आप को कहां कैसे शिकायत दर्ज करानी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे,
0: ये है आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: श्रोताओं एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रीना और मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं सोच बदलो, और इस प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है तो ये सोचिए प्रोग्राम कितना प्यारा होगा। वेल आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मैं और रीना आपसे, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक खास जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ एक छोटा सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा कर रहे हैं। आप इसको भी सुनिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम थोड़ी देर में मिलेंगे मैं और रीना। क्यों रीना, दोस्तों बहुत जरूरी है, देखिए सही सोच के साथ साथ सही जानकारी का होना भी जरूरी,
1: बहुत जरूरी है।
0: तो आइए सोच बदले प्रोग्राम के अंतर्गत सुनते हैं ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी।
5: आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है अरे वाह ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रूपए में दे रही है,
6: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रूपए का है।
5: अब राज कहता है इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं। फिर राहुल कहता है नहीं नहीं वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत

उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट

0: ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी आज से बंद कर देंगे।
1: बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग तो बंद मत करो यार रीना, लेकिन बस ये जो ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है ना। शॉपिंग तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश करो लोकल फॉर वोकल को ज्यादा बढ़ावा मिले तो बेहतर है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ऑनलाइन तो आप करिए खरीदारी, लेकिन ऑफलाइन भी करिए, क्योंकि लोकल फॉर वोकल बहुत जरूरी है। अपने आस पास के प्रोडक्ट को अगर हम ही नहीं खरीदेंगे तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे बढ़ेगी।
0: लेकिन ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम से शॉपिंग करते हैं उसको
1: कम करें आप ऑनलाइन। हाँ। पे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर आपको कोई लिंक आ रही है, आपको ऑफर दिख रहा है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए श्रोताओं, अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी अपनी बातों को विराम देते हैं और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे जाने की अनुमति देंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं और रीना आपके साथ छोड़ के जाएंगे। प्रोग्राम चल रहा है सोच बदलो, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

Ay, no, no, no, no.

0: दोस्तों जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही अच्छा ये गीत, और आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम, जिसे लेकर आज हाजिर हूँ मैं आनंद और साथ में आरजे रीना। तो रीना, फाइनली दोस्तों के साथ बातचीत करते करते कैसे हमारा समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला है ना।
1: बिल्कुल भी नहीं पता चलता
0: जी। हाँ, तो अब बस जाने का समय है, लेकिन बस छोड़ के जाएंगे कुछ खास बातें आपके लिए। देखिये दोस्तों, याद रखिये सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपका नुकसान नहीं कर सकता है ना, और ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो बस आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए। कोई भी दोस्त अगर आपको फेक आईडी या फ्रॉड आईडी बनाकर आपसे पैसे मांगता है, कोई लिंक आपको भेजता है, तो आप उन चीजों से जरा बचकर रहिए। कुछ भी इस तरह की आपके साथ बातचीत होती है या कोई भी ऐसी हरकत होती है, तो आप जो है पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके जरूर शिकायत दर्ज कराएं, क्यों रीना।
1: और जिसके नाम से आईडी बनाकर आपको मैसेज किया जा रहा है, उस आदमी को भी जरूर सूचित करें इसके बारे में कि आपके नाम से आईडी बनाकर पैसे मांगा जा रहा है,
0: पता चल सके ना बिल्कुल, कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ। तो दोस्तों आज के सोच बदलो में बस इतना ही। अपनी सोच बदलिए, सतर्क रहिए और सेफ रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए
1: एफएम मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो,
1: बजाते रहे गुनगुनाते रहे।
0: चलिए जी, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय
1: बाय गाइस।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: कॉल 7500153841।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम, जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में, और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
9: धन्यवाद
0: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तू बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
9: नाम तो बहुत अच्छा, और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है।
9: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे, और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें अभी, क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
9: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
0: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना। बहुत बढ़िया। तो प्राची, आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बारी होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
9: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
0: एब्सोल्युटली, स्पेशली इस डिजिटल टाइम में, ना।
9: हाँ, बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख डिजिटल की तरफ बढ़ा है।
0: करेक्ट। तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रो।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बार तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स, व्हाट्सएप से संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक एप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाती है जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक जिसपे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीजें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालोगे, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जैसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा, और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहां पर क्लियर कर देता हूं। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई है आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदले, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए। भाई अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम वहां जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं। ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीजों का इस्तेमाल करिए ना।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
0: तो इसी पर देखिए, हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला। मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं, पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ, निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों की बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें, जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें, शक हो तो नहीं कहना सीखें, ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
0: तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आरजे राज के द्वारा जो आपको दी गई है, आई एम श्योर ये आपके काम की होगी और आपको जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल,
0: और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करनी है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम इन चीजों के शिकार होने से भी कई हद तक बच सकते हैं। सही कहा ना?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, और हमारा जो ये कार्यक्रम प्रसारित करने का जो उद्देश्य है वो भी तभी पूरा होगा।
0: एब्सोल्युटली, तो श्रोताओं हमारा भी उद्देश्य है एक म्यूजिक प्ले करने का। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, आनंद और प्राची के साथ एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम पुनः लौट कर आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, और इससे पहले कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद और प्राची को।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: ये पर

0: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं भी आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद और
1: प्राची के साथ।
0: क्या बात है प्राची, आज का हमारा प्रोग्राम लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज हमने ढेर सारी बातचीत करी अपने श्रोताओं से। आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे श्रोताओं ने काफी एंजॉय भी किया होगा और उनको काफी जानकारियां भी मिली होंगी इस प्रोग्राम के जरिए।
1: बिल्कुल किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो सामुदायिक है, हमारा जो कम्युनिटी है मुरादाबाद के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हमें सुन रहे हैं, उनको सही और अच्छी जानकारी मिले। देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। वो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है कि जो हमें अपने श्रोताओं को बता देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, अगर ये दिखे तो उनको रुक जाना चाहिए। तो प्राची, वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हमें रुक जाना चाहिए तुरंत? प्लीज बताओ जरा हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ बिल्कुल, तो हमारी श्रोताओं, आपके लिए ये जानकारी है कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं तो आपको तुरंत रुक जाने की जरूरत है। अगर वो गारंटेड प्रूफ प्रॉफिट या रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया अच्छे से आप उसकी जांच करें।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर, अगर वो कंपनी की साइड से आपको बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर आ रहा है, एक कॉल्स आ रही है एक के बाद एक और आपको लग रहा है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होती है वो इतना बार बार आपको
0: प्रेशराइज
1: नहीं करती है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और अगर वो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप, खासकर मैं बताना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क है
0: और मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो न्यू जनरेशन हैं, वो सारे लोग टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई थिंक
1: इतने ज्यादा फेक प्रोफाइल है, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भेजने को कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया ऐसे अगर आपको सिम्टम्स साइंस नजर आते हैं तो आप सावधान रहें। और जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जरूरी, आप ये जरूर चार्ज कर ले कि वो जो कंपनी है वो सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं,
0: मतलब वेरिफिकेशन उसका है या नहीं, करेक्ट तरीके से वेरीफाई है या नहीं।
1: जी
0: बिल्कुल। प्राची, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम रियली श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए, उनको जरूर ये इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को भी चीज ध्यान में रखनी है यार, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, नो डाउट। भले हम अपना टाइम हमारा फिक्स है बट हम यूज तो करते हैं यार।
1: हाँ, और कभी कभी तो हम लोग भी तो

0: और आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में जाके डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो बस श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिए और बाकी अपना भी ख्याल रखिए। अभी हमारा जाने का समय हो रहा है, तो मैं और प्राची आपसे लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत अनुमति। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ, सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, टेक केयर।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
2: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
1: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यहीं चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
2: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय

0: एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
0: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
1: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
0: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।

आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है, क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं, तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।